जानते हो आज के दिन को मैं ना क्या कहती हूँ, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सिम्पली आफरीन और आप सिंपल भाषा में पूछूं तो आज का दिन आपके लिए क्या है? आप बोलोगे आज तो वेडनेसडे है आफरीन, लेकिन आफरीन के लिए ना आज का दिन होता है उम्मीद वाला दिन। हाँ जी, वो दिन जहाँ पर हफ्ते का एक ऐसा दिन जहाँ आपने मेहनत तो की है बहुत, ठीक है, यू आर जस्ट पुटिंग योर सेल्फ टुगेदर, यू आर ऑर्गेनाइजिंग योर सेल्फ, एक रूटीन में रहते हो और बहुत मेहनत करते हो ये पूरा हफ्ता, एंड देन कल का दिन से एक वीकेंड आता है आपके लिए, एक दिल में उम्मीद लेकर आता है कि हाँ अब वो दिन आएगा जहाँ पर हम अपने लिए जिएंगे, कुछ अपने लिए वक्त निकालेंगे। एंड वेनसडे ना इसी उम्मीद में कि हाँ अब ये चीज़ें आने वाली है, तो इसलिए मैं कहती हूँ उम्मीद वाला दिन, इसी उम्मीद में, इसी सोच में ना दिन थोड़ा सा ना खुशी से गुजर जाता है, थोड़े से एक तसल्ली दे देता है वेनसडे। तो उम्मीद के साथ साथ इसे तसल्ली वाला दिन भी कह सकते हो। और फिर आएगा ना हमारा थर्सडे फ्राइडे, खुशियों वाला दिन, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। फिलहाल के लिए तो इसी उम्मीद और तसल्ली के साथ शो की शुरुआत करते हुए कि यार उम्मीद है अच्छी बातें होंगी और तसल्ली है कि यार आफरीन है तो अच्छे गाने भी बजेंगे। राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, इट्स हॉट।

0: आपको क्या लगा हम भूल गए?
1: हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, एक दूसरे से कभी कभी रहते हैं हम खपा खपा।

0: Milci.
1: Buscabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहा हूँ। मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
2: मोबाइल?
3: ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है, इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
2: क्या रिपोर्ट आ गई है?
3: यही क्या, ये मोबाइल गायब हुआ है। किसी ने कम्प्लेट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
2: मोबाइल चोरी हो गया?
3: हाँ जी। भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
2: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
3: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कम्प्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
2: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
3: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कम्प्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
2: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
3: भाई मैं कह रहा हूँ, चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
2: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
3: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर बनाता हूँ।
2: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
3: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
2: हाँ जी सर।
3: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
2: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
4: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर,
2: कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड ज्वेलरी? सीरियसली माही?
7: यस बेबो।
6: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ?
7: यस।
6: कैच क्या है?
7: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ। डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स, और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो।
6: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच।
7: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो। दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स।
8: Hi, this is Anuradha Podwal.
9: Koi na koi chahiye, pyar karne wala.
10: This is Vinod Rathod and we are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
9: Bhool se parda kijiye.
11: Hi, I am Kajwar Rahman. We are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
12: Experience the magic of their voice on 30th October 2026 at Aspire Zone Ladies Sports Hall, Doha, Qatar, 6:30 p.m. onwards. In association with Indomie Noodles, Lulu Hypermarket, iPay and Green Printers, online ticketing partners, qtickets.com, Platinum List, Virgin Megastore and S-City. For more information, contact 6000-4369, an event by Rami Productions International.
13: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 30% off on making charges. Offer only till 25th October. Rush to your nearest Kalyan Jewelers store today to grab this offer. Conditions apply.
14: Our business is our business. None of your business.
15: पर दीदी, आर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट।
16: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
17: 89.6
18: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: कुणाल खेमू, अपने कॉलेज डेज में आपने सबसे बढ़िया जुगाड़ कौन सा किया है?
2: हम लोग थिएटर जब करते थे कॉलेज में, ये तो नॉर्मल जिंदगी थी उस वक्त, लिमिटेड पॉकेट मनी होती थी, चल चल के पैसे बचाए जाते थे, रिक्शे के कैसे शेयरिंग में कभी किसी को धोखा देके भाग लेते थे।
1: कुणाल खेमू वो इंसान आज भी आपके पीछे भाग रहा है। व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक अराउंड। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
4: Cut, cut.
5: Who there?
4: Whom are you?
5: Whom are you who?
4: Aray, whom are you looking for, madam?
5: Cut, cut. Who there?
6: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.

0: आपके इस राहों में सफर का साथी बनने के लिए मैं आ गई हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन का साथ है दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। इट इज अ वेडनेसडे मॉर्निंग, 14th of October आज की तारीख है। और गुड मॉर्निंग मैसेजेस तो एज ऑलवेज शुरू हो चुके हैं आप सभी के। 5000186 इज आर नंबर। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। और जब आ ही गई हूँ तो यार ऐसा मौसम का हाल देखते हैं, और कल ऐसा लगा था कि यार सच में अब बारिश होगी। हालांकि दोहा के कुछ एरियाज में बारिश हुई थी कल।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: वेल देखिए, वेदर आज तो ये कह रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस, वेयर एज मिनिमम इज 29 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन कल शाम के वक्त तकरीबन 4:30 बजे के करीब ऐसा लगा कि वाओ यार, मतलब हमारा वो दोहा वाला जो पसंदीदा मौसम है वो लौट गया है। एंड समवेयर वी फेल्ट कि अब बारिश होगी। लेकिन मुझे तो वो बारिश एक्सपीरियंस हुई नहीं, क्या आपको हुई क्या बाय द वे? वेल कतर की कुछ जगह पर बारिश हुई थी, लेकिन बट दैट इज सम प्लेस रियली रियली रियली फार अवे। अगर आप उस एरिया में कल गए थे और आपने बारिश एक्सपीरियंस की, देन टेल मी अस कि यार आफरीन हम वो जगह पर थे कल। 5000186 व्हाट्सएप नंबर है मेरा। और मीनवाइल हमारा अगले गाने की तरफ बढ़ते हुए साज भट्ट सुबोध शर्मा की आवाज में। Enjoy this track on Mirchi It's Hot.

0: लव।
1: वेल ऑल द लेडीज आउट देयर, एक बात बताइए मुझे कि घर में किसी को बुखार हो जाए, बच्चों को डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले जाना हो, या फिर आपके पेरेंट्स का रूटीन चेकअप हो, आप सब कुछ याद रखते हैं, लेकिन बात जब आपकी हेल्थ की होती है तो फिर नजरअंदाज क्यों? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन का साथ है दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और क्योंकि अक्टूबर है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, और कतर की प्राइमरी हेल्थ केयर कॉरपोरेशन यानी PHCC ने अपनी एनुअल ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च की है, जिसका मैसेज है योर स्ट्रेंथ बिगिंस विद स्क्रीनिंग। अब इस कैंपेन के साथ एक बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पर मैं। दर PHCC के स्क्रीन फॉर लाइफ प्रोग्राम के थ्रू कतर में एलिजिबल वुमन ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग करवा सकती है। अगर आपकी एज 45 से 69 के बीच है, आपको ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड कोई सिम्टम्स नहीं है और पिछले 3 इयर्स में मैमोग्राम नहीं हुआ है, तो आप स्क्रीनिंग के लिए अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट कर सकती हैं। मैमोग्राम बेसिकली ब्रेस्ट का एक स्पेशल एक्सरे होता है जो सिम्टम्स देखने से पहले भी कुछ चेंजेस डिटेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपॉइंटमेंट कैसी लेनी है। 800-111-2, द नंबर इज 800-111-2, या फिर PHCC की नराकोम ऐप में ई सर्विसेज के अंडर कैंसर स्क्रीनिंग सिलेक्ट करके भी आप रिक्वेस्ट सबमिट कर सकती हैं। स्क्रीनिंग फैसिलिटीज कतर के मायदे लैबीब लैबेब और फिर रौदात अल खैर अल वकरा हेल्थ सेंटर्स में अवेलेबल है। और हाँ, अगर आपको ब्रेस्ट में कोई अनयूजुअल लंप, स्किन चेंज या फिर कोई डिस्चार्ज नोटिस होता है, तो रूटीन स्क्रीनिंग का वेट मत करिए, डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा। और बस एक छोटी सी बात, हम अपनी फैमिली की हेल्थ को लेकर इतनी प्रायोरिटी देते हैं, तो अपनी हेल्थ को भी उसी प्रायोरिटी लिस्ट में जगा दीजिए। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, और मिर्शी इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
1: हेलो,
2: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: बोल रहे
2: हैं राज जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया, कौन सा बोल रहे हैं?
2: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
1: लेकिन है किस लिए, ये तो बताइए, किस लिए, कहाँ पे लगाना
2: नहीं,
1: है?
2: नहीं, वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं, हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं, उसमें अब जाहिर सी बात है भाई, आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा।
1: तो
2: हाँ, वही वही वही मैं आपको बता रहा हूँ।
1: पूरी
2: नहीं नहीं पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम है आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है,
1: तो बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास? तो
2: नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना?
1: ये कॉपी मुझे भी भेजना
2: राजी, एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
1: अपने फ्रेंड्स को, उनको भी भेज।
2: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। आप थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहें तो?
1: हाँ बिल्कुल बताइए।
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वांटेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया, आपका आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
1: कुकड़ों को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
4: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
5: हाय, दिस इज अनुराधा पौडवाल।
6: This is Vinod Rathod and we are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
7: Hi, I am Kajiva Raman. We are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
8: Experience the magic of their voice on 30th October 2026 at Aspire Zone Ladies Sports Hall, Doha, Qatar, 6:30 PM onwards. In association with Indomie Noodles, Lulu Hypermarket, iPay and Green Printers, online ticketing partners, qtickets.com, Platinum List, Virgin Megastore and S-City. For more information, contact 6004369, an event by Rami Productions International.
9: Looking to grow your business, expand your network and reach the right customers? Introducing the Qatar Business Card Directory, QBCD, the flagship product of Media Plus WLL Doha, now proudly launching its 20th edition. Be part of this major milestone. Enroll your business card today and take your business towards greater visibility and stronger connections. For business inquiries, call 55099389 or download the QBCD app now. Connect, promote, grow.
10: Back to school means more journeys, more traffic and more reasons to drive with peace of mind.
11: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400, with 24/7 roadside assistance including towing, flat tire help, battery jump start and lockout assistance, plus flexible payments and 7% cash back.
12: Call 800-0786 or visit bimaonline.com.
10: Bima, for your peace of mind. Terms and conditions apply.
13: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 30% off on making charges. Offer only till 25th October. Rush to your nearest Kalyan Jewelers store today to grab this offer. Conditions apply.
14: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew! so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
15: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
14: This initiative is driven by GWM.
16: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा, जा।
17: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने।
18: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन।
19: 89.6 FM, Mirchi One. It's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: देखिए, अगर आप मोटर स्पोर्ट्स लवर हैं तो आपके लिए एक एक्साइटिंग अपडेट है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और अगर आपने फॉर्मूला वन की रेसिंग को देखी होगी तो कभी सोचा है कि कार्स की जगह सुपर बाइक्स रेस कर रही है और वो भी फ्लड लाइट्स के नीचे, तो एक्सपीरियंस कैसा होगा? सो वेल, दैट्स इट। मोटो जीपी कतर एयरवेज ग्रैंड प्री ऑफ कतर 2026 से लेकर 8 नवंबर तक लुसेल इंटरनेशनल सर्किट में होने जा रहा है। और इस रेस की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कतर इस ईयर मोटो जीपी चैंपियनशिप की ओनली नाइट रेस होस्ट करेगा। अब अगर आप अटेंड करने का प्लान बना रहे हैं तो डेट्स और टिकट्स डिटेल जो है ये नोट कर लीजिए। फ्राइडे 6 नवंबर को प्रैक्टिस सेशंस होने वाले हैं, सैटरडे 7 नवंबर को क्वालिफाइंग और स्प्रिंट रेस होगी और संडे 8 नवंबर को होगा मेन ग्रैंड प्री। अब टिकट्स की बात करें तो 3-day अडल्ट टिकट की प्राइस है 200 कतरी रियाल। इसमें आपको मेन ग्रैंड स्टैंड और लुसेल हिल व्यूइंग एरिया का एक्सेस मिलेगा। साथ ही फैन जोन, एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज और फ्री पार्किंग भी इंक्लूडेड है। और फैमिलीज के लिए भी एक अच्छी बात है, 12 साल से छोटे बच्चों के लिए एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री। और एक फुल प्राइस अडल्ट टिकट के साथ मैक्सिमम 6 चिल्ड्रन जो है वो फ्री टिकट रिजर्व कर सकते हैं। मतलब ये तो बड़े मजे की बात है। बस याद रखिएगा, फ्री टिकट्स भी एडवांस में बुक करनी होगी, ठीक है? यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो है उनके लिए डिस्काउंटेड टिकट्स है 100 कतरी रियाल की है और 60 इयर्स और अबाउ सीनियर सिटीजन के लिए 80 कतरी रियाल है। टिकट्स आप लुसेल इंटरनेशनल सर्किट की ऑफिशियल वेबसाइट वहां पर जाकर बुक कर सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया बताऊं आपको, लुसेल सर्किट पर मोटो जीपी की फर्स्ट रेस 2004 में हुई थी और 2008 से यहाँ नाइट रेसिंग का ट्रेडिशन शुरू हुआ है। तो अगर आपको रेसिंग पसंद है या फैमिली के साथ कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो नवंबर का ये वीकेंड अपने कैलेंडर में मार्क कर सकते हैं। वैसे आपको रेसिंग में क्या ज्यादा एक्साइटिंग लगता है? डू यू लाइक फॉर्मूला वन कार्स या फिर मोटो जीपी सुपर बाइक्स? लेट मी नो। 5000196 इज माई नंबर। मीनवाइल लगाना आपका इंतजार कर रहा है और मिर्ची इट्स हॉट। सूरज की

0: वेल हमें भी आना पड़ा क्योंकि अब तो गेम खेलने का वक्त है ना हमारा। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन का साथ है दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। इट इज अ वेडनेसडे मॉर्निंग और यही सोच के मुझे एक्साइटमेंट हो रही है कि कल वीकेंड आने वाला है और इसी के साथ वीकेंड की एक्साइटमेंट के बारे में तो बाद में बात करेंगे, ये तो चलते रहता है हर हफ्ते। लेकिन राइट नाउ इट्स टाइम टू प्ले लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट। एक ऐसा सीन सुना रही हूँ, शायद इसके लिए आपको कुछ ना हिंट्स जरूर लगने वाले हैं। चलिए सुन लेते हैं।
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट। सीन टेस्ट।
2: सात मकाम होते हैं इश्क में, सात: दिलकशी, उन्स, मोहब्बत, अकीदत, इबादत और जुनून।
3: अब हम इश्क के सातवें मकाम पे हैं।
4: वो क्या है?
3: मौत।
0: वेल वेल वेल, कौन है ये? अगर आपने इनकी आवाज पहचान ली है ना, आई मीन ऑफ कोर्स अ लेजेंडरी एक्टर या व्हाट अ फाइन एक्टर ही इज। लेकिन इनके साथ मैं हिंट ये दे देती हूँ कि ये मूवी में हमें सर्किट भी नजर आते हैं। इन दोनों की जोड़ी इस मूवी में बहुत ही यूनिक थी, लेकिन बोथ ब्रॉट देयर बेस्ट आउट ऑफ देयर सेल्फ एंड बहुत मजे की मूवी थी। और इनके साथ में जो एक्ट्रेस थी ना, आई थिंक सो द एंटायर स्टार कास्ट वॉज क्वाइट टैलेंटेड। अब मैंने बता दिया बहुत कुछ इस मूवी के बारे में। 5000186 is my WhatsApp number. फिर से दोहरा रही हूँ, it's 5000186. इस पर आकर मैसेज कीजिए और बताइए कौन सी मूवी आखिर आफरीन ने सुनाई है। तब तक के लिए लता जी और उदित नारायण की आवाज में गाना हो जाए 90s का। I love this song. Enjoy this track on Mirchi's Hot.

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट। क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: वेल दैट इज अरिजीत सिंह की आवाज में और साथ देते हुए अदिति सिंह राइट हियर ऑन मिर्ची। मैं हूँ आफरीन आपके साथ। और हाँ जी, सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा था और यहाँ पर गेम खेल रहे थे हम, जिसे मैं कहती हूँ लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट। हालांकि आज मैंने गेम के साथ में ना कुछ हिंट्स भी जरूर दिए थे। चलिए जरा सीन सुन लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे।
0: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट। सीन टेस्ट।
2: सात मकाम होते हैं इश्क में, सात: दिलकशी, उन्स, मोहब्बत, अकीदत, इबादत और जुनून।
3: अब हम इश्क के सातवें मुकाम पे हैं।
4: वो क्या है?
3: मौत।
1: ऑल राइट, सात मुकाम इश्क के। कौन है ये जो बता रहे हैं ये सब? बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, चलिए पहले मैसेज सुन लेते हैं जिन्होंने वॉइस मैसेज भेजा है।
5: हेलो, गुड मॉर्निंग।
1: वेरी गुड मॉर्निंग
5: इश्किया।
1: ऑल राइट,
5: विद्या बालन।
1: ओके,
5: नसरुद्दीन शाह।
1: ओके,
6: हाय, दिस इज नदीम।
1: हाँ जी,
6: ये नसरुद्दीन शाह एंड अरशद वारसी हैं।
1: ऑल राइट,
6: विद्या बालन भी हैं। फिल्म का नाम इश्किया है।
1: ओके, दैट इज एक्चुअली द राइट आंसर, इश्किया इट इज। यहाँ पे बहुत लगे लोगों के मैसेजेस आए हैं, जैसे हमद खान अल वक्रा से, इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। देन वी हैव मोहम्मद यूसुफ खान, वशिष्ठ का मैसेज अभी आया है। देन आई हैव योर, और कौन है ये, हरपाल संधू, इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। देन पूजा कहती है मैं वापस आऊँगा क्योंकि उन्हें लगा कि नसरुद्दीन शाह है, सो आई कैन गेट इट। उसके अलावा उपेंद्र शर्मा का मैसेज है, तूफान का मैसेज है, एंड और कौन है ये, वही गुड मॉर्निंग आंसर तो बता दिया है लेकिन अपना नाम नहीं बताया, मोही शाह कादरी शायद, मोहसिन, एंड विद दिस अयुब खान, और बहुत सारे लोग जिन्होंने मैसेज करके बिल्कुल सही जवाब दिया है दैट इट इज़ द मूवी इश्किया। एंड डिड यू नो कि इश्किया के लिए फर्स्ट चॉइस वॉज नॉट नसीर साहब, इट वॉज

दिस सॉन्ग ऑब्वियसली जब इश्किया की बात आती है तो यही गाना जहन में आता है ना, आना भी चाहिए भाई, है ही ऐसा गाना। सुखी बाजी की आवाज और मीका सिंह का साथ, राइट रन विद शीट्स हॉट।

0: Well, that is Amrita Kakkar, Mika Singh, Dhink Kachika karte hue right here on Mirchi. मैं ये गाने के मजे की बात बताऊं, मुझे इसके लिरिक्स बहुत ही ज्यादा अजीबो गरीब लगे थे, लेकिन सम रीजन ये इसके लिरिक्स हमें याद भी हो गए एंड मजे भी आने लग गए थे. आई थिंक सो दैट्स हाउ सलमान खान का एक वाइब होता है कि भाई तुम कुछ भी गाने इन्हें पेश कर दो, सलमान खान कुछ ना कुछ तरीके से इसे आइकॉनिक बना ही देते हैं. वेल, हैविंग सेड दैट, ये तो बातें हो गई हमारी बॉलीवुड की. आप फटाफट से मैं आपको ले जाती हूँ गोल्ड अपडेट की तरफ. हाँ जी, आज का गोल्ड रेट्स जो है वो ये कहता है.
1: गोल्ड अपडेट.
0: पैम 1 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 568 कत्रियाल, 5 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 2655 कत्रियाल, वेरास 10 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 5241 कत्रियाल, 1 आउंस गोल्ड बार इज फॉर 16197, वेरास 10 तोला गोल्ड बार इज फॉर 60127 कत्रियाल. ये थे आज के गोल्ड अपडेट. अगला गाना कार्तिक की आवाज में, राइट हियर ऑन मिर्ची फ्रॉम द मूवी रजनी. एंजॉय इट, इट्स हॉट.
1: Stay ahead of today's gold rates with Alpardhan Exchange, PAM's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAM gold bars
2: and earn Qatar Airways Avios today.
1: Visit our branches or download the app now.

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: Could I speak to Manish, please?
1: Speaking.
2: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से. ओके मनीष, आई नीड योर फेवर. आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी. मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को. मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन.
1: ओके,
2: राइट, कि पहले इंसान एप था. आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में. यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया. राइट,
1: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
2: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. राइट, एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ. 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे. इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके.
1: 2 घंटे करना क्या है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ.
2: तो ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था. तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे. तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स को सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर. आई एम श्योर कि सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था. बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी. तो कब आ जाएंगे आप, मुझे ये बता दीजिए. कल का रख ले. मेरी बात सुनो. आई एम प्रोफेसर. मेरी बात सुनिए यार. हेलो, वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है.
1: हेलो,
2: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी. मेरी बात सुनिए. मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने. उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार. मैं मुर्गा बनाया, तुम रेडियो मिर्ची पे हो. आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार. मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने जो लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार. इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया, मैं बता दूंगा उनको.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
3: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ. डिस्कवर करो वर्सेटाइल शॉकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस. सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं.
4: GWM के मिर्ची रिचार्ज में आइडियल इंडियन स्कूल के बच्चों ने की ढेर सारी मस्ती एंड फन. लेट्स हियर इट फ्रॉम देम.
5: 89.6 मिर्ची वन से मैं हूँ आरजे मस्तवाला गौरव, और मैं आया हूँ आज आइडियल इंडियन स्कूल में, और मेरे साथ ढेर सारे बच्चे हैं. यू गाइस एंजॉयड इट?
6: It was great fun. Thank you, Mirchi. Thank you, GWM.
7: Thank you, Mirchi, for the GWM recharge. It was really fun, especially the magic show.
8: And show Gaurav, Afin, thank you very much.
9: Huh? Free cash vouchers on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
10: Yes, Bebo.
9: Sirf 25% pay karke gold price lock kar sakti hu?
10: Yes.
9: Catch kya hai?
10: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free cash vouchers. Aur sirf 25% pay karke gold rate ko block kar do.
9: I still can't believe it. No catch.
10: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar gold and diamonds.
11: Back to school means more journeys, more traffic, and more reasons to drive with peace of mind.
12: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400, with 24/7 roadside assistance, including towing, flat tire help, battery jump start, and lockout assistance. Plus, flexible payments and 7% cash back.
13: Call 800-0786 or visit BimaOnline.com.
11: Bima, for your peace of mind. Terms and conditions apply.
14: It's back! It's back! LG and Jumbo ki mega promotion. LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs, or audio products for assured gift vouchers. Plus, up to 3 years extended warranty, Mukafa points, Nujum, Air Miles or Avios. Visit LG brand shops, Jumbo stores or JS.QA. Hurry! Offer valid till 19th October.
15: Hello, Sharps. Our product is phenomenal. One of a kind, but still profit nahi ho raha hai. Maine Baba ji se advice li to kehte hain.
16: Office ke toilet mein toilet paper white nahi, yellow lagao. प्रॉफिट आएगा.
15: रिलेटिव से एडवाइस स्लो तो कहते हैं.
17: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा.
15: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो.
18: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
19: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

मैं सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गाना आपने एंजॉय किया, प्योर 90s नॉस्टैल्जिया हिटिंग सो हार्ड। वेल, जहाँ 90s नॉस्टैल्जिया की बात हुई है तो हम उसके बारे में और भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा वर्तमान में आके एक्सचेंज रेट की तरफ नजर डालें। वेल, आईपी का एक्सचेंज रेट आज ये कहता है 1 AED के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 26.02, वहीं जहां पाकिस्तानी रुपीज इज फॉर 76.12, बांग्लादेशी टाका जो है वो है एट 33.81 और उसके अलावा 1 AED के बदले मिल रहे हैं श्रीलंकन रुपीज दैट इज 90.86 एंड नेपाली रुपीज इज एट 41.65। ये थे आज के एक्सचेंज रेट। घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां और खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला, वन एंड ओनली 89.6 में शुआन। It's hot.

धड़क मटक लौंडो के दिल पटक पटक ससे जाए अटक अटक आता माजी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कम ऑन बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: वाला सा रंग तेरा, बावला सा ढंग तेरा, मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा। तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़। I am the baddest motherfucker.
1: Heartbeat.

0: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 पार्टनर्ड बाय पापा जॉन्स।
1: कतर, आर यू रेडी फॉर द न्यू पैन पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन्स? क्रिस्पी गार्लिक पार्मेजान क्रस्ट, इटालियन सीजनिंग, 6 चीज ब्लेंड एंड चीज एज टू एज, द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर एट पापा जॉन्स। ऑर्डर नाउ।
0: Powered by iPay Wallet.
2: अपनों को भेजिए पैसे with best rates. iPay Wallet के साथ. No stress, सिर्फ trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
3: Let's do that,
0: In association with Dairy Queen. Beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
4: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super speciality clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
5: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
6: With Baladna milk, Laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
7: Baladna.
6: Taste that Qatar loves.
0: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.
8: Huh? Free cash vouchers on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
9: Yes, Bebo.
8: Sirf 25% pay karke gold price lock kar sakti hu?
9: Yes.
8: Catch kya hai?
9: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free cash vouchers. Aur sirf 25% pay karke gold rate ko block kar do.
8: I still can't believe it. No catch.
9: Catches sirf matches mein hote hain, Bebo. This is your festive gift from Malabar gold and diamonds.
10: It's back. It's back. Back. LG and Jumbo ki mega promotion. LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs aur audio products par assured gift vouchers. Plus, up to 3 years extended warranty, Mukafa points, Nujum, Air Miles aur Avios. Visit LG brand shops, Jumbo stores ya JS.QA. Hurry! Offer valid till 19th October.
11: Aur mushai, zindagi badi honi chahiye, lambi nahi.
12: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
13: बार बार
14: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
15: 89.6
16: FM मिर्ची वन
17: इट्स हॉट।
18: वेल, जो अगले गाने का सिलसिला होने वाला है वो बिल्कुल आपको एक 90s नॉस्टैल्जिक राइड पर ले जाने वाला है, क्योंकि आज हमारे शो पर एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जो 90s हमारे खूबसूरत नगमों का बहुत अहम हिस्सा है। अब ये कौन है, ये अगले गाने से शायद आप थोड़ा सा गैस कर पाएंगे, या फिर आपको थोड़ा सा एक हिंट दे ही दूँ कि वो लोग जो हमें ये गाने याद रखने के लिए मजबूर रख देते हैं बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटिफुल लिरिक्स। आफरीन है आपके साथ, स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: देखिए हर रोज तो मैं गानों के जरिए आपको कभी 90s में ले जाती हूँ, लेकिन आज एक शख्सियत के जरिए आपको 90s में ले जाने वाली हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को एंड आई कैन नॉट बी मोर एक्साइटेड टू हैव दिस पर्सन ऑन माय शो जो 90s बॉलीवुड का बहुत बड़ा हिस्सा रह चुके हैं। मैं गानों की बात कर रही थी, वो गाने 90s के जो हमें एकदम वो जवानी याद रहते हैं। अब उसके पीछे श्रेय जरूर जाता है उनके लिरिसिस्ट को, और ऐसे ही 90s के एक लिरिसिस्ट यानी महबूब साहब हमारे साथ जुड़े हैं। वो महबूब साहब जिन्होंने कितने खूबसूरत गाने रंगीला के गीत लिखे हैं, तू ही रे गाना हो गया, फिर आइकॉनिक माँ तुझे सलाम हो गया, द पेट्रियोटिक सॉन्ग, और Having him on my show Mirchi Morning is not only an honor, it's absolutely a pleasure. Welcome to my show Mehboob Sahab, बहुत बहुत स्वागत है। और आपका ना writing style इतना simple लेकिन बहुत ही ज़्यादा emotionally deep, इसके बारे में कुछ बताइए हमें Mehboob Sahab।
2: शुक्रिया बहुत बहुत आफरीन इस इस्तकबाल का, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आपके प्रोग्राम में शामिल होते हुए। जी हाँ वो सही है, 90s के जो एक दौर था बहुत ही खूबसूरत, और उसे भी गोल्डन एरा में शामिल किया जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: अब रही राइटिंग स्टाइल की बात, तो आफरीन दरअसल मैं सिर्फ एक ही चीज़ की कोशिश करता हूँ। अब हमारे उस दौर में जो हमारा जिसे कह ले कि ब्रॉटअप था, वो ये था कि खूबसूरत अल्फाज हो, खूबसूरत ख्यालात हो, पर सिंपल हो, जितना हो सके सादा हो, ताकि एक आम आदमी की, एक आम शख्स की जो ना जबान जानता हो ना, लेकिन उसको समझ में आ जाए कि हम अपने गाने के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं। बहरहाल ये कहने की वजह ये है, मतलब ये है कि सिंपल वर्ड्स बट डीप थॉट्स, अच्छे ख्यालात हो और उनको पेश करने के लिए अच्छे अल्फाज हो, ये मेरा स्टाइल रहा है और ये आज भी मैं कोशिश करता हूँ।
1: और ये सारी अच्छाई जो है महबूब साहब, इट कम्स फ्रॉम अ वेरी गुड हार्ट आल्सो, आई फील एक सिंपल और प्योर हार्ट ऑलवेज ब्रिंग्स आउट द गुडनेस इन देयर वर्ड्स एंड देयर लेटर्स, एंड दैट्स व्हाट डेफिनेटली रिफ्लेक्टेड इन योर सॉन्ग्स। जहाँ आपके गानों की बात हुई है, अगला गाना डेफिनेटली महबूब साहब का गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। बहुत सी बातें होने वाली है महबूब साहब से अबाउट 90s, यू आर गोना रियली गेट टू नो ऑल द 90s की अंदर की बातें, और एक अलग ही एरा में आप एंजॉय करने वाले हो आज का शो ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: GWM के मिर्ची रिचार्ज में आइडियल इंडियन स्कूल के बच्चों ने की ढेर सारी मस्ती एंड फन. लेट्स हियर इट फ्रॉम देम.
1: 89.6 मिर्ची वन से मैं हूँ आरजे मस्मोगा गौरव और मैं आया हूँ आज आइडियल इंडियन स्कूल में और मेरे साथ ढेर सारे बच्चे हैं. यू गाइस एंजॉयड इट.
2: It was great fun. Thank you, Mirchi. Thank you, GWM.
3: Thank you, Mirchi, for the GWM recharge. It was really fun, especially the magic show.
4: Anshu, Gaurav, Afin, thank you very much.
5: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also, enjoy 30% off on making charges. Offer only till 25th October. Rush to your nearest Kalyan Jewelers store today to grab this offer. Conditions apply.
6: It's back! It's back! LG and Jumbo ki mega promotion! LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs aur audio products par assured gift vouchers. Plus, up to 3 years extended warranty, Mukafa points, Nujum, Air Miles aur Avios. Visit LG brand shops, Jumbo stores ya JS.QA. Hurry! Offer valid till 19th October.
7: Kalwani to sirf chore karein.
8: हमारी चोरियाँ चोरों से कम है के
9: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: Well, जब बात 90s के गानों की आती है ना, तो कितने सिंपल, आसान, कैची, कॉन्वर्सेशनल टाइप. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को. और गानों की बात करें जब 90s के, सिंपल कॉन्वर्सेशन जैसे क्या करे ये ना करे ये कैसी मुश्किल है यारो सुन लो जरा, मतलब इतने सिंपल जैसे कोई बात कर रहा होगा, लेकिन फिर भी सो कैची. इट्स ऑलवेज देयर हमारे बैक ऑफ द माइंड में, सारे के सारे लिरिक्स याद रहते हैं. और लिरिक्स के पीछे जो इंसान है आज हमारे साथ में जुड़ा है, एंड दैट इज नन अदर देन मिस्टर महबूब. जी, द लिरिसिस्ट महबूब, जिन्होंने रंगीला मूवी के गाने लिखे हैं, तू ही रे जैसे गाने, एंड सो मेनी आइकॉनिक सॉन्ग्स. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट रंगीला के गाने, जो बहुत ही यूनिक थे अपने आप में, जैसे मैंने कहा सिंपल लेकिन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता हुआ, सो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप महबूब जी?
1: हाँ आफरीन, वो ऐसा था कि चूंकि हमारे जो कैरेक्टर्स थे, जो किरदार थे, जैसे आमिर खान जो थे, वो एक मतलब हमारे मुंबई की जबान में टपोरी कहते हैं, टपोरी होते हैं, तो उनकी लैंग्वेज क्या होगी. और उर्मिला एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस है, उनके अपनी एक थॉट प्रोसेस होगा, उनकी अपनी एक लैंग्वेज होगी. तो वो हिसाब से एक बड़ा कॉन्शियस डिसीजन था. मैं एक थोड़ा सा वाकया बताऊँगा कि क्या करे क्या ना करे जो गाना है, आपने सुना होगा, जो आपने भी किया.
0: हाँ जी, हाँ जी.
1: तो उसमें पहला अंतरा जब मैंने लिखा था वो बड़ा पोएटिक था कि आसमां से मैं तारे चुरा लूं, चांद को, चांद से उसकी रोशनी चुरा लूं, सूरज से आंखें लड़ो, समथिंग. मतलब बड़ी बड़ी बातें की थी मैंने. मैं हवाओं का रुख मोड़ दूं, मगर उससे नहीं कह सकता कि मैं उससे प्यार करता हूं. गाना रिकॉर्ड भी हो गया था, लेकिन कहीं रामू जी को लगा कि फर्स्ट अंतर के बाद, सेकेंड अंतरा बिल्कुल ठीक था, लेकिन फर्स्ट अंतर रामू जी ने कहा कि मैं वो बड़ा पोएटिक लग रहा है, और एक वैगामोंड जो लगा है, जो गुंडा का किस्म का है, वही अल्फाज ये शायरी नहीं करेगा, उसको हल्का करो. फिर मैंने हमको, हम वापस चेन्नई जा रहे थे, और तब मैंने फ्लाइट में वो अंतरा लिखा कि रोज रोज हम सोचता यही, आज हमको वो अगर मिल जाए कहीं तो, ऐसा बोलेगा साला वैसा बोलेगा, खुल्लम खुल्ला उस पे दिल का राज हम खोलेगा, वो सामने चमकती है तो सांस ही अटकती है और जबान जाती है फिसल. तो फिर उस किरदार को, आमिर के कैरेक्टर को नजर में रख के मैंने फिर अल्फाजों को चेंज किया. मांगता है क्या, अगेन आमिर और उर्मिला के बीच है, तो और ट्यून भी ऐसी थी, तो फिर मैंने उसमें अल्फाज लिखे कि मांगता है क्या वो बोलो, तो उसमें थोड़ा सा मैंने फिर भी थोड़ी सी पोएट्री की, मांगता है चांद ले लो, ये सुहानी शाम ले लो, तो इस तरह. तो यस, यकीनन वो किरदारों को नजर में, यारो सुन लो जरा अपना ये कहना, जीना हो तो अपुन के जैसे जीना, बिल्कुल सही कहा तुमने. वो किरदार की वजह से हमने कॉन्शियस डिसीजन था, और इस तरह से मैंने अल्फाज उसमें पिरोए. जी
0: हाँ महबूब जी, बहुत ही अच्छा लगा ये सुनकर हमें. एंड टॉकिंग अबाउट द सॉन्ग्स ऑफ रंगीला मूवी, और एआर रहमान की म्यूजिक, एवरीथिंग ऑन स्पॉट, एंड ऑफ कोर्स काफी सारे गानों में आशा ताई की भी आवाज रही है. एंड रंगीला जिसे अब कंप्लीट हुए हैं पूरे 30 साल, और रंगीला का अगला गाना जहां महबूब जी ने खुद इस गाने के बारे में इतनी बातें बताई, क्या करे या ना करे. नाउ व्हेन यू लिसन टू दिस ट्रैक, आप लिरिक्स सुनिए, कितने ही मजे के लिरिक्स थे इस गाने के. मेरे साथ में है महबूब जी, और आप सुन रहे हो आफरीन को ऑन 89.6 मिर्ची 1 मिर्ची मॉर्निंग्स. बहुत बातें होगी, हम बिल्कुल नॉस्टैल्जिया में हैं, सो कहीं जाइएगा मत, बने रहिएगा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: देखिए कुछ आवाजें ऐसे जरूर होती है ना जो कभी पुरानी होती ही नहीं है, चाहे कितनी भी जनरेशंस जो है वो बदल जाए। और एक ऐसी आवाज है वो है ऑफ कोर्स हमारी लेजेंडरी आशा भोसले जी की। अब जरा सोचिए, तन्हा तन्हा रंगीला रे, लिरिक्स महबूब साहब के, म्यूजिक AR रहमान की और आवाज आशा ताई की। व्हाट एन आइकॉनिक कॉम्बिनेशन। अब इस कॉम्बिनेशन में से एक शख्सियत जो लिरिसिस्ट महबूब साहब है, उनसे हमारी बातें हुई थी। और जब मैंने उन्हें पूछा था, महबूब साहब आशा ताई के साथ में काम करना लेजेंडरी सिंगर कैसा था वो एक्सपीरियंस, बिकॉज बैक देन द यंग महबूब साहब जो नए नए इंडस्ट्री में आए थे, नर्वस थे, कैसे थे, एंड आशा ताई वॉज ऑफ कोर्स तभी से वो लेजेंड ही थी। तो महबूब साहब का कहना था कुछ?
1: जी हाँ आशा, ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात रही कि मेरी पहली फिल्म थी जो रंगीला, उसके लिए आशा जी ने, आशा ताई ने, हमारी आशा जी ने अपनी आवाज़ दी। तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना या याई रे जोर लगा के नाचे रे। फिर ऐसा नहीं रहा, फिर उसके बाद दौड़ में भी उन्होंने मेरा ओ भव रे गाना गाया, मेरा एक अच्छा बड़ा उनके साथ एक रेपो बन चुका था। हाँ ये बात ज़रूर है कि जब पहली दफ़ा गाना जब रिकॉर्ड होने की बात आई तना तना, और मुझे रामू जी ने जब बताया कि आशा जी को बुलाया गया, तो मैं यकीनन एक न्यू कमर होने के नाते बिल्कुल बिल्कुल मैं डर गया था। और मैंने डर में जैसा एक बच्चा अपने वालदेन को, अपने माँ बाप को पुकारता, मैंने मद्रास से अपनी माँ को फ़ोन किया। मैंने अपनी वालदा से कहा कि अम्मी आज आशा जी आ रही है पहला गाना और मुझे बहुत घबराहट हो रही है, उनको पसंद आएगा नहीं आएगा। तो अम्मी ने मुझे एक वाक्या सुनाया कि मैं पैदा हुआ था और जब क्या कहते हैं इसको, अम्मी को होश आया, मैं उनके बाजू में ला के रखा गया। मुझे जब होश आया तो दूर कहीं आशा जी का गाना बज रहा था। तो अम्मी ने मुझे बड़े प्यार से समझा कि शायद तेरा और आशा जी का कोई रिश्ता है, कि जब तुझे मेरे बाजू में ला कर डाला गया और आशा जी का गाना दूर बज रहा था। तो डर मत, उनको मेरी तरह ही समझ, अपनी वालदा समझना, बिल्कुल इज्जत और अदब करना, और इंशाल्लाह तेरा गाना अच्छा लगेगा। जब ये अल्फाज सुने तो मुझे बहुत हिम्मत आई, तो मैंने रामू जी से कहा कि रामू जी मुझे लगता है आशा जी शायद थोड़ी जज्बाती हो जाएंगी, क्योंकि एक साल एक डेढ़ साल पहले ही पंचमदा का देहांत हुआ था, और जैसे कि तना तना में बोलते कि तना तना यहाँ पे जीना, ये कोई बात है, कोई साथी नहीं तेरा, ये कोई बात है। और आफरीन यकीन करें आप वही हुआ, जब वो गा के निकली तो थोड़ी सी इमोशनल थी, उन्होंने कहा कि महबूब भाई आपके अल्फाजों ने कुछ याद दिला दिया मुझे, बहुत खूबसूरत लिखा आपने। और उन्होंने बहुत तारीफ़ की जो मेरे लिए किसी अवार्ड से कम नहीं है। मैं तो ये कहूँगा आशा जी जहाँ भी है, मे हर सोल रेस्ट इन पीस, बहुत वो मुझे इंक्रेज करती थी। तो फिर मेरा डर तो उस वक्त ही ख़त्म हो गया था जब उन्होंने तना तना की तारीफ़ की, बट हाँ उसके पहले मैं बहुत नर्वस था, और कौन नहीं होगा जब इतनी बड़ी लेजेंड आपका गाना गाने, वो भी पहला गाना गाने।
0: बिल्कुल सही।
1: तो यस दैट टाइम आई वाज वेरी नर्वस, लेकिन बाद में आशा जी को मेरे अल्फाज मेरे तरीके पसंद आने लगे, और ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात थी।
0: क्या खूबसूरत वाक्य आपने शेयर किया है महबूब जी, मतलब आशा ताई के साथ आपका इतना पुराना कनेक्शन ही कह सकते हैं, इट्स अ सोल कनेक्शन, सोल टू सोल कनेक्शन, एंड दैट डेफिनेटली रिफ्लेक्टेड इन योर वर्क एंड आशा ताई'ज वर्क। ये जो आर्ट है एक दूसरे को साथ लेकर आता है, तो इसी तरह से वंडर्स क्रिएट करते हैं। दैट्स मूविंग टू द नेक्स्ट ट्रैक, जो आप दोनों की एक कॉम्बिनेशन का गाना, जैसे तन्हा तन्हा के बारे में आपने बात किया, प्लेइंग नेक्स्ट राइट ईयर रंगीला से ऑन मिर्ची माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा, क्योंकि मेरे साथ है आज कॉन्वर्सेशन में महबूब जी, द लिरिसिस्ट महबूब, 90s के आइकॉनिक लिरिसिस्ट ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La vieva la burga. Mirci, burga.
2: Hello.
3: Mr. Gagan, very good evening. बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको. आपका अकाउंट नंबर 337103 राइट? वन सेकेंड सर. सर आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000. वन सेकेंड सर. आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
2: नहीं तो.
3: आपने नहीं किया है?
2: नहीं.
3: तो फिर किसने किया है सर ये? सर ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
2: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ?
3: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सर्विस देखिए. कम से कम मुझे पता चला, मुझे ऐसी पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है. आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाले, किसने निकाला, किस पे शक है आपको?
2: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी ना कुछ को चेक दिया है, ना मैंने एटीएम यूज किया है.
3: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
2: मैंने 2 पैसे निकाले.
3: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
2: मैंने कोई पैसा निकाला, ना मैं किसी को चेक दिया. एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल. ओके
3: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं, लेके मत जाओ, हम दे देते हैं ना आपको. अब मुझे क्या पता कौन लेके गया सर?
2: वो जो नोट लेके जा रहा है उस पर मेरा नाम लिखा है.
3: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल लिए हैं. मुझे नहीं पता. आप मुझे क्या बताए? आप बतमीजी से बात मत करिए.
2: सबको लगा दूंगा लाइन में.
3: सर मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए. बॉस को बाद में लाइन में लगाएगी. स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं सर. ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे. 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है.
2: क्या
3: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
2: किससे बात करनी है? किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
4: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ. बात आपसे ही करनी थी और बैंक हमारा मिर्ची का है. आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है. 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं आपके अकाउंट में. 1,42,000 रुपए हैं. और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था.
2: लेकिन
3: सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है, आपने भड़ास भी निकाली है. नवेद पे भड़ास निकाल दिया आपने.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट, इट्स बैक, इट्स बैक. एलजी एंड जंबो की मेगा प्रमोशन. एलजी अप्लायंसेस, एसीज, गेमिंग मॉनिटर्स, टीवीज और ऑडियो प्रोडक्ट्स पर अश्योर्ड गिफ्ट वाउचर्स, प्लस अप टू 3 इयर्स एक्सटेंडेड वारंटी, मुकाफा पॉइंट्स, नजूम, एयर माइल्स और एवियोस. विजिट एलजी ब्रांड शॉप्स, जंबो स्टोर्स या js.qa. हरी, ऑफर वैलिड टिल 19th अक्टूबर.
6: Free cash vouchers on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
7: Yes, Bebo.
6: Sirf 25% pay karke gold price lock kar sakti hu?
7: Yes.
6: Catch kya hai?
7: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free cash vouchers. Aur sirf 25% pay karke gold rate ko block kar do.
6: I still can't believe it. No catch.
7: Catches sirf matches mein hote hain, Bebo. This is your festive gift from Malabar gold and diamonds.
8: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
9: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
8: This initiative is driven by GWM.
10: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट.
11: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा.
12: दोनों मिलेगा.
13: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
14: 89.6
15: FM, मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: देखिए, जब गानों के पीछे की कहानी पता चलती है ना, तो गानों की अहमियत और बढ़ जाती है। और एक ऐसा पेट्रियोटिक गाना जिसकी अहमियत मैं और ज्यादा बढ़ाने वाली हूँ, एंड दैट इज माँ तुझे सलाम। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, एंड आफरीन कैन नॉट बी एनी लेस एक्साइटेड क्योंकि यार मेरे साथ में है महबूब जी हिमसेल्फ, लिरिसिस्ट महबूब जी। इनके साथ में मेरी बातें हुई थी, और जब बात होती है उनके सबसे बेस्ट गाने की, सो हैज़ टू बी माँ तुझे सलाम, जिसके अल्फाज महबूब साहब ने दिए थे और म्यूजिक ए आर रहमान ने दी थी। लेकिन इस गाने के पीछे की कहानी क्या है, आइए खुद महबूब साहब से जानते हैं।
2: जी आफरीन, उस वक्त हमारे जहन में ये था कि हमको एक एक्चुअली जब मैं चेन्नई गया तब मुझे जब मुझे बुलावा आया रहमान और की तरफ से, तो तब मुझे पता चला कि एक एल्बम करना है, और डैट इज़ रिलेटेड टू द 50th ईयर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, 50 साल की आज़ादी का एक जश्न मनाना है, तो उसके लिए एल्बम करना है, एंड इट वुड बी एयर रहमान फर्स्ट एल्बम। जो टारगेट ऑडियंस होगी वो वुड बी यंग, लाइक 18 से 25, 26, 27 साल के बच्चों के लिए ये गाना होगा। मैंने कहा कुछ अलग सा लिखते हैं, जब यंगस्टर्स के लिए लिख रहे हैं, जब यंगस्टर्स टारगेट है तो क्यों ना हम उसको थोड़ा सा मोहब्बत, थोड़ा सा माइल्ड रखे।
1: Lovely.
2: और इस बात पे सब अग्री हुए। फिर वहाँ पे एक डिसीजन हुआ हमारा कि ऐसा करते हैं कि बहुत से लोग जो है मुल्क के बाहर रहते हैं, अपने अपने हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं, उन पर उनके दिल में मोहब्बत वतन की आज भी है, देश से उतना ही प्यार है।
1: So
2: हमने कहा कि
1: so
2: क्यों ना ऐसे। और जब मैं ट्यून लेके बैठा अपने होटल में लिखने के लिए रात को, तो सबसे पहली जो लाइन मेरे जहन में आई, जब मैं ट्यून सुनता रहा, 10 बार मैंने ट्यून सुनी जो भी एआर ने मुझे दिए थे, सबसे पहली लाइन जो मेरे जहन में, माँ तुझे सलाम, पहले वो लाइन आई। और उसके बाद फिर नजर में रख के लिखता गया, यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई। अगेन बड़ी सिंपल लाइंस, सिंपल वर्ड्स, एक बच्चा। और इसका रिजल्ट भी हमको मिला कि एक मरतबा एआर मुंबई आए थे, तो हम लोग दोनों रात के वक्त खाना खा के, हम लोग कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाए थे और बाहर निकले तो इंतजार कर रहे थे, तो एक कार गुजरी जिसमें 4-5 बच्चे थे और वो चीख रहे थे जोर जोर से, माँ तुझे सलाम, मम्मा तुझे सलाम। तो हमने एक दूसरी तरफ देखा और ये तसल्ली हुई कि मिशन अकम्प्लिश्ड। हमने इतना हर जगह, हर वक्त, वो हर मौके पे बचता है जब भी देश की बात आती है। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि जब भी वर्ल्ड कप जीता जाता है तो हमारे क्रिकेटर्स वो गीत गाते हैं।
1: बिल्कुल गाते
2: हैं। तो आई एम थैंकफुल टू द पीपल फॉर गिविंग लव टू दिस सॉन्ग, की उन्होंने इसको एक एंथम सा बना दिया है, जिसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतना प्यार दिया। 31 साल हो रहे हैं लेकिन गाना आज भी जिंदा है, और मुझे उम्मीद है कि हमेशा बचता रहेगा। जब भी हमारे इंडिपेंडेंस डे आएंगे या रिपब्लिक डे आएगा, ये बचता ही रहेगा। लोग ऐसा ही प्यार देते रहेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ।
1: बिल्कुल प्यार देते रहेंगे। आपने 50 साल के ओकेजन पे बनाया था हमारे आज़ादी के, अगले कई सालों तक ये गाना विल ऑलवेज बी वेरी क्लोज टू एवरी इंडियंस हार्ट, माँ तुझे सलाम, वेरी ब्यूटिफुली रिटन बाय वन एंड ओनली लिरिसिस्ट महबूब साहब, और हमारे ऑफकोर्स वन एंड ओनली कंपोजर सिंगर ए आर रहमान की आवाज़ में। अगला गाना आपको मैं सुना रही हूँ, एंड दैट वॉज माई कॉन्वर्सेशन विद लिरिसिस्ट महबूब साहब, जिन्होंने इतनी खूबसूरती से वो सारी बातें बताई, 90s से जुड़ी हुई, जैसे हमें दो पल के लिए लगा कि यस कहीं वो हमारे सामने ही बैठे हैं और वो सारे किस्से हमें सुना रहे हैं, एंड टोटली आई एंजॉय दिस कॉन्वर्सेशन विद दिस। अगले गाने की तरफ बढ़ते हुए माँ तुझे सलाम, राइट चरण मिर्ची, इट्स हॉट।

0: वेल, जब किसी अपने की नाराजगी दूर करनी हो ना, तो हम क्या क्या नहीं करते। देखिए, कभी सॉरी कह देते हैं, कभी उनकी फेवरेट चीज दे देते हैं, तो कभी उनको बस एक लंबा सा मैसेज लिख देते हैं, और कभी तो बिना गलती के भी सॉरी बोल ही देते हैं, बस बात खत्म हो जाए। लेकिन मुझे लगता है किसी को मनाने का सबसे खूबसूरत तरीका अपने दिल की बात कह देना, और अगर वो बात शायरी के अंदाज में कही जाए तो फिर क्या ही है।
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: कि अर्ज किया है, कुछ दूरी रख ले मगर ताउम्र का फासला ना कर। कुछ दूरी रख ले मगर ताउम्र का फासला ना कर। है अपने कई मसाइल, बस तो नया मसला ना कर। मुझसे बात ना कर, मुझसे बात ना कर, मगर मेरी कुछ गुफ्तगू कर ले। यो एकदम से अजनबी होने का तू फैसला ना कर। क्या बात है, नहीं खूबसूरत अंदाज है मनाने का। ना कोई बड़ी बड़ी बातें, ना कोई शिकायत, बस एक छोटी सी गुजारिश। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, राइट हियर ऑन मर्शी इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: देखिए कौशल, आपको देख के लगता नहीं है आप किसी चीज से डरते होंगे, डर लगता है आपको?
3: पानी के अलावा सांपों से बड़ा डर लगता है, डर से ज्यादा रिपल्स हो जाता हूँ, मुझे एकदम झंझरी सी मच जाती है एकदम शरीर में। क्या
2: जैसे झंझरी बोला ऐसे मुझे अचानक से वो सेंसिटिव टूथपेस्ट झंझनाहट। यू आर लिसनिंग टू मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: It's back! LG and Jumbo ki mega promotion. LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs aur audio products par assured gift vouchers. Plus, up to 3 years extended warranty, Mukafa points, Nujum, Air Miles aur Avios. Visit LG brand shops, Jumbo stores ya JS.QA. Hurry! Offer valid till 19th October.
5: Dosti kai kuch sule madam? No sorry, no thank you.
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
7: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा,
8: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

मेरे ख्याल से ना आजकल की Gen Z से बहुत कुछ सीखना चाहिए। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और Gen Z का ना एक मंत्र है कि खुश रहो और खुश रहने दो। हल्ली वल्ली इज देयर मोटो आई फील। एंड कहीं ना मिलेनियल्स को ये बात Gen Z से बखूबी सीखनी चाहिए कि किस तरह से वो किसी के एक में नहीं, दो में नहीं। वो शाहरुख खान ने एक बार कहा था ना कि मैं तुम्हारे बारे में ना बुरा सोचता हूँ ना अच्छा सोचता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सोचता ही नहीं हूँ। एंड दैट्स व्हाट आई थिंक सो Gen Z ट्रूली डज। लेकिन हम ना मिलेनियल्स जो ये बहुत इमोशनल जनरेशन से माने जाते हैं मेरे ख्याल से, इवन मोर इमोशनल देन दी Gen X एंड बेबी बूमर्स आई फील। हर चीज की ओवर थिंकिंग, हर चीज को दिल पर लगा देना एंड देन वही बस बात को बार बार सोचते रहना। सो बस खुश रहो और खुश रहने दो। यही बात के साथ आज कहते हुए अलविदा लेना चाहूंगी और मिलूंगी जल्द से सेम टाइम सेम शो मिर्ची मॉर्निंग्स पर। तो फिर इजाजत है और खुश रहो, जैसे हमेशा मैं कहती हूँ, और अपने आसपास के लोगों की खुशी भी इससे बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ती है इस पर। तो बस मैं हूँ आफरीन, लेती हूँ अलविदा, मिलूंगी जल्दी। सुनते रहेगा मिर्ची, इट्स हॉट

with Sean. Well, Sean की खूबसूरत सी आवाज़ और what a lovely track it is. क्या खूबसूरत सा प्यारा सा गाना. ये तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन सच कहूँ इस गाने ना एक बात आज फिर से मेरी जिंदगी में दोहरा ही दी.

गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग टू मीटी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू. एक बार फिर से पूरी मुस्कान के साथ आपकी जिंदगी में मैं जो ना दाखिल हो ही चुकी हूँ. अगर आज की तारीख की बात करें तो हम पहुंच चुके हैं 14th of October, यानी कि वेंसडे के दिन. महज एक दिन की दूरी पर हैं हम, एंड उसके बाद वो बड़ी वाली वीकेंड वाली स्माइल जो है ना हमारी जिंदगी में एक बार फिर से शामिल हो ही जाएगी. यार अच्छा मुझे एक बात बताना कि किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए क्या चाहिए? क्या कोई महंगा सा गिफ्ट, क्या कोई बड़ी सी सरप्राइज पार्टी, या बहुत कुछ स्पेशल? क्या लगता है आपको? अक्सर यही सवाल आता है ना. यार मुझे ऐसा लगता है कि कई बार किसी को खुश करने के लिए, किसी की जिंदगी में सेटिस्फेक्शन या जेन्युइन स्माइल लाने के लिए कुछ और नहीं, बस तुम्हारा ना होना काफी है. लेकिन तुम्हारा होना मतलब पूरी तरह से इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, हर तरह से उस शख्स के साथ होना काफी है. क्या है ना, कई बार जब कोई परेशान होता है तो उसे लगता है कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कोई ऐसा चाहिए जो इस वक्त मुझे सुन ले ना, उस वक्त जो सजेशंस देने की, उसे करेक्ट करने की, इन सब की जरूरत नहीं होती. यू नो, ऑल वी नीड इज समवन जिसके आगे हम बस दिल खोल कर अपनी बात रख सकें, चाहे हम सही हैं, गलत हैं, या जो भी है. एंड उसके बाद जो जिंदगी में तसल्ली मिलती है ना, और जो मुस्कान आती है, उसकी तुलना किसी और से हम कर ही नहीं सकते. तो वेल, इतना करते हैं कि क्यों ना जिंदगी में हर दिन एक कोशिश हम करें कि अगर हमारी मौजूदगी भर से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है, तो वो एक कोशिश जो है ना हम हर दिन करें. तो बस मुझे लगा कि शायद मेरे प्रेजेंस से, मेरी बातों से आपके चेहरे पर भी इस वक्त कोई ना कोई स्माइल तो आएगी, एंड जरूर आएगी. तो हैप्पीनेस स्प्रेड करने का ये सिलसिला करते हैं शुरू. बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें होंगी, कॉन्टेस्ट होंगे, फन गेम्स होंगे, ये सब कुछ होगा, लेकिन अब से कुछ देर में. अभी फिलहाल एक काम करें, आप मेरे चेहरे पर स्माइल लाएं. अगर मुझे सुन रहे हैं तो क्यों ना एक गुड मॉर्निंग मैसेज हो जाए 5000 1896. आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु. मीनवाइल अरिजीत सिंह की आवाज में अगला खूबसूरत सा गाना आपके लिए. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: Mirchi. Escabana, puscabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. No viva la murga. Mirchi, murga.
1: हेलो,
2: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: बोल रहे
2: हैं राज जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, कौन सा बोल रहे हैं?
2: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
1: लेकिन है किस लिए ये तो बताइए, किस लिए, कहाँ पे लगाना
2: नहीं
1: है?
2: नहीं, वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं, हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं, उसमें अब जाहिर सी बात है भाई, आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा।
1: तो
2: हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी नहीं, पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम है आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है,
1: तो बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास? तो
2: नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना?
1: ये कॉपी मुझे भी भेजना
2: राज जी। एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
1: अपने फ्रेंड्स को, उनको भी भेज।
2: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। अब थोड़ा सा वो कॉन्टेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहे तो?
1: हाँ बिल्कुल बताइए।
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वांटेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया, आपका आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
1: कुकड़ों को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: खट खट,
5: हू दैट?
4: जस्सी।
5: जस्सी, कौन सी वाली जस्सी?
4: जस्सी हू हैज कम आंटी जी।
5: खट खट, हू दैट?
3: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: Well, Arijit Singh ki khubsurat si awaaz, Sachin Jigar ki composition and what a lovely track it is from the film Munjeya, ye baat to maine suna di. Lekin aap se ek sawal puchna hai. Yaar, mujhe ek baat batana. Ki in dino jab tum ghar se bahar nikalte ho, to sabse pehle kya check karte ho? Ghar ki chabi, tumhara wallet, ya to phir tumhara phone?
1: Mirchi Anshu.
0: देखिए जी, बात इतनी ही कि जमाना तो ये आ चुका है कि लोग बाग को लगता है घर वाले भले ही घर पे छूट जाएं, लेकिन हमारा फोन जो है ये हमारे साथ होना चाहिए. क्योंकि बात इतनी है ना, अगर आजकल फोन तुम्हारे साथ है तो समझो आधी दुनिया तुम्हारी जेब में. शॉपिंग करनी है, कॉफी लेना है, बिल्स पे करना है, सब फोन निकाला है, पेमेंट जो है टकाटक डन. और इसी डिजिटल कन्वीनियंस में कतर ने एक और शानदार कदम आगे बढ़ाया है. बिल्कुल ठीक सुना आपने, कतर की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अपनी सर्विसेज की फीस पे करने के लिए एप्पल पे और गूगल पे को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है. मतलब अब मिनिस्ट्री की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए पेमेंट्स करना और भी आसान एंड कन्वीनियंट हो चुका है. एंड खासकर बिजनेस ओनर्स की बात करें, एंटरप्रेनर्स की बात करें, तो इनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है. अब बार बार कार्ड डिटेल्स भरने की जरूरत नहीं है बॉस. अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट ऑप्शन चुना एंड काम जो है वो हो गया. चलिए जी, लेकिन इस वक्त मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी. अगर इसमें डिजिटल एडवांस्ड वर्ल्ड की बात करूं तो आप कौन सी टीम है? टीम एप्पल पे है, टीम गूगल पे है, या आज भी वो आप टीम डेबिट कार्ड को ही प्रेफर करते हैं? 5000 1896. आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. मीनवाइल यू ऑल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट. बंदी का नाम अंशु.

0: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 पार्टनर्ड बाय पापा जॉन्स।
1: कतर, आर यू रेडी फॉर द न्यू पैन पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन्स? क्रिस्पी गार्लिक पार्मेजान क्रस्ट, इटालियन सीजनिंग, 6 चीज ब्लेंड एंड चीज एज टू एज, द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर एट पापा जॉन्स। ऑर्डर नाउ।
0: Powered by iPay Wallet.
2: अपनों को भेजिए पैसे with best rates. iPay Wallet के साथ. No stress, self trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
3: Let's do the iPay.
0: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
4: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super speciality clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
5: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
6: With Baladna milk, laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
7: Baladna.
6: Taste that Qatar loves.
0: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.
8: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
9: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स,
10: जबरदस्त ट्रैक्स।
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
12: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: विशाल मिश्रा की खूबसूरत सी आवाज, हंसिका परी का साथ, एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज फ्रॉम द फिल्म सैयारा, एंड दिस हैपेंस टू बी वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट ट्रैक्स। एंड अब जिस सिटी की दास्तान मैं आपके बीच पेश करने वाली हूँ, दिस हैपेंस टू बी वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सिटीज एज वेल।
1: मिर्ची अंशु
0: वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीटिंग मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। आपको पता है मुझे रेडियो में सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट या बात क्या लगती है? यू नो, मुझे वो दौर, वो समय सबसे अच्छा लगता है जब मुझे आपसे इंटरेक्शन का मौका मिलता है। और वो कैसे? स्टूडियो में बैठे बैठे आपसे बातचीत हो तो कैसे हो जी? आपका फोन आता है, उसका जवाब तो मैं देती हूँ, लेकिन जो मैं सवाल करती हूँ आप उसके जवाब देते हैं ना, तो मुझे बड़ा मजा एंड बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए क्यों ना एक बार फिर से आज का ये सिलसिला जो है वो शुरू किया जाए। एंड जैसे कि आपको पता है कि कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था अबाउट द पिंक सिटी, एंड क्वेश्चन ये था भारत का वो कौन सा शहर है जो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। एंड आप सबने जो जवाब दिया ये पूरी तरह से सही, इट वॉज जयपुर। तो चलिए आज अगले सिटी की दास्तान मैं आपके बीच पेश करूंगी, लेकिन उसके पहले आपके जनरल नॉलेज को जरा टेस्ट भी कर लिया जाए। चलिए एक बार फिर से एक टैगलाइन जो एक सिटी को दी गई है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, आपको सुनना है, आइडेंटिफाई करना है, मुझे ये बताना है कि भारत की कौन सी सिटी है जिसे ये पर्टिकुलर टैगलाइन दिया गया है। करेक्ट आंसर कहां देंगे आप? 5000 1896 5000 1896 पर विल गेट कनेक्टेड देयर इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। तो बस आज का टैगलाइन है सिटी ऑफ ड्रीम्स। भारत की वो कौन सी सिटी है, भारत का वो कौन सा शहर है जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, एंड साथ ही भारत के कौन से स्टेट से ये बिलोंग करता है? 5000 1896 आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस, फटाफट से जवाब भेजो। अच्छा लगता है, मेरे सपने कहीं ना कहीं पूरे होते हैं जब आपका जवाब आता है। मीनवाइल सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल की आवाज में मैं कुछ तो कह दूं, जरा गाना सुनो, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: अनिल कपूर सर, I'm sure आप ये सुन सुन के थक चुके हैं कि आप इतनी यंग कैसे दिखते हैं, but I really would like to know, आपको खाने में क्या पसंद है?
2: जैसे मैं क्या, मैं हर चीज खाता हूँ, but I love all kinds of food. I love Japanese food, Chinese food, Indian food, North Indian food, South Indian food, और Gujarati food. Sometimes I love Thai food, Mexican food. खाने में I'm not fussy about food. दिल से प्यार से अगर कोई बना के दे तो मुझे अच्छा लगता है.
1: आप सुन रहे हैं मिर्ची, it's hot.
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
3: Khat khat.
4: Kaun hai?
3: Ishant.
4: Ishant kaun?
3: Ishant Gadadhari Bhim, Ishant.
4: Khat khat, who that?
5: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.

0: कौशल की खूबसूरत सी आवाज़ और कितना प्यारा, कितना खूबसूरत सा गाना है ना। चलिए, प्यारा सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन सपनों के शहर की दास्तान आपके बीच पेश कर दूं।
1: मिर्ची अंशु।
0: तो बस सबसे कुछ देर पहले मैंने आपसे यही पूछा था कि अगर भारत देश से आप आते हैं या भारत देश के बारे में ज़रा भी कुछ जानते हैं, तो आपको मुझे बस आज ये बताना था कि भारत का वो कौन सा शहर है जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, यानी कि इन सपनों के शहर की दास्तान आपके बीच पेश कर दूं।
1: मिर्ची अंशु।
0: तो बस सबसे कुछ देर पहले मैंने आपसे यही पूछा था कि अगर भारत देश से आप आते हैं या भारत देश के बारे में ज़रा भी कुछ जानते हैं, तो आपको मुझे बस आज ये बताना था

0: शिव साहिल हियर, द ड्रीम सिटी ऑफ इंडिया इज़ मुंबई, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, एंड ऑब्वियसली इट्स इन महाराष्ट्र। थैंक यू।
1: वेल, बिल्कुल साहिल, आपने जो कहा ये पूरी तरह से सही, और जितने भी लोगों ने लिख कर भी जवाब दिया वो पूरी तरह से सही, थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन चलिए आज ये दास्तान आपके बीच पेश करते हैं कि आखिरकार इसे सपनों का शहर कहा क्यों जाता है। पता है इसकी कहानी ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वैसे आज जिस मुंबई को हम जानते हैं वो कभी 7 छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना था, क्या आपको पता है? अब धीरे धीरे ये शहर एक बड़े पोर्ट और ट्रेडिंग सेंटर के रूप में डेवलप हुआ। यहाँ बिजनेसेस बढ़ने लगे, टेक्सटाइल मिल्स खुलने लगी, एंड देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ काम की तलाश में आने लगे। कोई नौकरी के लिए आया, कोई अपना बिजनेस शुरू करने आया, तो कोई अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए। लेकिन देखते देखते यहाँ पर आया माया नगरी, यानी कि बॉलीवुड का जादू। मुंबई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा सेंटर बन गया। देश के कोने कोने से लोग यहाँ आने लगे, कोई एक्टर बनने के सपना लेकर, तो कोई सिंगर, कोई डायरेक्टर, और बस धीरे धीरे मुंबई एक ऐसे शहर के रूप में मशहूर हुआ जहाँ लोग अपने सपनों को पूरा करने की बस उम्मीद लेकर आगे बढ़ते गए। एंड ग्रेजुअली इसे प्यार से कहा जाने लगा सिटी ऑफ ड्रीम्स, यानी कि सपनों का शहर। तो बस चाहे आपके जिंदगी के जो भी सपने हैं, लोगों को ऐसा लगने लगा कि अगर हम मुंबई गए तो वो सपना जो है वो जरूर साकार होगा। चलिए यहाँ पे मैं आपको दो इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। क्या आपको मालूम है, जहाँ पे एक तरफ हम सिटी ऑफ ड्रीम्स के नाम से मुंबई को जानते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी कंट्री है जिसे सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है, और वो है श्रीलंका। लेकिन अगर अपने सपनों की बात करूँ तो यार, मेरे लिए तो मेरा सिटी ऑफ ड्रीम्स बना दोहा, देश रहा कतर। हाउ अबाउट यू, आपके लिए वो कौन सी जगह है जिसे आप सिटी ऑफ ड्रीम्स कहेंगे? मुझे जल्दी बताएं, आपके जवाब का इंतजार कर रही हूँ। मीनवाइल अगले आवर की तरफ बढ़े। 5000 1896 वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। यू ऑल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची बंदीगढ़।

0: वेल साच भट्ट एंड सुबोध शर्मा की आवाज़ में खूबसूरत सा प्यारा सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन इस वक्त अपने दिल की कोई बात है जो आप तक पहुंचाना चाहूंगी।
1: मिर्ची अंशु
0: यार, जिंदगी में ना हमने कई रिश्ते बनाए हैं, कई लोग जो हैं हमारे कनेक्शन में आए, लेकिन एक बात बताना, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बचपन में जब हमें मम्मी डांटती थी तो हम भागकर सीधा पापा के पास जाते थे, लेकिन जब पापा डांटते थे तो कहीं ना कहीं सीधा मम्मी के पास। या लेकिन बड़े होते होते ना एक बात समझ में आई कि पापा की उस डांट के पीछे हमारे लिए कितनी फिक्र छुपी होती थी, है ना। उनका वो बार बार पूछना कि घर कब आओगे, पहुंचकर फोन कर देना, ये पैसे हैं ना तुम्हारे पास, या कई बार बेवजह बस हमें डांट जाना। हमें ऐसा लगता था यार पापा तो हमेशा ही सख्त होते हैं, इन्हें तो बस एक ही बात पता है कि हमें किस तरह से डांट के बात की जाए। कभी जब पापा इतने बिजी हुआ करते थे कि देर रात तक घर आते थे तो मम्मी से ना अक्सर शिकायत करते थे कि पापा इतने बिजी क्यों हैं यार, इनके पास हमारे लिए वक्त नहीं है क्या। पता ही नहीं चला कि वो वक्त कैसे गुजरा, इन किस तरह पापा अपना वक्त हमें ना दे पाए ताकि हम अपनी जिंदगी के वक्त को ना बहुत अच्छी तरह से जी पाए यार। यू नो, जो बेटियां होती हैं ना वो पापा के लिए बहुत स्पेशल होती हैं। एक बेटी और पापा का रिश्ता जो है ना बहुत खास होता है। मुझे याद है कि शायद मैं अपने दिल की बात बचपन के दिनों में अपने पापा के सामने उतनी अच्छी तरह से नहीं कह पाती थी जितने अच्छे से मम्मी के सामने कहा करती थी। लेकिन महसूस हुआ कि पापा खुद डांटे वो चलता था, लेकिन मम्मी की एक आवाज़ जो है ना पापा को हिला के रख देती थी कि तुमने गुड़िया को डांटा तो डांटा कैसे। यार पिता जो होते हैं ना हमारी ज़िंदगी में हमारी ढाल की तरह होते हैं, तो शायद थोड़े सख्त होते हैं, तो शायद बहुत व्यस्त होते हैं, लेकिन बिना कुछ कहे परिवार के साथ अपने बच्चों का बोझ कुछ इस तरह से अपने कंधों पर उठाते हैं ना कि कभी किसी को पता ही नहीं लगने देते। एंड शायद हम सबकी नज़रों में बस वही किरदार बन जाते हैं कि यार ये कितने व्यस्त रहते हैं। आज शायद मेरे पापा मेरे पास नहीं हैं, एंड आज शायद 2 साल हो चुके हैं जब मेरे पापा मेरे साथ नहीं, लेकिन आज के दिन को सोचती हूँ तो लगता है कि शायद आज मैंने उन्हें खोया, लेकिन एक बात जानती हूँ कि वो चाहे किसी भी कोने में क्यों ना है, पिता एक ऐसा साया है जो हर वक्त तुम्हें छांव देने के लिए ना तुम्हारे पास होता है। उसके लिए उसकी दुनिया में मौजूदगी जो है ना वो ज़रूरी नहीं। तो अगर आपके पेरेंट्स हैं, कुछ करें या ना करें, लेकिन यार एक काम ज़रूर करें कि हर दिन उन्हें एक कॉल ज़रूर करें। इतना ही कहना चाहूँगी। सुरनिगम की आवाज़ एंड अगला गाना एन्जॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Kahve Mirci.
1: Iskabala puskabala sakabala.
2: Rabbala.
1: Murga murga. La vizbala murga.
2: Mirci murga.
3: Hello.
4: Could I speak to Manish please?
3: Speaking.
4: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से. ओके मनीष, आई नीड योर फेवर. आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी. मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को. मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. राइट, कि पहले इंसान एप था. आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में. यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया. राइट,
3: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
4: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. राइट, एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ. 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे. इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके.
3: 2 घंटे करना क्या है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा
4: हूँ. वही वही, तो ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था. तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे. तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स के सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर. आई एम श्योर के सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था. बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी. तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए. कल का रख ले. मेरी बात सुनो. आई एम प्रोफेसर. मेरी बात सुनिए यार. आप हेलो, वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है.
3: हेलो,
4: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी. मेरी बात सुनिए. मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने, उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार. मैं मुर्गा बनाया, तुम रेडियो मिर्ची पे हो. आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार. मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने जो लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार. इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया, मैं बता दूंगा उनको.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना.
7: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
8: कैसे रुक सकता है?
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
5: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: पल कार्तिक की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज, इसका रीप्राइज्ड वर्जन भी उतना ही प्यारा है जितना कि ओरिजिनल वर्जन कभी हुआ करता था या आज भी। चलिए गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन इस वक्त आपके काम पते की कोई खास बात आप तक पहुंचा दी जाए।
1: मिर्ची अंशु
0: देखो, दो चीजें जो है ना, मैंने कतर आने के बाद 101% अपनी जिंदगी में शामिल लेने के शरीक की हैं, कुछ किया हो या ना किया हो। करेंसी के रेट्स को ट्रैक करते रहना और साथ ही सोने के रेट को ट्रैक करते रहना, ये मेरी मैंडेट रूटीन बन चुकी है। और अगर आपको लगता है कि आप भी इन सब बातों में काफी दिलचस्पी रखते हैं, हम खरीदें ना खरीदें पता जो है हमको जरूर होना चाहिए, और साथ ही दिल करेगा तो लोगों को खरीदवा भी देंगे, चलते चलते खरीद भी लेंगे। तो चलिए आपको बता दूं कि आज अल फरदान एक्सचेंज में गोल्ड का रेट क्या ही कहानी बयां करता है।
1: गोल्ड अपडेट।
0: वेल, अगर आज आप परचेसिंग करना चाहेंगे सो पैम्प 1 ग्राम गोल्ड एडी फॉर्चुना बार टुडे इज प्राइस्ड एट कतरी रियाल्स 568। अगर 5 ग्राम की बात करूं सो इट इज प्राइस्ड एट कतरी रियाल्स 2655। वहीं 10 ग्राम की बात करें सो इट इज प्राइस्ड एट कतरी रियाल्स 5241। 1 आउंस को देखूं सो इट इज प्राइस्ड एट कतरी रियाल्स 16197। एंड वहीं अगर 10 तोले की बात करें, बड़ी खरीदी करने की बात करें, तो समझ जाएं इट इज प्राइस्ड एट कतरी रियाल्स 60127। सो फटाफट से फेस्टिवल का अकेशन है, मौका है, परचेसिंग करें, जिंदगी में खुशियां जो है उनको शामिल करें। मीनवाइल खुशियां बरकरार रखने के लिए स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट। बंदी का नाम अंशु।
2: स्टे अहेड ऑफ टुडेज गोल्ड रेट्स विद अल फरदान एक्सचेंज, पैम्स ऑफिशियल एजेंट इन कतर। बाय ऑथेंटिक स्विस मेड 24 कैरेट पैम्प गोल्ड बार्स एंड अर्न कतर एयरवेज एवियोस टुडे। विजिट आवर ब्रांचेस और डाउनलोड द ऐप नाउ।

अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सब।

0: यार मुझे एक बात बताना कि आज तक आपने अपनी गाड़ी से कितने किलोमीटर्स ड्राइव किए होंगे? 20,000, 50,000 या तो फिर 1,00,000 का आंकड़ा पार हो ही गया?
1: मिर्ची अंशु
0: यार आप और हम तो अपनी गाड़ी के सारे पैरामीटर्स काफी अच्छी तरह से मेजर कर ही लेते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि अर्थ के बाहर किसी दूसरे प्लैनेट पर जो गाड़ी चलाई जा रही है आखिरकार उसका ख्याल कौन रख रहा है? बिल्कुल ठीक सुना आपने, मार्स की बात कर रही हूँ मैं। इट वॉज ईयर 2021 जब नासा यानी कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी ने मार्स पर एक स्पेशल रोबो कार भेजी थी जिसका नाम है परसीवरेंस रोबो। एंड ये बेसिकली एक 6-व्हील्ड रोबो कार है जो मार्स पर घूमती है, वहां की मिट्टी, वहां के पत्थरों को इंस्पेक्ट करती है, फोटोज लेती है एंड साथ ही साइंटिस्ट को ये समझने में मदद करती है कि क्या आने वाले दिनों में मार्स पर जिंदगी यानी कि लाइफ हो सकती है। भाई साहब बात इतनी है कि ये सारा काम करते करते इस रोबो ने एक नया रिकॉर्ड जो है बना दिया। इस वक्त इसने मार्स पर कुल मिलाकर 45.22 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। क्या बात है यार, यार कितनी कमाल बात है ना। टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है कि एक प्लैनेट से दूसरी प्लैनेट पर ना ही सिर्फ गाड़ी को सही तरह से भेजना बल्कि उसे बहुत अच्छी तरह से चला पाना। और एक आप और हम जो यहाँ बैठे बैठे भी अपनी गाड़ी को सही तरह से ना चला पाते। चलिए जी, आपकी गाड़ी को अच्छी तरह से चलवाने के लिए हम जो है एंटरटेनमेंट का तड़का दे ही दे। स्टूडियो टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। एंजॉय।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: कुणाल खेमू, अपने कॉलेज डेज में आपने सबसे बढ़िया जुगाड़ कौन सा किया?
2: हम लोग थिएटर जब करते थे कॉलेज में, ये तो नॉर्मल जिंदगी थी उस वक्त, लिमिटेड पॉकेट मनी होती थी, चल चल के पैसे बचाए जाते थे, रिक्शे के कैसे शेयरिंग में कभी किसी को धोखा देके भाग लेते थे।
1: कुणाल खेमू वो इंसान आज भी आपके पीछे भाग रहा है। व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक अराउंड। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
5: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
6: बहुत कुछ होगा।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: लेकिन श्रेया घोषाल की खूबसूरत सी आवाज और बड़ा पावर पैक ट्रैक इट इज. वैसे सरेंडर करने की बात करूँ तो ये मौका जो है ना ये आ ही चुका है.
1: मिर्ची अंशु
0: देखो, मैंने तो डिसाइड किया है कि आज फाइनली अगर मैं किसी चीज को सरेंडर करने वाली हूँ तो वो है मेरा डाइट चार्ट. नहीं, इसके पीछे मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ. जब मौसम इतना कमाल का हो, लगे कि कुछ तो आज कायनात हमारे लिए स्पेशल करने वाली है, उस वक्त आप जो हैं अपने डाइट को सरेंडर कर वो गर्मा गर्म पकौड़े एंड चाय की प्याली में खुद को ना डुबोएं तो फिर क्या ही करें. सच कह रही हूँ यार, मतलब इतने दिनों से मुझे एक ही बात सुनाई में आ रही है कि बारिश की बूंदे जो है वो रिमझिम गिरने वाली है. नहीं, यहाँ पे बूंदाबांदी हो तो भी हम उसे रिमझिम ही समझते हैं. एंड कुछ हो ना हो, नॉर्मल रोड्स में बाढ़ आए या ना आए, लेकिन हाँ सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम में जो रील्स की बाढ़ गिरा वो देखने में बड़ा मजा आता है. चलिए जी, इसी उम्मीद के साथ कि शायद आज कहीं पे किसी तरह की बूंदाबांदी हो जाए, मैं तो कहूंगी आज के दिन को सॉलिड एंजॉय करना है. और अगर बूंदाबांदी ना हो तो भी पकौड़ा एंड चाय जो है ना अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करना है. वेल, मौसम जो है बड़ा कमाल है. ग्रेजुअली ट्रांजिशन का फेज हमारी लाइफ में आ रहा है, यानी कि ठंड वाले अच्छे वाले दिन आने वाले. अरिजीत सिंह की आवाज में अगला गाना सुनते हैं. कुछ देर में होंगी और भी बातें. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: only on 89.6 Mirchi One. It's hot. Mirchi, fresh maal.
1: मोहब्बत के हर रंग का एहसास, ये प्रेम मोल लिया।

0: इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने, म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: श्रेया घोषाल निहाल तौरो की खूबसूरत सी आवाज, व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज। पर इस गाने को सुनने के बाद मैं सबसे ज्यादा अगर किसी बात के लिए एक्साइटेड हूँ तो बस यही कि राशि प्रोडक्शंस की फिल्म जो है एक बार जिंदगी में फिर से आ रही है।
2: मिर्ची अंशु।
1: अब राशि प्रोडक्शंस की बात करें, सूरज बरजात्या की बात ना करें, भाई साहब ये हो तो हो कैसे? सच कहूँ यार, मतलब फैमिली ओरिएंटेड फिल्म्स कैसे बनाई जाती हैं, लोगों का यकीन विश्वास शादी पर एक बार फिर से कैसे लाया जाता है, रिश्ते सही मायने में एग्जिस्ट करते हैं या आज की दुनिया में लोगों को कैसे सिखाया जाता है, कोई जाने या ना जाने, लेकिन एक बात जानती हूँ कि बॉलीवुड का एक ऐसा फिल्म मेकर जो इस कहानी को बहुत अच्छी तरह से बयां करना जानता है तो वो है सूरज बरजात्या। देखिए इन्होंने ना बहुत सारी

फिल्में डायरेक्ट की हैं ओवर द ईयर्स. अगर आप शुरुआती दौर से आज तक इनके फिल्मी करियर को देखने की कोशिश करें तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हर साल एक फिल्म आई है. भाई साहब चुनिंदा फिल्में आई हैं, लेकिन हर एक फिल्म ने ना कहीं हमारे दिल में एक अलग छाप 101% छोड़ी है. चलिए मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, इससे पहले कि मैं इनकी फिल्मों की दास्तां आप तक पहुँचाऊँ, आपके लिए सूरज बड़जात्या की कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा स्पेशल एंड खास रही, ये बात तो आप मुझे बताएंगे, लेकिन इसके साथ कोई एक आवाज़ है जो इस वक्त मैं आपके बीच पेश करूँगी, आप उसे सुनेंगे एंड मुझे ये बताएंगे कि ये कौन सी फिल्म है सूरज बड़जात्या की जिस फिल्म में आपने ये कॉन्वर्सेशन सुना एंड बहुत क्यूट बहुत खूबसूरत तरह से सुना. यू हैव टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द मूवी. 5000-1896 वी विल गेट कनेक्टेड देयर. Instagram Mirchi 1 Kataria Mirchi Anshu, and here we go.

0: बर्फ का पानी नहीं पीना चाहिए।
1: हाय, पानी का पर्यायवाची जल होता है, इस फिल्म ने मुझे सिखाया था। एंड जब सर्दी हो तो बर्फ का पानी नहीं पीना चाहिए, ये बात भी मुझे इस फिल्म ने सिखाई है। 5000 1896, यू हैव टू नेम द फिल्म। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Fefermirci.
1: Escabana, escabana, sacabana.
2: Rabana.
1: Burga, burga. La virtua la burga.
2: Mirci, burga.
3: हेलो
4: हेलो मुकेश जी.
3: कौन
4: मुकेश जी? मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ राणा मोटर से. आपने जो 1000 दी थी ना उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली. थोड़ा
3: नहीं हो पाया भाई.
4: हाँ वो नहीं हो पाया सर.
3: हाँ नहीं हो पाया
4: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की. सर वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी.
3: नहीं क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज गए तुम्हें जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया, क्या मजाक ही क्या है ये?
4: नहीं मुकेश जी मैं समझ रहा हूँ वो एक
3: क्या समझ रहे हो भाई.
4: नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं. अच्छा मुकेश जी आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे. सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा.
3: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
4: सर? वो
3: ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया. मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया.
4: नहीं सर
3: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे.
4: नहीं सर कुछ हो नहीं पाया.
3: क्यों नहीं हो पाया
4: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
3: है
4: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी?
3: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
4: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ. मतलब हम
3: क्या करा दू
4: सर? मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
3: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
4: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे आप? गुस्सा तो मत करिए कम से कम.
3: क्या गुस्सा ना करूं, नई गाड़ी थी हमारी.
4: नहीं सर आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है. हमने भी तो ग्रीस व्रीस लगाया.
3: उसमें
4: ग्रीस ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है.
3: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगाया. आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में.
4: अच्छा
3: मुझे चाहिए अपनी वापस.
4: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
3: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की.
4: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें. अच्छा सर ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा.
5: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा.
3: तो जान निकाल दी हमारी.
5: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे. मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए.
3: कुकड़ू कू
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट
7: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ. डिस्कवर करो वर्सेटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस. सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं.
8: GWM के मिर्ची रिचार्ज में आइडियल इंडियन स्कूल के बच्चों ने की ढेर सारी मस्ती एंड फन. लेट्स हियर इट फ्रॉम देम.
9: 89.6 मिर्ची वन से मैं हूँ आरजे मस्मोला गौरव और मैं आया हूँ आज आइडियल इंडियन स्कूल में और मेरे साथ ढेर सारे बच्चे हैं. यू गाइस एंजॉय इट.
10: It was great fun. Thank you, Mirchi. Thank you, GWM.
11: Thank you, Mirchi, for the GWM recharge. It was really fun, especially the magic show.
12: Anshu, Gaurav, Afin, thank you very much.
13: Shopping karo Lulu mein. Aur bill ho sakta hai bilkul free. Ji haan, Lulu Hypermarket lekar aaya hai Lulu 2026 free trolleys. Win one of 2026 free trolleys. Aur jeetne ke liye bas follow karo 3 simple steps. Step 1. Shop. Lulu Hypermarket ke kisi bhi branch ke सुपरमार्केट सेक्शन में जाओ और शॉपिंग करो. स्टेप 2. स्टे ट्यून्ड. चेकआउट काउंटर पर ऑटोमेटेड सिस्टम रैंडमली सिलेक्ट करेगा लकी विनर. स्टेप 3. विन. अगर बिलिंग के टाइम आप सिलेक्ट हो गए तो आपका पूरा शॉपिंग बिल फ्री. तो देर किस बात की, शॉपिंग करो लूलू में. लूलू हाइपरमार्केट. शॉप करो, चांस पाओ और ट्रॉली भर शॉपिंग फ्री में ले जाओ. लूलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.
14: खट खट.
15: हू देयर?
14: बनता.
15: बनता हूं.
14: अरे बनता तो बहुत हूं मैं अपने आप को.
15: Khat khat, who that?
6: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: Well, Roop Kumar Rathod ki khoobsurat si awaaz and what a lovely track it is from the film Rehna Hai Tere Dil Mein. Dekhiye, jab bhi hum RH Stadium ki baat karte hain na, to sabse pehle zehen mein agar koi aata hai to wo hai Mary. And saath kya khoobsurat lagi hain yaar Diya Mirza. Lekin is gaane mein agar aapko koi nazar aaye to wo hain Saif Ali Khan, jo equally stunning lage hain bhai. Kya handsome lage hain Saif. लेकिन यार एक बात सच कहूँ, अगर मैं खूबसूरती के पैमाने की बात करूँ, शादी पर यकीन की बात करूँ, ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने सारे नज़रिए सारे परसेप्शन को बदल कर रख दिया था. अब इसकी एक म्यूज़िक है एंड इसके पीछे एक छुपा छोटा सा डायलॉग है जो मैंने आपके बीच पेश किया था ना, आपको आइडेंटिफाई कर बस मुझे ये बताना था कि ये धुन यानी हल्की सी जो आवाज़ आई है ये आखिरकार किस फिल्म से. लेकिन हाँ, मैंने आपको ये हिंट ज़रूर दिया था कि भाई साहब अगर ये फिल्म किसी की है तो वो है सूरज बड़जात्या जी की. चलिए, फॉर द सेक ऑफ पीपल हू हैव जस्ट जॉइन, मैं जल्दी से वो आवाज़ फिर से सुनाती हूँ. अभी भी सुनते सुनते अगर पहचान लिया ना करेक्ट आंसर, एंड ये फिल्म अगर आपको उतनी ही पसंद है जितनी कि मुझे, तो करेक्ट आंसर आप भेजेंगे 5000186 पर. 5000186 एंड हियर वी गो.
1: शादी में अभी 4 महीने 2 हफ्ते और 2 दिन बाकी हैं, तब तक तुमसे ये भी नहीं कह सकता मोबाइल फोन रख लो, रोज बातें करेंगे, क्योंकि तुमको ये सही नहीं लगेगा. दिन भर नेट पर तुमसे चैट करना तो दूर रहा, इसलिए शरीफ लड़कों की तरह तुम्हें चिट्ठियां लिखूंगा और हाँ, मुनीम जी के उस काले फोन के ऊपर तुम्हें फोन करूंगा.
0: हाय हाय हाय, क्या बात है जी. लेकिन साथ में ये भी मैंने सीखा है इस फिल्म से कि पानी को जल कहा जाता है. जरा देखें लोगों का क्या कहना है कि ये फिल्म है तो कौन सी फिल्म है.
2: हाय अंजू, गुड आफ्टरनून, इट्स मी निशांत दिस साइड. ये जो आपने डायलॉग सुनाया ये विवाह मूवी का है. And the actress speaking is Amrita Rao. Thank you.
3: Hi Anshu, Sahil here again. I guess this movie is Vivaah, Shahid Kapoor. Beautiful song in it, Mujhe Haq Hai. I love that song. Mujhe Haq Hai. Thank you.
4: Hi Anshu, good afternoon. This is Abdullah here. And this movie is Vivaah.
5: And the movie name is Vivaah. I think this one of the good movie from Suraj Barjatia.
0: यार बिल्कुल, आप सबने जो पहचाना ये पूरी तरह से सही, जितने लोगों ने लिख कर भी जवाब दिया वो पूरी तरह से करेक्ट, तो सबसे पहले आप सबके लिए तालियां हो जाएं यार. क्या खूबसूरत एंड क्या प्यारी सी फिल्म यार, जो कि रिलीज हुई साल 2006 में, आज से ठीक 20 साल पहले. यार आजकल जब हम प्यार की बात करते हैं, आजकल जब हम शादी की बात करते हैं, यू नो, हमारे दिमाग में एक बहुत अलग परसेप्शन होता है. लेकिन सच कहूँ, सूरज बड़जात्या ने हमें विवाह के जरिए सिखाया था, अमृता राव और शाहिद कपूर के जरिए सिखाया था, यार शादी जो है ना सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं, ये कहीं ना कहीं दो परिवारों के जुड़ने की बात है. शादी का मतलब बस ये नहीं कि हम घूमें फिरें, लाइफ को एंजॉय करें. शादी का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आप एक दूसरे को सरप्राइजेस देकर उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जब जब एक या दूसरे को जिंदगी सरप्राइज देना, तो आप जो हैं उनके साथ डटे रहें, खड़े रहें, दिल से दिल मिलाकर आप बात कर सकें. एंड सबसे बड़ी बात, शादी का मतलब बस ये नहीं कि जो बातें कहीं जाए वो आप समझ पाएं, शादी का मतलब शायद ये भी है कि बिना कुछ कहे इंसान जो है ना आपकी आंखों को पढ़ सके, आपके दिल का हाल जो है वो समझ सके. एंड सबसे बड़ी बात, एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे एक अच्छे खासे इंसान को लोग छोड़ दें, अगर आप दिल से किसी को अपनाना चाहते हैं, तो शादी का मतलब ये है कि ज़िंदगी चाहे उनका कितना भी टेस्ट या एग्ज़ाम क्यों ना ले, आप जो है ना उस एग्ज़ाम को पास करने में, उसमें आगे निकलने में हर पल सामने वाले शख्स के साथ खड़े रहें. चलिए जी, विवाह हैपन्स टू बी वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट मूवीज बाय सूरज बड़जात्या. एंड इसके अलावा एक विवाह ऐसा भी, ये फिल्म भी ऐसी थी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी. अभी फिलहाल विवाह फिल्म से उदित नारायण जी और श्रेया घोषाल जी की आवाज़ में अगला गाना आप तक पहुँचा दिया जाए. एन्जॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 पार्टनर्ड बाय पापा जॉन्स।
1: कतर, आर यू रेडी फॉर द न्यू पैन पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन्स? क्रिस्पी गार्लिक पार्मेजान क्रस्ट, इटालियन सीजनिंग, 6 चीज ब्लेंड एंड चीज एज टू एज, द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर एट पापा जॉन्स। ऑर्डर नाउ।
0: Powered by iPay Wallet.
2: अपनों को भेजिए पैसे with best rates. iPay Wallet के साथ no stress, सिर्फ trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
3: Let's do the iPay.
0: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
4: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super specialty clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
5: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
6: With Baladna milk, Laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
7: Baladna.
6: Taste that Qatar loves.
0: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.
8: How's the Josh?
9: Hi, sir!
8: How's the Josh?
9: Hi, sir!
10: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: ज्योतिका डांगरी की खूबसूरत सी आवाज यासर देसाई का साथ, एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस ट्रैक फ्रॉम द फिल्म शादी में जरूर आना। चलिए जी, ये गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन अब आप तक ये आपके काम की बात पहुंचा दी जाए।
1: मिर्ची अंशु
0: The whole thing is that रुपया सबसे बड़ा है भैया। हाँ जी, जब से हम कतर आए हैं किसी चीज़ का हम ध्यान रखें या ना रखें, लेकिन एक बात तो तय है, एक्सचेंज का रेट क्या चल रहा है दुनिया जमाने में, किसी को पता हो या ना पता हो, लेकिन आपको और हमको ज़रूर पता होता है। एंड खुशी तब ज़रूर होती है जब पता चले भाई साहब अच्छे खासे एक्सचेंज रेट चल रहे थे और हमने जो अपने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। जो लोग इंतज़ार करते रह जाते हैं और वो कम एक्सचेंज रेट पर बैठते हैं या भेजते हैं, तब भाई हमें और ज़्यादा खुशी होती है कि हमारा फ़ायदा हुआ, लेकिन औरों से ज़रा ज़्यादा हुआ। ज़रा देखें आज आई पे मनी में पैसा क्या बोलता है। वेल, अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो मोन्ट्रियल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीस 26.03, साथ ही पाकिस्तानी रुपीस 76.12, लंकन रुपीस 90.85, बांग्लादेशी टाका 33.85, एंड साथ ही नेपाली रुपीस 41.65। तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां, बाकी आपकी जिंदगी में खुशियां बरकरार रखने के लिए हम तो हैं ना जी। टिक के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, एंजॉय।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: देखिए कौशल, आपको देख के लगता नहीं है आप किसी चीज से डरते होंगे, डर लगता है आपको?
3: पानी के अलावा सांपों से बड़ा डर लगता है, डर से ज्यादा रिपल्स हो जाता हूँ, मुझे एकदम वही झंझरी सी मच जाती है एकदम शरीर में। क्या
2: जैसे झंझरी बोला ऐसे मुझे अचानक से वो सेंसिटिव टूथपेस्ट से झंझनाहट। यू आर लिसनिंग टू मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
5: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

जावेद अली एंड श्रेया घोषाल की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज द टाइटल ट्रैक ऑफ द फिल्म इश्क ज़ादे। वैसे इश्क और ज़ादे की बात करूं तो ये दोनों वर्ड्स जो है ना, इनका कॉम्बिनेशन जहाँ पे तगड़ा है, इनके इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट मायने भी बड़े कमाल हैं यार। मिर्ची अंशु वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। यार अगर इश्क की बात करूँ, बहुत ज़्यादा होने की बात करूँ, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे डिफरेंट फीलिंग्स को लेकर आता है। कभी कभी कहते हैं कि जब प्यार बहुत ज़्यादा हो किसी से तो वो कहीं ना कहीं ऑब्सेशन बन जाता है, अगर कम हो किसी से तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये ना फिक्री तो नहीं है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाते हुए अपने रिश्ते को आगे बढ़ा पाना, भाई साहब ये जो है ना ज़िंदगी में बेहद ज़रूरी होती है। लेकिन पता है, इन सब के प्यारे, इन सब से हटकर अगर मैं एक बात कहने की कोशिश करूं जो बचपन के दिनों से मुझे अपने घर पे सिखाई गई है प्यार को लेकर, तो वो ये बात थी कि भाई आप दुनिया में लोगों से, औरों से प्यार तभी कर पाएंगे जब सबसे पहले आपको ये पता है कि आप खुद से कितना प्यार करते हैं। जब तक हमें कहीं ना कहीं अपने अंदर कमी महसूस होती है ना, हम अपने वर्थ को नहीं समझ पाते हैं ना, तो वो लव की फीलिंग है ना, सेल्फ लव की, आती ही नहीं है। तो जब इंसान के अंदर वो सेल्फ लव नहीं है, वो इनसिक्योरिटी है, तो वो कैसे दुनिया में उस अच्छाई को, उस प्यार को बिखेरे। तो प्यार करें सबसे, फिक्र करें सबकी, लेकिन सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है वो खुद से करें। चलिए इसी थॉट के साथ आज मैं आपसे कहती हूँ अलविदा। मुलाकात होगी कल सारी बातों के साथ, इंटरेस्टिंग खबरों के साथ, वीकेंड मूड के साथ। जाने से पहले कि अगला पावर पैक गाना हो जाए, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: नए जमाने के सीरियल्स हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून इन हो आप एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माइक्रो ड्रामास बाबू मोशाय, जो आज के डेट में एक नया वेव लेकर आ गए हैं इंटरनेट पे। वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हो लाइक डॉली सिंह, जिन्होंने काफी टाइम पहले से इन माइक्रो ड्रामास की शुरुआत की अपने पेज पे, या फिर रिसेंटली कुशा कपिला लेकर आए शीबा चड्ढा के साथ लिखे जो खत तुझे। सो या इन अ वे माइक्रो ड्रामास जो है वो एक साथ फेमिलियर फेसेस को लेकर आ रहे हैं हु बिलोंग टू फिल्म फ्रेटर्निटी, टेलीविजन एंड क्रिएटर्स इकोसिस्टम। एंड दिस डेफिनेटली इज गोइंग टू बी अ ट्रीट, क्योंकि भाई हर तरफ का टैलेंट जब एक साथ मिल जाए तो क्या ही कमाल होगा, वो तो हम देखते ही आ रहे हैं। और अब जब माइक्रो ड्रामास की बात कर ही रही हूँ तो आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे जो फेवरेट टीवी सीरियल्स हुआ करते थे ना, वो भी अब 90 सेकंड एपिसोड्स के रूप में देखने को मिल सकते हैं। यस, सीरियल्स लाइक एजेंट राघव, फियर फाइल्स, जय संतोषी माँ, ये सब अडेप्ट हो रहे हैं फॉर वर्टिकल वीडियो जनरेशन बाय रीपैकेजिंग, री एडिटिंग एंड री इंटरप्रेटिंग फेमिलियर स्टोरीज इनटू शॉर्टर मोबाइल फर्स्ट एपिसोड्स, जो डिजाइन होंगे हुक्स, रैपिड ट्विस्ट्स और क्लिफ हैंगर्स के अराउंड। और इससे मेरे दिल का एक हिस्सा काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि बीइंग अ क्रिएटर मुझे ये फील होता है कि यार इतने बड़े लेवल पे ये सारे सीरियल्स बने थे लेकिन वो आज के डेट में आर्काइवल लाइब्रेरीज में यूं ही सड़ रहे थे। बट थैंकफुली किसी के दिमाग में ये आया कि भाई उन सीरियल्स को वापस से रिजुविनेट किया जाए। वैसे फिलहाल आप अगर कोई अच्छा सा माइक्रो ड्रामा फॉलो कर रहे हैं तो उसका सजेशन मुझे जरूर देना। मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
3: मीठी मिर्ची प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: हेलो
1: हेलो, ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब?
0: किसके यहाँ से?
1: स्वर्गीय अनिल चौहान।
0: मतलब किसके यहाँ बात फोन मिलाया आपने?
1: स्वर्गीय अनिल के यहाँ फोन मिलाया भाई साहब। मैं बोल रहा हूँ
0: अनिल ही बोल रहा हूँ, स्वर्गीय नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ।
1: सर, स्वर्गीय अनिल चौहान उनका पूरा नाम है। सर, मैं से बोल रहा हूँ, पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से। तो ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से कोई हो तो उनसे बात करा दीजिए।
0: दिमाग खराब है, अबे मैं खुद बोल रहा हूँ, तू सोच कम से कम।
1: सर, आप ये बेवकूफी की बात ना करें, आप एक तो जुबान संभाल की बात करें। मैं पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, आप कह रहे हैं आप जिंदा हैं, यहाँ पोस्टमार्टम कर रखा है हमने, आपकी रिपोर्ट आ गई है। सर, आके ले जाइए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट।
0: स्वर्गीय नहीं, तो अनिल चौहान से ही बात कर रहा है।
1: स्वर्गीय अनिल चौहान, यार आप जो लक्ष्मी नगर में रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ।
0: खराब हो गया आपका कि स्वर्गीय अनिल चौहान, मैं जिंदा हूँ भाई, बैठ रहा है घर परिवार वाले में, तेरे कोई पागल तो नहीं हो गया?
1: कौन पागल हो गया आपकी पोस्टमार्टम? मेरी बात सुन लीजिए आप।
0: नहीं,
1: मैंने मारा पोस्टमार्टम हमने किया, स्वर्गीय अनिल चौहान से बात करनी है, उनसे बात कराई। बीच में आप कैसे आ गए यार, कमाल कर दिया आपने। दिमाग खराब मेरा नहीं हुआ, आपको यकीन नहीं है तो दोबारा आके पोस्टमार्टम करा लो, एक ही रिपोर्ट है दोनों की।
0: डॉक्टर बोल रहा
1: हूँ, मैं डॉक्टर विजय बोल रहा हूँ यार, मैंने खुद पोस्टमार्टम किया उनका।
0: केस करूंगा,
1: केस हम क्या करेंगे, केस तो मैं उन पे करूंगा, स्वर्गीय अनिल चौहान पे, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे लिखा हुआ आप बाप बनने वाले थे, वो बाप बनने वाले।
0: परिवार वाले आदमी से भी बात करता है, कौन है तेरी
1: बेवकूफी की बात मत करिए आप। आइए यहाँ पे पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में, दिखाता हूँ आपकी लाश, आपकी बॉडी दिखाता हूँ यहाँ पे आके। पोस्टमार्टम तो करके छोड़ूंगा मैं
0: जी।
1: स्वर्गीय अनिल चौहान जी के यहाँ से कोई बात कर सकते हैं मेरे से? मेरी बात सुनिए। आप फोन मत काटिएगा, बड़ा मुश्किल से मिलता है। अनिल चौहान जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बनाया है, छोटा सा मजाक किया है, आपकी उम्र बहुत लंबी है, आप टेंशन ना लें।
0: अरे किसी बहुत मार खाओगे आप, सही बता रहे हैं। क्या
1: सर, मैं पिटने को तैयार हूँ, लेकिन आपकी हंसी सुन के मुझे मजा आता है, अब मेरे साथ आप प्यार से कह दीजिए।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड ज्वेलरी, सीरियसली माही?
4: यस बेबो,
3: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ।
4: यस yes.
3: कैच क्या है?
4: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ। डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स, और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो।
3: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच।
4: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो। दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स।
5: Who that?
6: जाहिर।
5: जाहिर? जाहिर हूँ।
6: जाहिर सी बात है, मैं हूँ और कोई नहीं।
5: खटखट, Who that?
2: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। सो 2018 में रिलीज हुई फिल्म तुम बैड लवर्स आपके लिए नया अपडेट है। बेसिकली इस फिल्म की 8th एनिवर्सरी पे इसका जो सेकंड पार्ट आने वाला है ना, और उसमें जो नई एडिशन हुई है दैट इज आलिया भट्ट, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे एक स्टोरी डाली जिसमें वो इसी फिल्म से रिलेटेड एक मास्क लगा के नजर आई है, जिसके बाद से एक बार फिर तुम बैड 2 इज मेकिंग अ लॉट ऑफ बज आउट देयर। कसम से एंटिसिपेशन इज रियली हाई फॉर द मूवी। सो कॉफी विद करण सीजन 9 की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके फर्स्ट एपिसोड में इंडस्ट्री के अल्टीमेट गेस्ट हैं, एंड दैट इज नॉन अदर देन हमारे भाई जान बोले तो सलमान खान। द टीजर ऑफ दिस फर्स्ट एपिसोड इज ऑलरेडी अनाउंस्ड, जिसके बाद से द फैंस जस्ट कांट कीप काम फॉर द 14th ऑफ अक्टूबर, जिस दिन से ये शो स्ट्रीम होना शुरू होगा। सूर्या अंत से आरंभ तक, मैं बात कर रही हूँ एम पद्म कुमार डायरेक्टोरियल अपकमिंग फिल्म विच इज गोइंग टू बी अ क्राइम थ्रिलर की, जिसका फर्स्ट मोशन पोस्टर इज आउट, एंड माइंड यू इस मूवी में सनी देओल लीड रोल में नजर आने वाले हैं। उनके अलावा फिल्म में रवि किशन और प्रज्ञा जायसवाल भी होंगे, एंड द मूवी इज सेट टू रिलीज ऑन द 20th ऑफ नवंबर, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। वेल, अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही, बाकी की फिल्मी गपशप के लिए स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। मैं हूँ आपके साथ श्रुति, इट्स ऑल।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अरे मैं तो मिर्ची फिल्म ची गेम खेलने की बात कर रही हूँ यार। आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर कहाँ ही दौड़े, लगाम लगाइए। बेसिकली द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे अपना नंबर भेजना होता है, फिर मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत करती हूँ। और आज सबसे पहले हमारे साथ बैंगलोर से टेलीफोन लाइन पे जुड़ी है मयूरी जी। सो आर यू रेडी? ओके जी। रैप कल्चर पे बनी बॉलीवुड की पहली फिल्म कौन सी है?
3: गली बॉय।
0: बहुत बढ़िया। गली बॉय में अपने बॉयफ्रेंड से घुलू घुलू करने वाली को कौन धोपतूंगी है?
3: आलिया भट्ट।
0: आलिया भट्ट की फिल्म जिसमें उनको इंसोम्निया होता है?
3: आलिया भट्ट की फिल्म शानदार, आई थिंक।
0: बहुत बढ़िया। शानदार में वेडिंग प्लानर कौन है?
3: शाहिद कपूर।
0: शाहिद कपूर किडनैप्ड बच्चे को किस फिल्म में उसके घर पहुँचाने की कोशिश करते हैं?
3: चाइना टाउन
0: में शाहिद की इस काम में मदद कौन करता है?
3: करीना कपूर।
0: करीना कपूर की फिल्म जिसमें वो पंछी नदियां पवन के झोंके की बात करते हैं?
3: रेफ्यूजी
0: के मेल लीड कौन है?
3: अभिषेक बच्चन।
0: अभिषेक बच्चन की फिल्म जिसमें वो डबल रोल का नाटक करते हैं?
3: बोल बच्चन।
0: हाँ जी, बोल बच्चन में झूठ किसको बर्दाश्त नहीं होता?
3: अजय देवगन
0: किस फिल्म में एक केबल ऑपरेटर है?
3: दृश्यम।
0: बहुत बढ़िया, मुझे लगा था यहाँ अटकोगे आप।
3: टू मच।
0: दृश्यम में आईपीएस ऑफिसर कौन है?
3: तबू
0: को 64 साल के शेफ से किस फिल्म में प्यार होता है?
3: चीनी कम
0: में वो शेफ कौन है?
3: अमिताभ बच्चन
0: की फिल्म जिसमें वो कहते हैं कह दिया, बस कह दिया।
3: केथरी जी कभी खुशी कभी गम।
0: केथरी जी में अपने जूते के लेसेस कौन नहीं बांध पाता?
3: ऋतिक रोशन
0: ने किस फिल्म में एक इल्यूजनिस्ट और मैजिशियन का रोल प्ले किया है?
3: गुजारिश
0: में उनकी नर्स कौन है?
3: ऐश्वर्या राय
0: किस फिल्म में एक स्मॉल टाउन सिंगर होती है जो ओवरनाइट सेंसेशन बन जाती है?
3: फन्ने खान
0: उसमें वो स्मॉल टाउन सिंगर नहीं होती है, शी इज लाइक अ पॉप सेंसेशन इन दैट मूवी, राइट?
3: आई थिंक आई डोंट नो
0: बट आई डेफिनेटली नो दैट यू आर आज की हमारी पहली
1: मिर्ची फिल्म ची।
0: तो भाई अगर इसके आगे का गेम आप कंटिन्यू करना चाहते हैं देन यू ऑलरेडी नो द ड्रिल। मिर्ची श्रुति के इंस्टा पे अपना नंबर डीएम कीजिए। रेस्ट आई विल टेक केयर ऑफ। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मैं तो मिर्ची फिल्म ची गेम की बात कर रही हूँ, बाहुमोशाय, जिसकी शुरुआत आज मेरे साथ की बैंगलोर से मयूरी जी ने। और आगे का गेम कंटिन्यू करने के लिए, बिकॉज शी गॉट स्टक एट अ पॉइंट, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे जुड़ी हैं सूरत से निशा जी। सो आर यू रेडी टू कंटिन्यू द गेम मैम? ऑल द बेस्ट देन। माई क्वेश्चन वॉज, ऐश्वर्या राय किस फिल्म में एक स्मॉल टाउन सिंगर होती है जो ओवरनाइट सेंसेशन बन जाती है?
3: ताल।
0: ताल में मानसी से किसको प्यार होता है?
3: अक्षय खन्ना।
0: अक्षय खन्ना किस फिल्म में एक एरोगेंट एक्टर है जिसको ऑस्कर जीतने से ऑब्सेशन है?
3: तीस मार खान।
0: सो तीस मार खान में वॉनबी एक्ट्रेस कौन है?
3: कैटरीना कैफ।
0: वेरी गुड। कैटरीना कैफ डाइविंग इंस्ट्रक्टर किस फिल्म में है?
3: जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।
0: ओके, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में ऋतिक का फोन कार से बाहर कौन फेंकता है?
3: फरहान अख्तर।
0: वेरी गुड। फरहान अख्तर किस फिल्म में खुद को ही कॉल करते हैं?
3: विद दीपिका पादुकोण।
0: यस,
3: कार्तिक कॉलिंग कार्तिक।
0: बहुत बढ़िया, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक में उनको किससे प्यार होता है?
3: दीपिका पादुकोण।
0: दीपिका पादुकोण किस फिल्म में साउथ इंडियन डॉन की बेटी है जो अपनी शादी से भागती है?
3: चेन्नई एक्सप्रेस।
0: और आपने भी एकदम एक्सप्रेस मोड में ये गेम कम्प्लीट किया है। और इसी के साथ आप बनी है हमारी आज की दूसरी
1: मिर्ची फिल्म जी।
3: थैंक यू सो मच श्रुति, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू।
0: सेम हियर।
3: आफ्टर अ लॉन्ग टाइम नो द बॉलीवुड जस्ट गॉट यू नो इग्नाइटेड इन मी। आई एम फीलिंग सो गुड आंसरिंग दीज क्वेश्चंस
0: एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू गॉट दैट फीलिंग, क्योंकि यही है मोटिव मेरा कि हर इंसान के अंदर के फिल्मची को जगाना है। तो बाबू मोशाय, अगर फिलहाल आपके फिल्मची कीड़े को फोमो हो रहा है, देन वरी नॉट, ये गेम कल फिर हाजिर होगा राइट हियर ऑन मिर्ची। मैं हूँ आपके साथ श्रुति, इट्स ऑल।
1: मीठी मिर्ची प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज। हम

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: सो अली खान, हमने सुना है कि सैफ एंड कुणाल बोथ आर ग्रेट कुक्स, आप क्या बना सकते हो?
3: थियोरी में तो मैं भी दाल चावल बना सकती हूँ, थियोरी में। कभी मतलब वो अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिला है, लाइक इट हैजंट गॉट दैट बैड कि मुझे किचन में जाने की जरूरत हुई है अब तक। कुणाल कुक्स वेरी वेल एंड भाई कैन मेक वेरी गुड स्क्रैम्बल्ड एग्स एंड पास्ता।
2: दैट वाज सोहा अली खान ऑन बॉलीवुड बोल्डाल। यू आर लिसनिंग टू मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
5: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
6: आएंगे दीदी।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

89.6 Mirchi 1. It's hot.

0: Magkapik.
1: Kumansan? Mom kebetchu.
0: Jitiro. Hulo palo.

0: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: कभी एक वैगिंग टेल तो कभी दो नम आंखें, बस यही सब कुछ बयां कर देती हैं। एंड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने इस बॉन्ड को काफी अलग अलग तरीके से टाइम एंड अगेन दिखाया है। कभी तेरी मेहरबानियां का मोती याद आ जाता है, कभी हम आपके हैं कौन का टफी, और कभी चिल्लर पार्टी का भीड़ू। और अचानक से इस रिलेशनशिप की बात इसलिए करने का मन हो रहा है बिकॉज मैंने देखी ओ माई डॉग एंड ओ माई गॉड वॉट अ मूवी इट इज। वेल, इसकी भी बात करूंगी, लेकिन आज पांच का पंच की लिस्ट की शुरुआत करते हैं 1985 में रिलीज हुई फिल्म तेरी मेहरबानियां से, जिसे डायरेक्ट किया विजय रेड्डी ने। और इस मूवी में जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लो, अमरीश पुरी, असरानी लीड रोल्स में थे एंड मोती का किरदार निभाया था ब्राउनी नाम के कुत्ते ने। सो इस फिल्म में जैकी श्रॉफ का कैरेक्टर राम एक पपी को एक्सीडेंट में टक्कर मार देता है, लेकिन उसे वहीं छोड़ देने के बजाय उसे अपने घर लाकर उसकी देखभाल करता है और फिर वही पपी बड़ा होकर मोती बनता है, राम का सबसे प्यारा दोस्त, उसका साथी और उसका सबसे वफादार कंपेनियन। फिर कहानी में अचानक एक ट्विस्ट आता है और उस गाँव का विलन ठाकुर राम को मार डालता है, और फिर मोती की लॉयल्टी एक नया डायरेक्शन लेती है जहां वो अपने मालिक के साथ हुई इस नाइंसाफी का बदला लेता है और सच सामने लेकर आता है। और अभी भी जब मैं इस फिल्म के बारे में बात कर रही हूँ, सारे विजुअल्स मेरे आंखों के सामने हैं एंड आई एम रियली ओवरवेल्म्ड। वेल, बीइंग एन एनिमल लवर, अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी देन प्लीज देखो यार, आई एम श्योर यू लव इट। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
2: Meethi Mirchi, presented by Absolute Barbecues. From savory to sweet, experience the ultimate flavors at Absolute Barbecues.

0: Energy. Escabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burca, burca. Na vida la burca. Energy, burca.
1: हेलो
2: ये कमलेश जी।
1: हाँ जी कौन?
2: कमलेश जी गोपाल बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी से। ये आपके पास भी पत्र आया होगा, हमारी पत्नी ने लाजवंती ने वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
1: कौन सा पैसा चाहिए तुम्हें?
2: नहीं देखिए एक तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो ये हमारी जो पत्नी है लाजवंती, उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का खिलाफ उसकी बाहर की दीवार देखो उसमें पुताई होनी है।
1: देखिए
2: मैंने हमेशा कब लिया आपसे, हमने कब लिए आपसे?
1: अरे तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए उसी में से करो आप जो कर रहे हैं।
2: भाई साहब एक बात बताओ, आपके पास 750 रुपए क्या बहुत बड़ी कीमत है जो आप देने को मना कर रहे हो?
1: 750 रुपए मैं थोड़ी ना हर चीज के पैसे देता रहूंगा तुम्हें, बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे, कोई त्योहार नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो, चन्ना मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
2: आप नहीं दे रहे फिर?
1: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे।
2: ना दे रहे लाजवंती ना मान रहे।
3: I want to talk to him. Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time. Just 750 bucks, sir. That's all we're asking for. Because we feel we're all family. And my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you
1: with us? Yes, madam, I'm there. I understand, मैं समझ रहा हूँ आपको. What is the amount?
3: Sir, it's 750 rupees. It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know you, how fond you are of trips, sir. So I am sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead with this?
1: No, not an issue.
2: 750 only? Yes, sir, absolutely. No, 750 na bhai. Tere 1500 lagenge. Hamari baat samajh mein na aa rahi. Lajwanti ki ekdam ghej mein pad gayi.
0: Mirchi Murga, Naveed ke saath. Only on Mirchi. It's hot. Yep, hot.
4: Our business is our business. None of your business.
5: पर दीदी आर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6
6: 89.6 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के चार पैरों वाले हीरोज की बात।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून इन हो आप। और यार हिंदी सिनेमा में हीरोज तो बहुत देखे हैं हमने, जो विलन से लड़ते हैं, अपने प्यार के लिए दुनिया से टकराते हैं और जरूरत पड़ने पर जान की बाजी भी लगा देते हैं। लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी रहे हैं जिनके पास ना डायलॉग्स थे ना ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, बस चार पैर, एक वफादार दिल और अपने इंसान के लिए बे इंतहा प्यार। और आज पांच कपंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी ही पांच फिल्मों की बात कर रही हूँ जिसमें सबसे पहले वी टॉक अबाउट द मूवी तेरी मेहरबानियां। अब नंबर दो पे बात करते हैं फिल्म हम आपके हैं कौन के बारे में, जो 1994 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय सूरज बड़जात्या। और मूवी में सलमान खान, माधुरी दीक्षित, मुनीश बैल, रेणुका शाहने जैसे अल्टीमेट एक्टर्स थे। फिल्म का बैकड्रॉप है एक कलरफुल क्लोज नेट फैमिली सेटिंग फिल्ड विद वेडिंग्स, रिचुअल्स, म्यूजिक, सेलिब्रेशन एंड रिलेशनशिप्स। और उसमें है हमारा क्यूट सा टफी, जो इस आइकॉनिक फैमिली एंटरटेनर में मात्र घर का पेट नहीं है, इनफैक्ट वो तो सेलिब्रेशंस का हिस्सा होने के साथ साथ प्रेम और निशा की लव स्टोरी में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहां फैमिली सर्कमस्टेंसेस की वजह से प्रेम और निशा के रिश्ते पर एक इमोशनल क्राइसिस आता है, तब टफी एक चिट्ठी ऐसी जगह पहुंचाता है जो उस कहानी का रुख ही बदल देता है। मूविंग ऑन इन द लिस्ट, नंबर तीन पे बात करते हैं फिल्म चिल्लर पार्टी के बारे में, जो रिलीज हुई थी 2011 में, डायरेक्टेड बाय नितेश तिवारी एंड विकास बैल। सो जहां तेरी मेहरबानियां एक डॉग के लॉयल्टी की कहानी थी, हम आपके हैं कौन ने पेट को फैमिली का हिस्सा बनाया, तो चिल्लर पार्टी ने एक कदम आगे बढ़कर सवाल पूछा कि क्या एक स्ट्रे डॉग को प्यार और सुरक्षा पाने का हक नहीं है। कहानी मुंबई के एक सोसाइटी में रहने वाले बच्चों के अराउंड घूमती है, जहां फटका नाम का एक होमलेस लड़का अपने डॉग भीड़ू के साथ सोसाइटी में आता है। तब बच्चे शुरू में उन दोनों को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे फटका उनका दोस्त बन जाता है और भीड़ू उनके जिंदगी का हिस्सा। और फिर आता है एक मेजर ट्विस्ट, एक पॉलिटिशियन स्ट्रे डॉग्स के खिलाफ एक्शन लेने की बात करता है और भीड़ू को सोसाइटी से निकाले जाने का खतरा पैदा हो जाता है। यहीं से बच्चों की एक फनी, इमोशनल और करेजियस फाइट की शुरुआत होती है अपने दोस्त भीड़ू को बचाने के लिए। वेल, मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ और मेरी इस लिस्ट में अभी और दो ऐसी ही फिल्मों की बातें बाकी हैं, बट ऑल ऑफ दैट इन अ वाइल। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: पेट पेरेंट्स के लिए एक सवाल, जब आपका मूड ऑफ होता है तो क्या आपका पेट बिना पूछे आपके पास आ जाता है?
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: बस यही तो मैजिक है ह्यूमन एनिमल बॉन्ड का। इनफैक्ट बॉलीवुड ने भी कभी मोती की लॉयल्टी, कभी टफी की स्मार्टनेस, तो कभी भीड़ों के लिए बच्चों की फाइट के थ्रू इस प्यार वाले लैंग्वेज को अलग अलग तरीके से दिखाया है। और आज मेरे पांच का पंच की लिस्ट में ऐसी ही फिल्मों की बातें हो रही हैं, जिसमें सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट तेरी मेहरबानियां, नंबर दो पे हम आपके हैं कौन, नंबर तीन पे चिल्लर पार्टी, अब बारी है टू टॉक अबाउट दिल दोस्ती और डॉग्स, जो रिलीज हुई थी 2025 में, डायरेक्टेड बाय विरल शाह, और मूवी में नीना गुप्ता के साथ शरद केलकर लीड रोल में थे। सो फिल्म का सेंट्रल आइडिया भी इसी कनेक्शन को सेलिब्रेट करता है कि एनिमल्स हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशी नहीं लाते, बल्कि कई बार हमें हील करने, ट्रस्ट दोबारा करने और रिलेशनशिप्स को नए नजरिए से देखने में भी मदद करते हैं। इन शॉर्ट, कभी हम उनका ख्याल रखते हैं और कभी वो हमें इमोशनली संभाल लेते हैं। एंड नाउ लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, ओ माई डॉग की बात करना चाहती हूँ। साल 2026 में ही रिलीज हुई थी ये फिल्म, जो फिलहाल OTT पे भी स्ट्रीम कर रही है। डायरेक्टेड बाय अमित राय, मूवी में पंकज त्रिपाठी, पवन मल्होत्रा और राजेश कुमार जैसे स्टार्स हैं। और यहाँ बैकड्रॉप है दो पैरेलल जर्नीज का, एक आसाम में और दूसरा बिहार में, मेरे शहर पटना में, जहाँ एक तरफ एक टीनेजर अपने किडनैप्ड कुत्ते को ढूंढता है तो वहीं एक कुत्ता अपने किडनैप्ड ओनर को ढूंढता है। सो अक्सर हम कहते हैं कि पेट्स हम पर डिपेंडेंट होते हैं, हम उन्हें खाना देते हैं, शेल्टर देते हैं, उनकी सेफ्टी का ख्याल रखते हैं, लेकिन जब वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें मिस करते हैं या हमें ढूंढने की कोशिश करते हैं, तब समझ आता है कि ये रिश्ता वन साइडेड बिल्कुल नहीं है। एंड ओ माई डॉग इसी म्यूचुअल लव एंड लॉयल्टी को हाईलाइट करती है। तो बताओ, इन पांचों मूवीज में से आपने कौन कौन सी देखी है? मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट करके ये बातें कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून।
1: फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड ज्वेलरी? सीरियसली माही?
2: यस बेबो।
1: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ?
2: यस।
1: कैच क्या है?
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ। डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो।
1: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच।
2: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो। दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स।
3: अबे कौन है?
4: उत्तपा।
3: उत्तपा कौन?
4: उत्तपा में दो डोसा और सांबर ऑर्डर किया था, आया क्या?
3: खट खट, हु दैट?
5: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट।

0: एक कहानी लेकिन भाषाएं अनेक।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची बेटी उन्होंने आप और एक बार को सोचिए, एक कहानी जो आपने बचपन में हिंदी में सुनी, वो कहानी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और दुनिया की दूसरी लैंग्वेजेस में और भी लोगों के दिलों तक पहुंचे तो कैसा होगा? Well, that's the power of cinema. और अब इसी पावर को एक ग्रैंड स्केल पर एक्सप्लोर करने जा रही है नमित मल्होत्रा की अपकमिंग प्रोडक्शन रामायण पार्ट वन, जिसमें रणबीर कपूर, साई पल्लवी, रवि दुबे, यश और सनी देओल जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। सो रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म को दुनिया भर में लगभग 40 लैंग्वेजेस में डब करके रिलीज किया जा रहा है। मतलब कहानी अपनी होगी लेकिन उसे समझने और महसूस करने की जुबान अलग अलग। द मूवी इज सेट टू रिलीज ऑन द 5th ऑफ नवंबर। लेकिन एक सवाल जो मेरे दिमाग में आया कि क्या इंडियन सिनेमा का ये मल्टीलिंगुअल मिशन नया है? मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि बिल्कुल नहीं यार। इसकी शुरुआत हुई थी 1948 में, जब डायरेक्टर एस एस वसन की तमिल फिल्म चंद्रलेखा को हिंदी ऑडियंस तक पहुंचाया गया। ये उन अर्ली लैंडमार्क एग्जांपल्स में से एक था जब फिल्म मेकर्स ने समझा कि एक रीजनल कहानी पूरे देश की कहानी बन सकती है। और शायद इसीलिए इंडियन सिनेमा का अगला बड़ा चैप्टर सिर्फ पैन इंडिया नहीं, पैन वर्ल्ड होने वाला है। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
1: Niti Mirchi, presented by Absolute Barbecues. From savory to sweet, experience the ultimate flavors at Absolute Barbecues.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: नेशनल अवार्ड विनर अजय देवगन, क्या आपको हमेशा से एक्टिंग करनी थी?
2: इट वॉज नेवर एक्टिंग, इट वॉज ऑलवेज आई यूज टू मेक माई ओन फिल्म्स. आई वॉज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, आई यूज टू एडिट, आई यूज टू डायरेक्ट, आई वॉज अ कैमरामैन, आई यूज टू डू एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर एक्टिंग.
1: व्हाट कैन आई से अजय देवगन, आई एम जस्ट ग्लैड कि फूल और कांटे हैपेंड. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
3: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
4: भट्ट,
5: भट्ट, अरे भट्ट हूँ.
4: भट भट भट भट भट भट भट, बाइक बहुत आवाज करती है.
5: खट खट, who that?
3: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: अपने हस्बैंड की वजह से रिजेक्ट की ऐश्वर्या ने ये फिल्म। मनवाला गेट। ओके, मेरी घटिया आवाज पे मत जाइएगा, गाने के लिए नहीं बनी है, बातें कर लेती हूँ, यही बहुत है। सो आई एम श्योर आपने अब तक गेस कर लिया होगा दैट आई एम गोना टॉक अबाउट द फिल्म हैप्पी न्यू ईयर, जो रिलीज हुई थी साल 2014 में, डायरेक्टेड बाय फारा खान। और इस फिल्म में शाहरुख खान के ऑपोजिट लिया जाने वाला था ऐश्वर्या राय बच्चन को। इनफैक्ट उनको ये रोल ऑफर भी कर दिया गया था। सो एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने रिवील किया कि आफ्टर हर प्रेगनेंसी ये मूवी उनको ऑफर की थी फारा खान ने, ऑपोजिट ऑफ शाहरुख खान, ऑल्दो उस फिल्म में उनके हस्बैंड अभिषेक बच्चन भी थे। सो दैट्स व्हेन एक्टर ऐश्वर्या राय टुक अ स्टेप बैक एंड वाइफ ऐश्वर्या राय केम ऑन द फोरफ्रंट, और उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ इस फिल्म में हूं तो मैं दूसरों को कोई और पर्सपेक्टिव डायनेमिक एक्सप्लोर करने का ऑप्शन नहीं दूंगी। सो इन अ वे आगे होने वाली कॉन्ट्रोवर्सीज को अवॉइड करने के लिए ऐश्वर्या राय टुक दिस स्टेप ऑफ नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ फिल्म हैप्पी न्यू ईयर। एंड कसम से जब से मुझे ये चीज पता चली है तब से आई एम जस्ट इमेजिनिंग ऐश्वर्या राय इन एवरी सिंगल सॉन्ग ऑफ दैट मूवी, वो मनवा लागे हो, वो लवली हो, मतलब क्या ही बवाल करती ना ये महिला। Forever an Ashwarya fan. मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, stay tuned, it's hot.
1: मीठी मिर्ची, presented by Absolute Barbecues. From savory to sweet, experience the ultimate flavors at Absolute Barbecues.

0: darling. Every breath you take, every move you make, I will be there with you. What would I do without you? I want to love you forever and ever.
1: Iskabana, uskabana, sakabana, burga, burga, nafis bala burga, milchi burga.
2: हेलो
3: हेलो मुकेश जी.
2: कौन
3: मुकेश जी? मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ, राणा मोटर से. आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था, वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली. थोड़ा
2: नहीं हो पाया भाई.
3: हाँ, वो नहीं हो पाया सर.
2: नहीं हो पाया
3: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की. सर वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी.
2: नहीं, क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज गए तुम्हें, जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया है. क्या मजाक ही क्या है ये?
3: नहीं मुकेश जी, मैं समझ रहा हूँ वो एक.
2: क्या समझ रहे हो भाई?
3: नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं. अच्छा मुकेश जी, आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे. सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा.
2: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
3: सर? वो
2: ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया. मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया.
3: नहीं सर,
2: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे.
3: नहीं सर, कुछ हो नहीं पाया.
2: क्यों नहीं हो पाया
3: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
2: है
3: सर, रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
2: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
3: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
2: क्या करा दूँ
3: सर? मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
2: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
3: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे, आप गुस्सा तो मत करिए कम से कम.
2: गुस्सा ना करूं, नई गाड़ी थी हमारी.
3: नहीं सर, आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है, हमने भी तो ग्रीस लगाया.
2: उसमें
3: ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है.
2: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगाया. आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में.
3: अच्छा सर,
2: मुझे चाहिए अपनी वापस.
3: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
2: जिम्मेदारी तुम्हारी FIR कराने की.
3: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें. अच्छा सर, ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा.
4: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा.
2: तो जान निकाल दी हमारी.
4: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे. मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: हाय, दिस इज अनुराधा पौडवाल.
7: कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला.
8: दिस इज विनोद राठौड़ एंड वी आर कमिंग टू परफॉर्म इन योर सिटी दोहा कतार.
7: भूल से पर्दा कीजिए.
9: Experience the magic of their voice on 30th October 2026 at Aspire Zone Ladies Sports Hall, Doha, Qatar, 6:30 p.m. onwards. In association with Indomie Noodles, Lulu Hypermarket, iPay and Green Printers, online ticketing partners, qtickets.com, Platinum List, Virgin Megastore and S-City. For more information, contact 6004369. An event by Rami Productions International.
10: जा सिमरन, जा जी रहे अपनी जिंदगी, जा बेटा जा.
11: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने.
12: हिट गाने
13: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
14: 89.6
5: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: no hard feelings, but I need to talk about them.
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं.
0: मिर्ची बेटी उन्नो आप, मैं हूँ आपके साथ श्रुति, और आज बात करना चाहती हूँ फास्टिंग के हिसाब से पाए जाने वाले दो कैटेगरीज ऑफ लोगों के बारे में, जिसमें फर्स्ट आर द पीपल जो अगर फास्ट पे होते हैं तो वो लेजिट फास्ट पे होते हैं, जिसमें होता है ना कि वो मान लो फलहारी कर रहे हैं तो सुबह मान लो एक बनाना शेक पी लिया, फिर मखाना और मूंगफली खा ली, फिर नथिंग, फिर शाम को उनकी जो मील होती है वो होगी. लेकिन जो दूसरी कैटेगरी के फास्ट करने वाले लोग हैं, इनके अंदर तो आंख खुलते ही एक्साइटमेंट भर जाती है. इनके दिन का टू डू लिस्ट बाद में फूडू लिस्ट पहले बन जाता है. नहा धो के पूजा पाठ करके चाय के साथ होगी शुरुआत, उसके बाद स्नैकिंग में ओहो हो हो हो, मूंगफली मखाना, साबुदाने के पापड़, साबुदाने की खिचड़ी, साबुदाने की टिक्की, फ्रूट चाट, जूसेस, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. और यहाँ पे इनका दिन खत्म नहीं होता ब्रो, शाम को वापस से तो भोग लगेगा ना. देखो पहले ही बोल रही हूँ नो हार्ड फीलिंग्स, बट मेरा बड़ा मन था इनके बारे में बात करने का यार. मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ. वैसे आपकी कैटेगरी कौन सी है दोनों में से? Do let me know about that. मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं. Till then, stay tuned. It's hot.

0: हमारे लिए बचपन में शाम का मतलब घर से बाहर निकलना होता था।
1: 90 ml With Shruti.
0: स्कूल से आने के बाद फटाफट अपना होमवर्क कंप्लीट करना और शाम के 5 बजते ही पूरा मोहल्ला अपने अपने घरों से बाहर निकल जाता था। किसी के हाथ में क्रिकेट बैट, कोई पिट्टो खेलने के लिए तैयार, कोई साइकिल चलाता था और कहीं से आवाज आ रही होती थी, ओए बॉल नाली में मत मारना। और बैकग्राउंड म्यूजिक कभी विविध भारती के गाने, कभी किसी घर से आती प्रेशर कुकर की सीटी, तो कभी मंदिर की घंटी। ना किसी को लोकेशन शेयर करनी पड़ती थी, ना व्हाट्सएप ग्रुप पे प्लान बनता था, बस घर के नीचे से आवाज आती थी, अरे बंटी नीचे आ जा, और पूरी गैंग हाजिर। फिर हमारे घर की बालकनी से मम्मी की वो आइकॉनिक आवाज, अरे बेटा अंधेरा हो गया है घर आ जाओ, और हमारा क्लासिक जवाब, हाँ मम्मी बस 5 मिनट। हाँ एंड वी वेरी वेल नो कि वो 5 मिनट कितना लंबा चलता था। और देखो आज हम बच्चों के प्ले डेट्स अरेंज करते हैं, जबकि हमारी पूरी सोशल लाइफ गली के उस मोड पर चलती थी। और शायद इसीलिए आज जब हम अपने पुराने मोहल्ले से गुजरते हैं तो सिर्फ गलियां याद नहीं आती, वो लोग याद आते हैं जिनके साथ हमने बिना किसी प्लान के अपना सबसे खूबसूरत बचपन जिया था। क्योंकि सच तो यही है, मोहल्ले की शाम ढल गई लेकिन उस शाम की यादें आज भी दिल में खेल रही हैं। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।

0: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 पार्टनर्ड बाय पापा जॉन्स।
1: कतर, आर यू रेडी फॉर द न्यू पैन पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन्स? क्रिस्पी गार्लिक पार्मेजान क्रस्ट, इटालियन सीजनिंग, 6 चीज ब्लेंड एंड चीज एज टू एज, द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर एट पापा जॉन्स। ऑर्डर नाउ।
0: Powered by iPay Wallet.
2: अपनों को भेजिए पैसे with best rates. iPay Wallet के साथ. No stress, self trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
3: Let's do the iPay.
4: In association with Dairy Queen. Beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
5: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super speciality clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
6: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
7: With Baladna milk, Laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
8: Baladna. Taste that Qatar loves.
9: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.
10: कौन है?
11: स्टेन।
10: स्टेन कौन?
11: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को, मैं नहीं देता पैसे, जाओ।
12: खट खट, who that?
13: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: Meethi Mirchi, presented by Absolute Barbecues. From savory to sweet, experience the ultimate flavors at Absolute Barbecues.
1: इस घर में टास्क से ज्यादा अब लोगों के असली कलर्स बाहर आ रहे हैं.
2: OTT and chill.
1: मिर्ची बेटी उन्नन हूँ आप, मैं हूँ आपके साथ श्रुति, और ऑफ कोर्स मैं बिग बॉस 20 के घर की बात कर रही हूँ, जहाँ अलग ही रंग रूप चल रहा है भाई. हर दूसरे दिन नया ही कुछ देखने को मिल जाता है. अब देखो, कनिका ने जिस तरीके से लव को लेकर स्टेटमेंट्स निकाले, भाई आप उसके दिमाग से लेकर उसकी शक्ल तक को बुरा बोल रहे हैं. एंड देन यू आर द पर्सन जिसको काजी का इनडायरेक्ट कॉमेंट पसंद नहीं आया था. मतलब आप करो तो रासलीला, बाकी करे तो कैरेक्टर ढीला. और दूसरी तरफ गुल्लू है, जिन्हें डबल स्टैंडर्ड्स का बादशाह कहना गलत नहीं होगा. कभी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से स्टैंड लेते हैं, तो कभी दूसरों के बिहेवियर पर सवाल उठाते हैं. उधर घर में कुछ लोगों की बातें रिपीट मोड पर चल रही हैं. ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट काजी तौकीर. सेल्फ ऑब्सेस्ड ये बंदा हर दूसरे इंसान से घर में सिर्फ अपनी ही बातें करता है, और वो भी रिपीट मोड पे करता है. एक कहानी को चार अलग तरीकों से सुनाता है. इनफैक्ट माही, जो इकलौती सपोर्ट थी उसके घर में, She is also sick and tired of it. तो भाई साहब ने घर से एक डमी बिल्ली उठा ली है और लगे पड़े हैं उसको अपनी कहानियां सुनाने में. एंड ऑनेस्टली हर दूसरी बात पे जनता जनता कैमरा कैमरा करने वाला इंसान ये नहीं समझ पा रहा कि इसकी चड्डी को नेशनल न्यूज बनता नहीं देखना सुनना चाह रहा कोई. एनीवे, आप बिग बॉस 20 में इस बार किसको सपोर्ट कर रहे हैं वो मुझे जरूर बताना, मिर्ची श्रुति के नाम से फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट करके. टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, जस्ट डोंट ट्रबल माता पिता, एंड भारत माता की जय.

0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: अनिल कपूर सर, आई एम श्योर आप ये सुन सुन के थक चुके हैं कि आप इतनी यंग कैसे दिखते हैं, बट आई रियली वुड लाइक टू नो आपको खाने में क्या पसंद है?
2: जैसे मैं क्या, मैं हर चीज खाता हूँ, बट आई लव ऑल काइंड्स ऑफ फूड. आई लव जापानीज फूड, चाइनीज फूड, इंडियन फूड, नॉर्थ इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड, और गुजराती फूड. सब आई लव थाई फूड, मैक्सिकन फूड. खाने में आई एम नॉट फसी अबाउट फूड. दिल से प्यार से अगर कोई बना के दे तो मुझे अच्छा लगता है.
1: आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स ऑल.
0: बॉलीवुड Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
3: Hi, this is Anuradha Podwal.
4: This is Vinod Rathod and we are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
5: Hi, I am Kajiva Rahman. We are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
6: Experience the magic of their voice on 30th October 2026 at Aspire Zone Ladies Sports Hall, Doha, Qatar, 6:30 PM onwards. In association with Indomie Noodles, Lulu Hypermarket, iPay and Green Printers, online ticketing partners, qtickets.com, Platinum List, Virgin Megastore and S-City. For more information, contact 6000-4369 and event by Rami Productions International.
7: शॉपिंग करो लूलू में और बिल हो सकता है बिल्कुल फ्री. जी हाँ, लूलू हाइपरमार्केट लेकर आया है लूलू 2026 फ्री ट्रॉलीज. विन वन ऑफ 2026 फ्री ट्रॉलीज और जीतने के लिए बस फॉलो करो थ्री सिंपल स्टेप्स. स्टेप वन, शॉप लूलू हाइपरमार्केट के किसी भी ब्रांच के सुपरमार्केट सेक्शन में जाओ और शॉपिंग करो. स्टेप टू, स्टे ट्यून्ड. चेकआउट काउंटर पर ऑटोमेटेड सिस्टम रैंडमली सिलेक्ट करेगा लकी विनर. स्टेप थ्री, विन. अगर बिलिंग के टाइम आप सिलेक्ट हो गए तो आपका पूरा शॉपिंग बिल फ्री. तो देर किस बात की, शॉपिंग करो लूलू में. लूलू हाइपरमार्केट, शॉप करो, चांस पाओ और ट्रॉली भर शॉपिंग फ्री में ले जाओ. लूलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.
8: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें.
9: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
10: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
11: कम है के?
12: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
13: 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.

0: मेरा भी रिश्ता पुराना है आपसे, अरे 5.5 साल से तो ज्यादा ही होने आ रहे।
1: मस्त मौला गौरव
0: 21 मार्च 2021 मेरी आवाज पहली बार आई थी आपके कानों में और आपने कहा था चलो इस बंदे को सुनेंगे अब शाम को शानदार बनाकर। एंड फिलहाल एक बार फिर से इतने सालों बाद भी मैं यही टिका हुआ हूँ, लेकिन आसमान के बादल टिक तो गए हैं पर बारिश की बूंदे हमारे दोहा वखरा ये सब इलाकों में तो नहीं पड़ रही है। लेकिन अगर बात करें तो यस, कतर के कुछ इलाकों में बारिश जरूर हुई है और उन इलाकों में कराना जो है वो बड़ा ही फेमस रीजन हो गया है। यस, अल कराना में इस बार मौसम की अच्छी बेहतरीन बारिश रिकॉर्ड की गई है। एंड सोशल मीडिया पर भी हमने देखा है किस तरह से एकदम साउथ वेस्ट ऑफ दोहा की साइड में 10.7 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ है। वेल, अल कराना में अच्छी बारिश हुई है लेकिन हम अभी भी बारिश की बूंदों को तरस रहे हैं, पर हमसे कहा गया है कि तैयार हो जाओ आने वाले टाइम में बारिश होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस उम्मीद से कि बारिश होगी, मौसम और बेहतरीन होगा, फिर हमारे लिए वीकेंड आउटिंग और अच्छी हो जाएगी। मस्त मौला गौरव आगे बढ़ता है और सूरज चाचू आपसे ये कहेंगे हमारे रेन का हक हमें दे दो, मिर्ची इट्स हॉट।

0: Pepe Mirci.
1: Iskabana, la puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vieva la burga.
2: Mirci, burga.
3: हेलो
4: आकाश
3: जी,
4: आकाश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपने मुर्गा बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था ना?
3: हाँ, बिल्कुल।
4: मुझे बताइए किसका मुर्गा बनाना है?
3: मेरी गर्लफ्रेंड है।
4: ओहो, यही मिली है आपको?
3: जी, बहुत पंगे लेती है।
4: अच्छा आकाश, ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है क्योंकि मुर्गा बनाने से पहले हम जो रिक्वेस्ट करते हैं मुर्गे की, उनसे एक फॉर्म फिल करा लेते हैं।
3: ठीक है,
4: मुझे अपना पूरा नाम बता दीजिए।
3: आकाश मल्होत्रा।
4: अच्छा आकाश, मैं थोड़ा सा इसको फॉर्म को पढ़ देता हूँ क्योंकि मुर्गा थोड़ा सा मुश्किल भी होता है बनाना, कभी गुस्सा आ जाता है लोगों को, यू नो। तो इसमें कुछ क्लॉज और रूल्स हैं, वो आप फॉलो करेंगे, इसको अग्री करेंगे तो ही हम मुर्गा बनाएंगे,
3: राइट?
4: चलिए। अच्छा, इसमें ये है, मैं इसमें आपका नाम लिख देता हूँ, मैं आपको पढ़ देता हूँ। मैं आकाश मल्होत्रा अपने होशो आवाज में अपनी गर्लफ्रेंड
3: पूजा
4: पूजा का रेडियो मिर्ची पे मुर्गा बनवा रहा हूँ। अगर कल को पूजा को इस बात पे गुस्सा आ जाता है तो उसका जिम्मेदार आकाश यानी मैं खुद हूँगा, ठीक है?
3: जी, डेफिनेटली।
4: ओके, अगर गुस्सा इतना ज्यादा आ जाता है कि पूजा केस कर देती है मुर्गा बनाने वालों पे, तो उसका जिम्मेदार भी आकाश मल्होत्रा होगा।
3: अच्छा,
4: अगर केस पूजा जीत जाती है और सजा के तौर पे 10 साल की बिना बेल की सजा होती है, तो उसका जिम्मेदार आकाश मल्होत्रा होगा।
3: क्या कह रहे हैं?
4: अगर सजा के तौर पे सजाए काला पानी भेजा जाए तो आकाश मल्होत्रा जाएगा।
3: ये दूसरा क्या सर, मतलब नहीं, मुर्गा बनाने में ऐसा सब भी होता है?
4: नहीं नहीं, ये फॉर्मेलिटी है ना सर, ये पूरा करना होता है, ये कंपनी की तरफ से है। ये लास्ट सुन लीजिए, लास्ट में लिखा हुआ है, अगर मुर्गा बनवाने वाले ने शुरू की 2 शर्तें मान ली हैं तो उसको मुर्गा बनवाना ही पड़ेगा जिसका वो चाहता है। तो मैं पूजा को फोन करता हूँ, अब आप मजे लीजिएगा, है ना?
3: सर, मेरी बात तो सुनिए।
4: हाँ बताइए।
3: फन की बात अलग है, लेकिन वो उसको सीरियसली गुस्सा आ गया। और
4: अरे नहीं, बात तो सुनिए, गुस्सा आपको आज
3: मैं तो प्लीज रहने दीजिए, इसको मेरी बात मान लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी।
4: चलिए, मैं एक शर्त पे रहने दूंगा
3: जी,
4: अगर आप बोलेंगे मेरे साथ कुकड़ू। आकाश तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मैं तुम्हें ऑन एयर डाल दिया है और तुम्हारा ही मुर्गा बन गया।
3: मेरा बन गया बहुत कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
7: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musty, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
6: This initiative is driven by GWM.
8: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 30% off on making charges. Offer only till 25th October. Rush to your nearest Kalyan Jewelers store today to grab this offer. Conditions apply.
9: Hi, this is Anuradha Podwal.
10: This is Vinod Rathod and we are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
11: Hi, I am Kajiva Raman. We are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
12: Experience the magic of their voice on 30th October 2026 at Aspire Zone Ladies Sports Hall, Doha, Qatar, 6:30 PM onwards. In association with Indomie Noodles, Lulu Hypermarket, iPay and Green Printers, online ticketing partners, qtickets.com, Platinum List, Virgin Megastore and S-City. For more information, contact 6004369, an event by Rami Productions International.
13: शॉपिंग करो लूलू में और बिल हो सकता है बिल्कुल फ्री। जी हाँ, लूलू हाइपरमार्केट लेकर आया है लूलू 2026 फ्री ट्रॉलीज। विन वन ऑफ 2026 फ्री ट्रॉलीज और जीतने के लिए बस फॉलो करो 3 simple steps। स्टेप 1, शॉप लूलू हाइपरमार्केट के किसी भी ब्रांच के सुपरमार्केट सेक्शन में जाओ और शॉपिंग करो। स्टेप 2, स्टे ट्यून्ड, चेकआउट काउंटर पर ऑटोमेटेड सिस्टम रैंडमली सिलेक्ट करेगा लकी विनर। स्टेप 3, विन। अगर बिलिंग के टाइम आप सिलेक्ट हो गए तो आपका पूरा शॉपिंग बिल फ्री। तो देर किस बात की, शॉपिंग करो लूलू में, लूलू हाइपरमार्केट। शॉप करो, चांस पाओ और ट्रॉली भर शॉपिंग फ्री में ले जाओ। लूलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
14: खट खट,
15: कौन है?
14: अज्जू।
15: अज्जू कौन?
14: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए। होए।
15: खट खट, who that?
5: Only on
0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot. It's hot. It's hot.

0: कभी मम्मी ने आपकी पुरानी जीन से घर के लिए एक अच्छा सा झोला बनाया है, ये वैसे ही गाना है। कभी इस गाने को इतनी बेहतरीन तरीके से हंसराज हंस जी ने गाया था, लेकिन हनी सिंह ने इसमें अपना ट्विस्ट दे के बिल्कुल वही काम किया है कि एक अच्छी पुरानी जीन्स को मम्मा ने झोला बना दिया। फिलहाल तो मस्त मौला गौरव आपके साथ है। देवी और सजनों, घर को तैयार कर लो। नहीं, मेरे लिए नहीं, मैं जब भी आऊंगा बिना बताए आऊंगा। मुझे पता है मैं अगर बता के आऊंगा आप ताले मार के निकल जाओगे, लेकिन आप अपने घर को तैयार कर लो आने वाले मानसून को लिए। यस, अशगल ने सबसे कहा है कि जितने भी लोग हो ना, आप अभी से नेसेसरी प्रिकॉशंस लेने शुरू कर दो, क्योंकि आने वाले टाइम में रेनी सीजन आएगा और वो बहुत सारे डैमेज के साथ आ सकता है। तो आपको उस पोटेंशियल डैमेज के लिए लंबे खर्चे ना करने पड़े, उसके लिए आपको कुछ सहूलियतें बरतनी है। जैसे कि आप अपने घर के वो जो जितने भी ड्रेन है उनको क्लीन रखिएगा। कोशिश यही कीजिएगा कि पानी जब भरे तो आराम से ड्रेनेज के थ्रू वहां से निकल जाए। मेरे साथ तो हुआ था, मेरे घर में ना पिछली बार जब बारिश आई मार्च अप्रैल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जबरदस्त तरीके से सब कुछ तैर रहा था मेरे बरांडा में। फिर मुझे लगा भैया ये तो ड्रेन ही पूरा जाम है, तो ये गलती आप मत कीजिएगा। और रही बात, तो हम दो तरीके प्रिपेयर करेंगे, एक तो घर के ड्रेनेज को ठीक ठाक कर लेंगे, और दूसरा पकौड़ी लेके बैठने की तैयारी कर लो, उस जगह को साफ सुथरा कर लो जहां पर आप मानसून सीजन में बरसात के सामने चाय पीते पकौड़ियां खाते, उस जगह को भी ठीक ठाक कर लो, क्योंकि हमें आसमान के सफेद काले बादलों की डाई देख के लग रहा है माहौल बनने वाला है दोस्त। मिर्ची इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मतलब हम इस वक्त इतने डेस्परेट है ना कि चाय पकौड़ी हो जाए, बस एक बार बारिश पी, एक बूंद अगर मेरे ऊपर पड़ गई मैं तुरंत पी लूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर पैसे बचा के रखे हो तो ये टाइम है दोस्तों इन्वेस्ट करने का। दाम अभी भी इतने ऊंचे नहीं गए, अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे तो आने वाले टाइम में बाबू भैया पैसे ही पैसे होंगे।
1: गोल्ड अपडेट,
0: लेकिन कदर में तो रियाल ही रियाल होंगे आपके पास। लेकिन आपको अल फरदान एक्सचेंज के स्पैम्प में इन्वेस्ट करना है। स्पैम्प जो लेकर आते हैं आपके साथ 24 कैरेट शुद्धता की गारंटी, यस, क्योंकि स्विट्जरलैंड से सीधे ये गोल्ड बार आपके हाथों में। तो स्पैम्प 1 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार आपको मिलेगा एट 562 कतारी रियाल। स्पैम्प का 5 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार 2625। अगर आप स्पैम्प 10 ग्राम का बार लेंगे 5182 कतारी रियाल। अगर आप सकेंगे नहीं और ज्यादा पैसे 1 आउंस खरीदेंगे तो स्पैम्प का 1 आउंस आपको मिलेगा 16015 कतारी रियाल में। एंड 10 तोला का गोल्ड बार जिसको आप खरीदते ही अजीब जैसा फील करेंगे, मोना डार्लिंग सोना ही सोना है, तो स्पैम्प का 10 तोला गोल्ड बार आपको 59445 कतारी रियाल में मिल जाएगा। फटाफट से इन्वेस्ट कीजिए और जो प्रॉफिट होगा शेयरिंग इज केयरिंग है आपके अंदर, तो आप मेरे साथ शेयर कर लेंगे। 89.6 मिर्ची वन पर ये था अल फरदान एक्सचेंज के गोल्ड रेट्स। मिर्ची इट्स ऑल।
1: स्टे अहेड ऑफ टुडेस गोल्ड रेट्स विद अल फरदान एक्सचेंज, स्पैम्प्स ऑफिशियल एजेंट इन कतार। बाय ऑथेंटिक स्विस मेड 24 कैरेट स्पैम्प गोल्ड बार्स एंड अर्न कतार एयरवेज एवियोस टुडे। विजिट आवर ब्रांचेस और डाउनलोड द ऐप नाउ।

0: वैसे तो गाना कोको कोला है, लेकिन ऐसे मौसम में करक और पकौड़े की बात ही अलग है। लेकिन मेरे दोस्त सुनने कहेंगे काली जबान, हर बार कहता है बारिश होगी कुछ नहीं होता, लेकिन आज मैं कुछ नहीं बोलने वाला, बस इतना ही कहूंगा दोस्तों इंतजार कीजिए, अभी पकौड़ी नहीं खाइएगा, थोड़ा और अच्छा होने दीजिए। आई एम वेरी श्योर मानसून की कुछ बूंदे तो जरूर पड़ेंगी, क्योंकि कतर में कल भी हुई थी, आज भी कुछ जगह बारिश हुई है। इन सबके बीच मस्त मौला गौर बस इतना ही कहेगा, फिलहाल मौसम में थोड़े बदलाव।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
0: वेदर अपडेट। तो मैं फॉलो गौरव आपको बता दे कि भैया देखिए मैक्सिमम तापमान जरूर घट गया है, क्योंकि रीजन बहुत ही सिंपल है, मौसम में बादलों की आवाजाही। 36 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम विल बी अराउंड 30, एंड बड़ी बात यह है हवाओं की रफ्तार 12-13 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास, लेकिन ह्यूमिडिटी 56% पर, और अगर बारिश हो जाए तो ये भी रफू चक्कर, एंड फिर ऑफिशियली विंटर सीजन का मजा लेंगे। 89.6
2: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: कुणाल खेमू, अपने कॉलेज डेज में आपने सबसे बढ़िया जुगाड़ कौन सा किया?
2: हम लोग थिएटर जब करते थे कॉलेज में, ये तो नॉर्मल जिंदगी थी उस वक्त, लिमिटेड पॉकेट मनी होती थी, चल चल के पैसे बचाए जाते थे, रिक्शे के कैसे शेयरिंग में कभी किसी को धोखा देके भाग लेते थे।
1: कुणाल खेमू वो इंसान आज भी आपके पीछे भाग रहा है। व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक अराउंड। आप सुन रहे मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 30% off on making charges. Offer only till 25th October. Rush to your nearest Kalyan Jewelers store today to grab this offer. Conditions apply.
5: It's back! It's back! LG and Jumbo ki mega promotion. LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs or audio products par assured gift vouchers. Plus up to 3 years extended warranty, Mukafa points, Nujum, Air Miles or Avios. Visit LG brand shops, Jumbo stores ya JS.QA. Hurry! Offer valid till 19th October.
6: Khat khat.
7: Kaun hai?
6: Ishant.
7: Ishant kaun?
6: Ishant Gadadhari Bhim. Ishant.
7: Khat khat. Who that?
8: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.

0: लाल लाल कलर ची बंगड़ी बैंगल्स गाना खत्म हुआ और आपके साथ आया
1: मस्त मौला गौरव।
0: यार मतलब मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा ना कि पहले ना चूड़ियों की दुकानों पे जब आप बच्चे थे ना मम्मी के साथ जाते थे तो वो भी एक अलग ही दुनिया होती थी। अलग अलग रंग बिरंगी चूड़ियां लाखों की संख्या में भरी हुई है और जब तक मम्मी अपने नंबर की पहन ना लेती तब तक हम बैठ के बस देख ही रहे होते थे कि चल क्या रहा है जिंदगी में। फिलहाल जिंदगी में आज बहुत आगे आ गए हैं, अब तो बस गाने सुना पा रहे हैं, पर मस्त मौला गौरव अब आपको जिताएगा, उस दौर के यू नो सिंगर से मिलवाएगा जो हमारे 90s को खूबसूरत बना चुके हैं। यस, अनुराधा पौडवाल जी, विनोद राठौड़ जी एंड साथ में जूनियर कुमार सानू। यस, ये सब के सब हमारे कथन में आ रहे हैं, रहमी प्रोडक्शन इंटरनेशनल इनको लेकर आ रहा है एंड खास शाम हमारे और आपके लिए ऑर्गेनाइज की जा रही है। ऐसे में मैं एक सवाल पूछने जा रहा हूं, दृश्यम मूवी ने कमाल कर दिया भैया, जबरदस्त पैसे कमा रही है इस साल, तो माहौल ही अलग कर दिया। दृश्यम 500 करोड़ पार कर गए, 2026 की दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म बन गई है। तो मैं ये पूछ रहा था कि दृश्यम मलयालम सिनेमा से आई, यस, अजय देवगन से पहले मलयालम सिनेमा में ये दृश्यम बनी, उस पिक्चर के हीरो कौन थे? हाँ जी, हम सब जानते हैं 5000196 पर, आप सर्च मत कीजिएगा, अगर दिल से जानते हैं तो फटाफट से जवाब भेजिएगा 5000196 पर। जो मलयालम दृश्यम बनी है उसमें हीरो कौन है? सच कह रहा हूं, टॉपर स्टूडेंट है हमारे यूसुफ भाई, उन्होंने जवाब दे दिया है, लेकिन वॉइस नोट में अपना जवाब जरूर भेजिए 5000196 पर। किसी एक लकी विनर को इस घंटे में प्राइज जिताने वाला हूं, जो जाएगा ये शो को एंजॉय करेगा और मिर्ची को थैंक यू कहेगा, रामी के लिए वाह वाह कहेगा, मिर्ची इट्स हॉट।

0: सजना भाई सजना, गाना खत्म हो गया और आपके साथ आपके रेडियो का वो दोस्त आ गया जिसका नाम है देवी। और सजनों, जब भी हम आपके साथ होते हैं, हम कहते हैं कि जब हम कोई सवाल पूछे तो उसका जवाब वॉइस नोट में भेजा करिए। बहुत सारे लोग लिख के भेजते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अच्छी बात तब लगती है जब लोग आपके जवाब को सुन पाते हैं। हालांकि इतनी भारी संख्या में जवाब दे दिया है कि अभी तो मैं कुछ ही लोगों को सुना पा रहा हूँ, पर ऑलमोस्ट 99% जवाब सही है। आज पहली बार मैं जवाब से पहले बता रहा हूँ 99% सही। भाई मतलब अगर इसमें गलती की तो फिर क्या ही आप पिक्चर के शौकीन है। मैंने पूछा था दृश्यम का, यूं तो थर्ड पार्ट आ गया है अजय देवगन की फिल्म ने, 500 करोड़ क्लब में शामिल होकर इतिहास रच दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब मलयालम में दृश्यम बनी थी तो हीरो कौन था?
1: यार इसका आंसर तो वेरी सिंपल है, इट्स मोहनलाल, वन ऑफ द मेन एक्टर और सुपरस्टार वी नो फ्रॉम केरला इंडस्ट्री।
0: क्या बात,
1: ही वाज द वन हु वाज इन दिस मूवी, मोहनलाल।
0: जी जी जी,
1: थैंक यू,
0: थैंक यू,
1: बाय बाय।
2: हाय गौरव, ये मूवी की जो बात कर रहे हैं उसमें मोहनलाल हैं।
0: ओके सर, ओके।
3: हाय गौरव,
0: हाय हाय।
3: मलयालम का जो एक्टर है हिज नेम इज मोहनलाल।
0: ओके,
3: माय नेम इज शरण, मिर्ची इट्स हॉट।
0: थैंक यू शरण,
4: थैंक यू गौरव।
0: हाय जी, कैसे आ रहे यूसुफ भाई, नंबर 1। हां बताइए।
4: मलयालम फिल्म दृश्यम के हीरो हैं मोहनलाल।
0: ओके,
4: थैंक यू, बाय बाय
0: बाय बाय।
5: गुड इवनिंग गौरव,
0: गुड इवनिंग
5: अग्रवाल। दृश्यम मूवी मलयालम, मोहनलाल।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 100% एक्यूरेसी के साथ जवाब आया। 99.9% लोगों ने सही कहा है, क्योंकि एक से कुछ गलती हुई है, उन्होंने लगता है सवाल कुछ और सुन लिया, एकदम ही तिरछा आड़ा नाम दे दिया। फिलहाल तो ये मुकाबला कौन जीता, किसके हाथ लगेगी टिकट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आज सबसे पहले जवाब दिया यूसुफ ने। यूसुफ भाई, यूं तो आप मेरे क्लास टॉपर हैं, लेकिन आज आपको रैंक 1 देनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे सवाल पूछे उसमें आपका आंसर जवाब के रूप में आ गया। 89.6 मिर्ची 1। अगले घंटे एक और विनर बनने वाला है, तब तक के लिए कान लगा के सुनते रहो, सवाल इसी घंटे पूछ देंगे। मिर्ची इट्स हॉट।

0: This song is driven by Unipart, your one-step destination for quality auto parts, trusted brands and unbeatable value. Unipart, a part of your life.
1: हेलो, ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब?
2: किसके यहाँ से?
1: स्वर्गीय अनिल चौहान।
2: मतलब किसके यहाँ बात फोन मिलाया आपने?
1: स्वर्गीय अनिल के यहाँ फोन मिलाया भाई साहब। मैं बोल रहा हूँ
2: अनिल ही बोल रहा हूँ, स्वर्गीय नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ।
1: सर, स्वर्गीय अनिल चौहान उनका पूरा नाम है। सर, मैं से बोल रहा हूँ, पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से। तो ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से कोई हो तो उनसे बात करा दीजिए।
2: दिमाग खराब है तेरा? अबे मैं खुद बोल रहा हूँ, तू सोच कम से कम।
1: सर, आप ये बेवकूफी की बात ना करें। आप एक तो जुबान संभाल की बात करें। मैं पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, आप कह रहे हैं आप जिंदा हैं, यहाँ पोस्टमार्टम कर रखा है हमने, आपकी रिपोर्ट आ गई है। सर, आके ले जाइए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट।
2: स्वर्गीय नहीं, तू अनिल चौहान से ही बात कर रहा है।
1: स्वर्गीय अनिल चौहान, यार आप जो लक्ष्मी नगर में रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ।
2: स्वर्गीय अनिल चौहान, मैं जिंदा हूँ भाई, मैं रहा है घर परिवार वाले में, तेरे कोई पागल तो नहीं हो गया?
1: कौन पागल हो गया आपकी पोस्टमार्टम? मेरी बात सुन लीजिए आप।
2: नहीं,
1: मैंने मारा पोस्टमार्टम हमने किया। स्वर्गीय अनिल चौहान से बात करनी है, उनसे बात कराई, बीच में आप कैसे आ गए यार? कमाल कर दिया आपने। दिमाग खराब मेरा नहीं हुआ, आपको यकीन नहीं है तो दोबारा आके पोस्टमार्टम करा लो, एक ही रिपोर्ट है दोनों की।
2: डॉक्टर बोल रहा
1: हूँ, मैं डॉक्टर विजय बोल रहा हूँ यार, मैंने खुद पोस्टमार्टम किया उनका।
2: केस करूंगा,
1: केस हम क्या करेंगे, केस तो मैं उन पर करूंगा, स्वर्गीय अनिल चौहान पे, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे लिखा हुआ आप बाप बनने वाले थे, वो बाप बनने वाले।
2: परिवार वाले आदमी से बात करता है, कौन है तेरी
1: बेवकूफी की बात मत करिए। आप आइए यहाँ पे पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में, दिखाता हूँ आपकी लाश, आपकी बॉडी दिखाता हूँ यहाँ पे आके। पोस्टमार्टम तो करके छोड़ूंगा मैं
2: जी।
1: स्वर्गीय अनिल चौहान जी के यहाँ से कोई बात कर सकते हैं मेरे से?
2: तेरा दिमाग खराब हो गया।
1: सर मेरी बात सुनिए, आप फोन मत काटिएगा, बड़ा मुश्किल से मिलता है। अनिल चौहान जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बनाया, छोटा सा मजाक किया है, आपकी उम्र बहुत लंबी है यार, आप टेंशन ना लें।
2: अरे किसी बहुत मार खाओगे आप, सही बता रहे हैं। क्या
1: सर, मैं पिटने को तैयार हूँ, लेकिन आपकी हंसी सुन के मुझे मजा आता है। अब मेरे साथ आप प्यार से कह दीजिए।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शॉकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स, अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
5: हाय, दिस इज अनुराधा पौडवाल।
6: कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला।
7: दिस इज विनोद राठौर एंड वी आर कमिंग टू परफॉर्म इन योर सिटी दोहा कतार।
6: भूल से पर्दा कीजिए।
8: Hi, I am Kajiva Raman. We are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
9: Experience the magic of their voice on 30th October 2026 at Aspire Zone Ladies Sports Hall, Doha, Qatar, 6:30 p.m. onwards. In association with Indomie Noodles, Lulu Hypermarket, iPay and Green Printers, online ticketing partners, qtickets.com, Platinum List, Virgin Megastore and S-City. For more information, contact 6000-4369, an event by Rami Productions International.
10: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 30% off on making charges. Offer only till 25th October. Rush to your nearest Kalyan Jewelers store today to grab this offer. Conditions apply.
0: Back to school means more journeys, more traffic and more reasons to drive with peace of mind.
11: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400 with 24/7 roadside assistance, including towing, flat tire help, battery jump start and lockout assistance, plus flexible payments and 7% cash back. Call 800-0786 or visit BimaOnline.com.
0: Bima, for your peace of mind. Terms and conditions apply.
12: Shopping karo Lulu mein aur bill ho sakta hai bilkul free. Ji haan, Lulu Hypermarket lekar aaya hai Lulu 2026 free trolleys. Win one of 2026 free trolleys. Aur jeetne ke liye bas follow karo three simple steps. Step 1. Shop. Lulu Hypermarket ke kisi bhi branch ke supermarket section mein jao aur shopping karo. Step 2. Stay tuned. Checkout counter par automated system randomly select karega lucky winner. Step 3. Win. Agar billing ke time aap select ho gaye, to aapka pura shopping bill free. To der kis baat ki? Shopping karo Lulu mein. Lulu Hypermarket. Shop karo, chance pao aur trolley bhar shopping free mein le jao. Lulu, where the world comes to shop.
13: Hello, shops. Our product is phenomenal. One of a kind, but still profit नहीं हो रहा है. मैंने बाबा जी से advice ली तो कहते हैं
14: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ प्रॉफिट आएगा.
13: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
15: काम को टाइम दो 25 घंटे काम करो डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा.
13: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो.
16: भाई क्या कर रहा है तू जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी. ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है. गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर जहाँ तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट.
17: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

0: बड़ा तेज तेज तेज तेज पिटाई हो रही इंडियन टीम के बॉलरों की। 89.6 जीवन पर मस्त मौला गौरव आपके साथ है। देवी और सज्जन इतना ही कहना चाह रहे हैं, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच ये चौथा T20 मैच जहां पर इंडियन टीम ने भाई बॉलिंग करनी शुरू की और उसके साथ ही धुनाई शुरू हो गई। वेस्ट इंडीज और इंडिया का ये मैच हैदराबाद में चल रहा है एंड अगर स्कोर कार्ड की बात करें सर, इतनी तेजी से रन बन रहे हैं कि मतलब लग ही नहीं रहा है T20 हो रहा है, मुझे तो लग रहा है 50 ओवर का स्कोर बन रहा है। 12 ओवर दो बॉल में 152 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स एंड बड़ी बात यह है कि पवेल साहब के साथ इस वक्त साई होप जो कि टीम के कप्तान विकेट कीपर है जबरदस्त धुनाई किए हुए हैं। चलिए जी, उम्मीद है ये 200 के आसपास सिमट जाएगा स्कोर और फिर इंडियन टीम इसको फटाफट चेस कर लेगी। मतलब हम तो ऐसे ही सोचते हैं ना भाई। हालांकि टॉस जीतकर इंडिया ने एक काम अच्छा किया है, बॉलिंग ले ली है ताकि रात के ड्यू फैक्टर में हम फायदा उठाएंगे। जब उनकी ग्रिप नहीं होगी हम दे छक्के पर छक्का, ऐसा हमेशा अच्छा सोचो। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

टशर जेसन डेरुलो की आवाज में ये गाना सुनाया किसने? देवी और सज्जनों, हम आपके साथ हैं, फिकर नॉट। बातें तो बहुत होती रहती हैं, लेकिन जब बात पैसों की आए तो हम बढ़ चढ़ कर आपके साथ हैं। वही अगर बात करें तो एक कतरी रियाल के बदले मिलने वाले इंडियन रुपीज 26.06 रुपए हैं, 26.06 INR। एंड एक कतरी रियाल के बदले इस वक्त श्रीलंकन रुपीज 90.88 मिल रहे हैं, 90.88 रुपए। अगर श्रीलंकन रुपीज की बात करें, उसके बाद जनाब पाकिस्तान रुपीज वाहिद कतरी रियाल के बदले 76.12 पाकिस्तान रुपीज। इसके बाद तपाई को नेपाली रुपीज का रेट सो दाजो एक कतरी रियाल के बदले 41.65 का बल्चा रेट दाई। हाँ जी, 1.65 को नेपाली पीस करता है। इसके बाद बंधु बांग्लादेशी टाका बात करेगा 33.86, तो 33.86 रेट आ चाहिए बांग्लादेशी टाका। चलो मस्त मोलो गौरव आपके साथ है, ये तो हो गया। लेकिन इसके अलावा आईपी पे आपको मिल जाता है माई बुक का सब्सक्रिप्शन, जहां आप हजारों डील्स पाते हो एंड पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर की सबसे कम फीस आपको आईपी देता है। तो भैया ऐसे ऐप को साथ में रखने का नहीं, हमेशा 24 घंटे अपने पास रखने का मोबाइल में। मिर्ची इट्स हॉट।

यार जिंदगी में ना सेकंड चांस का हक सबको है। और ये सेकंड चांस उन्हें भी मिलना चाहिए जो शायद जिंदगी में एक बार गलती कर चुके हैं, लेकिन समय के साथ वो अपने अंदर बदलाव लाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ऐसे ही एक बात कही है, यस, जहां पर इनमेट्स प्रोडक्ट, वो लोग जो पीनल एंड कलेक्शन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू इनमेट्स हैं, एंड वो सूम ऐप पर अपने बहुत सारे हैंडमेड प्रोडक्ट्स सोल्ड आउट कर रहे हैं। याद रखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने हम सबको बताया है कि इनमेट्स के प्रोडक्ट, जो कि कह सकते हैं सजा यातना जो काट रहे हैं, उनको मिली है ये मौके की बात, जहां पर हम और आप उनके द्वारा बनाई गई चीजों को सोम ऐप पर ले सकते हैं। एंड मिनिस्ट्री का ये सोम ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले ऐप गैलरी एंड ऐप स्टोर से। एंड याद रखिए, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए शायद जिंदगी का एक और मौका देने के रूप में, जहां पर उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स आप खरीद कर ये बता सकते हैं कि बाहर की दुनिया उनकी चीजों को एक्सेप्ट करती है, और अगर उन्होंने कुछ गलत किया है जिसके लिए वो अब सजा काट रहे, तो उन्हें ऊपर वाले ने जो दूसरा चांस देने को कहा है उस पर हम सब अमल करेंगे। सो अगर आप इनमेट्स प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं, सो मैप पर ये आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। अक्टूबर 15, दैट इज फ्रॉम टुमारो इट विल स्टार्ट। होप कुछ ऐसी चीजें जो शायद उन्हें अच्छा फील कराएं हम कर सकते हैं। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. Na vid bala burka. Mirchi, burka.
1: हेलो
2: हेलो, ये कमलेश जी?
1: हाँ जी, कौन?
2: कमलेश जी, गोपाल बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी से। ये आपके पास भी पत्र आया होगा, हमारी पत्नी ने, लाजवंती ने, वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है, आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
1: कौन सा पैसा चाहिए तुम्हें?
2: नहीं, देखिए, एक तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो, ये हमारी जो पत्नी है लाजवंती, उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का क्लब, उसकी बाहर की दीवार देखो, उसमें पुताई होनी है।
1: देखिए,
2: मैंने हमेशा कब लिया आपसे? हमने कब लिए आपसे?
1: अरे तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए, उसी में से करो आप जो कर रहे हैं।
2: भाई साहब, एक बात बताओ, आपके पास 750 रुपए का बहुत बड़ी कीमत है जो आप देने को मना कर रहे हो।
1: 750 रुपए मैं थोड़ी ना हर चीज के पैसे देता रहूंगा तुम्हें। बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या, तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे। कोई त्योहार नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो, चलना मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
2: आप नहीं दे रहे फिर?
1: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे।
2: ना दे रहे लाजवंती, ना मान रहे।
3: I want to talk to him. Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time. Just 750 bucks, sir. That's all we're asking for, because we feel we're all family and my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you
1: yes,
3: with us?
1: Yes, madam, I'm there. I understand, main samajh raha hu aapko. What is the amount?
3: It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know you, how fond you are of trips, sir. So I'm sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead with this?
1: No, not an issue. 750 only?
3: Yes, sir, absolutely.
2: No, 750 na bhai. Tere 1500 lagenge. Hamari baat samajh mein na aayi. Lajwanti ki ekdam gheje mein pad gayi.
0: Mirchi Murga, Naveed ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
4: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ डिस्कवर करो वर्सेटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
5: GWM के मिर्ची रिचार्ज में आइडियल इंडियन स्कूल के बच्चों ने की ढेर सारी मस्ती एंड फन। लेट्स हियर इट फ्रॉम देम।
6: 89.6 मिर्ची वन से मैं हूँ आरजे मस्त गौरव और मैं आया हूँ आज आइडियल इंडियन स्कूल में और मेरे साथ ढेर सारे बच्चे हैं। यू गाइस एंजॉय इट।
7: It was great fun. Thank you, Mirchi. Thank you, GWM.
8: Thank you, Mirchi, for the GWM recharge. It was really fun, especially the magic show.
9: Anshu, Gaurav, Afreen, thank you very much.
10: Huh? Free cash vouchers on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
11: Yes, Bebo.
10: Sirf 25% pay karke gold price lock kar sakti hu?
11: Yes.
10: Catch kya hai?
11: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free cash vouchers. Aur sirf 25% pay karke gold rate ko block kar do.
10: I still can't believe it. No catch.
11: Catches sirf matches mein hote hain, Bebo. This is your festive gift from Malabar gold and diamonds.
12: It's back! LG and Jumbo ki mega promotion. LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs aur audio products par assured gift vouchers. Plus, up to 3 years extended warranty, Mukafa points, Nujum, Air Miles aur Avios. Visit LG brand shops, Jumbo stores ya JS.QA. Hurry! Offer valid till 19th October.
13: Shopping karo Lulu mein. Aur bill ho sakta hai bilkul free. Ji haan, Lulu Hypermarket lekar aaya hai Lulu 2026 free trolleys. Win one of 2026 free trolleys. Aur jeetne ke liye bas follow karo 3 simple steps. Step 1. Shop. Lulu Hypermarket ke kisi bhi branch ke supermarket section mein jao aur shopping karo. Step 2. Stay tuned. Checkout counter par automated system randomly select karega lucky winner. Step 3. Win. Agar billing ke time aap select ho gaye, to aapka pura shopping bill free. To der kis baat ki? Shopping karo Lulu mein. Lulu Hypermarket. Shop karo, chance pao, aur trolley bhar shopping free mein le jao. Lulu, where the world comes to shop.
14: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
15: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
16: कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन। 89.6
17: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: अरिजीत सिंह मिथुन की आवाज में दिल झूम झूम जाए और मेरी आवाज सुन के आपका दिल झूम जाता है, मुझे पता है।
1: मस्त मौला गौरव।
0: लेकिन मेरा दिल जब तब झूमने लगता है जब मुझे पता होता है कि वीकेंड आने वाला है। मतलब मेरे लिए ना वेंसडे के बाद सीधे फ्राइडे हो जाता है, थर्सडे को भी मैं वीकेंड कर लेता हूँ और इसीलिए बॉस कई बार बोल देते बेटा आज भी काम करना है। इन सब के बीच अगर आप फ्री हैं इस फ्राइडे तो 974 बीच आपको शाम 3 बजे से शाम 7 बजे तक के लिए बुला रहा है, क्योंकि यहाँ पर होने वाला है फेस्टिवल ऑफ वेकेशन एंड फन। और ये फेस्टिवल सबसे खास इसलिए है क्योंकि फैमिली फ्रेंडली एक्टिविटीज होने वाली है, बच्चों के लिए अलग जोन, आपके लिए अलग मस्ती जोन, और अगर थोड़े और शौकीन है तो गाड़ी अंदर तक लेकर जाइए, वहां एंजॉय कीजिए, कोई रोकेगा नहीं। लेकिन 150 कतरे रियाल खर्च करने पड़ेंगे दोस्तों। अगर आप अभी प्री बीच पार्टी करना चाहते हैं, विंटर्स आने वाले हैं, तो मुझे लगता है ये राइट प्लेस है। यहां आपको भी पता लग जाएगा क्या गलती हुई, अगली बार ये नहीं करना है और ये लेके जरूर जाना है जब बीच आउटिंग करनी है। 89.6 मिर्ची वाले थॉट।

0: Sham Shandar, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: 89.6 मिर्ची वन पर लंबी दौड़ लगानी होगी टीम इंडिया को, वैसा जैसा कि साई होप ने सेकंड T20 में किया था, वो अब इंडियन टीम को करना पड़ेगा। भाई साई होप ने आखिरी दो बॉलों पे, उन्हें 10 रन चाहिए थे सेंचुरी के लिए, लड़के ने लगा दिए। यस, 247 का स्कोर दिया वेस्ट इंडीज ने और इंडिया को बनाने होंगे अब 248 अपने 20 ओवर के कोटे में। लेकिन शानदार बैटिंग कर रहे हैं साई होप, इस T20 सीरीज में 2 सेंचुरीज लगा दी और वनडे में 2 अलग लगाई थी, मतलब रन मशीन बन गया अपनी टीम की। 50 बॉलों पर 102 रन उन्होंने और 26 बॉलों पर रदरफोर्ड ने 49 रन बनाए। वेल, टीम इंडिया की आज जबरदस्त धुनाई हुई है। मयंक यादव 4 ओवर 52 रन, अर्शदीप सिंह 4 ओवर 52, मतलब 100 तो इन्होंने ही बनवा दिया 8 ओवर में। एंड इसके अलावा अक्षर पटेल को 4 पे 45 पड़े, वहीं 1 में नमन धीर ने 19 खाए और नीतीश कुमार रेड्डी थोड़े किफायती 3 ओवर में 39 खाए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, प्रिंस यादव आप नई पहचान बन जाएंगे अगर इसी तरह बॉलिंग करते रहेंगे। 4 ओवर में जहां इतने पिट रहे हैं, अपने 36 रन दिए। इसी उम्मीद से कि भाई जब बैटिंग की बारी आएगी तो ईशान किशन हो या फिर हमारे शर्मा जी, सब जो है आज ताबड़तोड़ खेल के जीतेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं मिर्ची 100।

मैं कह रहा था जी कि आपको मैं और क्या कहूँ भाई, एक ऐसा दौर जो हम हर वक्त वापस पाना चाहते हैं। That is 90s का दौर, यानी कि वो टाइम जब हम और आप स्कूल या कॉलेज में होंगे। एंड कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि वो एक ऐसा दौर था जब म्यूजिक से लेकर लाइफ में बहुत सारी चीजें ना रियलिस्टिक थी और लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे क्योंकि मोबाइल नहीं था ना दोस्त, वो तो धीरे धीरे समय के साथ आया। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, उस जमाने के जो नगमे हैं वो आज भी अंताक्षरी हो जाए, हम कितने भी नए गाने सुन लें लेकिन याद वही सारे गाने आते हैं और यही बनाता है हमारे उस 90s को स्पेशल। और अब जब हमारे कतर में ये इवेंट होने जा रहा है जिसमें हम मेगा बॉलीवुड कॉन्सर्ट की बात करें, यस ये खुद लेकर आ रहे हैं रवि प्रोडक्शन इंटरनेशनल। इससे पहले भी उन्होंने नेहा कक्कड़ हमारे सामने लेकर आए थे, भोजपुरी या धमाल शो किया था यहाँ पर, एंड हाउ कैन वी फॉरगेट दबंग, और वो अब लेकर आ रहे हैं ये मेगा बॉलीवुड कॉन्सर्ट जहाँ पर विनोद राठौड़, अनुराधा पौडवाल जी एंड खुद जूनियर कुमार सानू होंगे। तो मैं कह रहा हूं जब इस दौर से इतना प्यार करते हो तो बस अपनी टिकट्स बुक कर लो, क्यू टिकट्स, एससीटी, नूनू, इसके अलावा वर्जिन, यहां सब जगह आपको ये टिकट्स मिल रही हैं। जाइए अपनी टिकट्स बुक कर लीजिए, प्लैटिनम लिस्ट भूल गया था वो भी है, और अर्ली बर्ड ऑफर बहुत सारे कैटेगरीज में है, जाकर इसका फायदा उठाइए। एंड गौरव को थैंक यू, ये जो सही टाइम पर सही चीजें याद दिलाता है। और अब जब बात की उस दौर की तो एक गाना जो वहां हमें खोने पर मजबूर करता है,

0: Bollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: नेशनल अवार्ड विनर अजय देवगन, क्या आपको हमेशा से एक्टिंग करनी थी?
3: इट वॉज नेवर एक्टिंग, इट वॉज ऑलवेज आई यूज टू मेक माई ओन फिल्म्स. आई वॉज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, आई यूज टू एडिट, आई यूज टू डायरेक्ट, आई वॉज अ कैमरामैन, आई यूज टू डू एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर एक्टिंग.
2: व्हाट कैन आई से अजय देवगन, आई एम जस्ट ग्लैड कि फूल और कांटे हैपेंड. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
4: It's back! LG and Jumbo ki mega promotion! LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs aur audio products par assured gift vouchers. Plus, up to 3 years extended warranty, Mukafa points, Nujum, Air Miles aur Avios. Visit LG brand shops, Jumbo stores ya JS.QA. Hurry! Offer valid till 19th October.
5: Dosti kai ko sulay madam? No sorry, no thank you.
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए.
7: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा,
8: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा.
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट.

जब ज्यादा खुश होते हैं इंडियन टीम खुशी को ढोस कर देती है। अब भाई इतने बड़े रनों का टारगेट लेके हमारी टीम इंडिया उतरी, हमको लगा चलो बैटिंग शानदार करनी चाहिए और हुआ भी वैसा। 248 के टारगेट के लिए टीम इंडिया को पहले ही 3 ओवर में एकदम शानदार तरीके से 60 रन, इनफैक्ट 4 ओवर में 60 रन तक पहुंचा दिया हमारे संजू सैमसन ने। 23 बॉलों पे 56 रन बना दिए लेकिन फिर आउट हुए और उसके बाद ईशान किशन है वो भी फटाक से 6 रन बना के बैक टू पवेलियन। अभी 75 रन स्कोर बोर्ड पे है, 2 विकेट बैक टू पवेलियन हो गए। वो तो भला और शर्मा जी टिके अय्यर जी के साथ, कमाल कर दे, बस हम तो यही चाहते हैं। एक तरफ लस्सी दूसरी तरफ इडली डोसा सांबर, मजा आ जाएगा। टीम इंडिया ये मैच जीत जाएगी, हम ये सीरीज जीत जाएंगे। टारगेट जो अभी हमें मिला है वो एकदम 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से चल रहा है, 86 बॉल्स पर 173 एंड हैदराबाद की ड्यू फैक्टर ध्यान रखते हुए ये बन सकता है दोस्त। मुझे पूरी उम्मीद है इंडियन टीम कमाल करेगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और कमाल की बात ये करते हैं कि अजगर ने हम सबको बोला है ये जो अभी रेनी सीजन आने वाला है उसके लिए तैयार रहिए, जितना हो सके अपने घरों को तैयार कर लीजिए, उन सारी फैसिलिटीज को तैयार कर लीजिए जहां पर पानी वानी लगता है उस ड्रेनेज पाइप को ठीक ठाक करा लीजिए। क्या पता अचानक से बारिश हो आप कहें यार देखो नुकसान हो गया, अब तो कॉस्टली रिपेयर होगा, है जी। इसलिए समय रहते सब कुछ कर लिया करिए, हालांकि इंतजार उस बात का जरूर कीजिए कि जब तक क्या पता अचानक से बारिश हो आप कहें यार देखो नुकसान हो गया, अब तो कॉस्टली रिपेयर होगा।

0: हेलो मुकेश जी।
1: कौन?
0: मुकेश जी मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ, राणा मोटर से। आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली, थोड़ा
1: नहीं हो पाया भाई।
0: हाँ वो नहीं हो पाया सर।
1: हाँ जी? नहीं हो पाया
0: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की। सर वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी।
1: नहीं क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज गए तुम्हारे, जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया, क्या मजाक ही क्या है ये?
0: नहीं मुकेश जी मैं समझ रहा हूँ वो एक
1: क्या समझ रहे हो भाई।
0: नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुकेश जी आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे। सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा।
1: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
0: सर, वो
1: ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया, मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया।
0: नहीं सर
1: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे।
0: नहीं सर कुछ हो नहीं पाया।
1: क्यों नहीं हो पाया
0: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी
1: है?
0: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी।
1: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
0: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
1: क्या करा दूँ
0: सर, मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
1: कैसी FIR, दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
0: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे, आप गुस्सा तो मत करिए कम से कम।
1: क्या गुस्सा ना करूं, नई गाड़ी थी हमारी।
0: नहीं सर आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है, हमने भी तो ग्रीस लगाया उसमें, ग्रीस लगाया उसमें, हमने पेट्रोल डाला है।
1: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगा। आग लगा दूंगा तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में।
0: अच्छा
1: मुझे चाहिए अपनी वापस।
0: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
1: जिम्मेदारी तुम्हारी है कराने की।
0: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें। अच्छा सर ऐसा चल सकता है?

0: से आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें। और मुकेश वो बन भी गया है मुर्गा।
1: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा।
2: तो जान निकाल दी हमारी।
1: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे। मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए।
2: कुकड़ू कु
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड ज्वेलरी, सीरियसली माही?
5: यस बेबो,
4: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ।
5: यस yes.
4: कैच क्या है?
5: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ। डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो।
4: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच।
5: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो। दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स।
6: Looking to grow your business, expand your network and reach the right customers? Introducing the Qatar Business Card Directory, QBCD, the flagship product of Media Plus WLL Doha, now proudly launching its 20th edition. Be part of this major milestone. Enroll your business card today and take your business towards greater visibility and stronger connections. For business inquiries, call 5509-389 or download the QBCD app now. Connect, promote, grow.
7: शॉपिंग करो लूलू में और बिल हो सकता है बिल्कुल फ्री। जी हाँ, लूलू हाइपरमार्केट लेकर आया है लूलू 2026 फ्री ट्रॉलीज। विन वन ऑफ 2026 फ्री ट्रॉलीज और जीतने के लिए बस फॉलो करो थ्री सिंपल स्टेप्स। स्टेप वन, शॉप लूलू हाइपरमार्केट के किसी भी ब्रांच के सुपरमार्केट सेक्शन में जाओ और शॉपिंग करो। स्टेप टू, स्टे ट्यून्ड, चेकआउट काउंटर पर ऑटोमेटेड सिस्टम रैंडमली सिलेक्ट करेगा लकी विनर। स्टेप थ्री, विन। अगर बिलिंग के टाइम आप सिलेक्ट हो गए तो आपका पूरा शॉपिंग बिल फ्री। तो देर किस बात की, शॉपिंग करो लूलू में, लूलू हाइपरमार्केट। शॉप करो, चांस पाओ और ट्रॉली भर शॉपिंग फ्री में ले जाओ। लूलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
8: खट खट,
9: हु दैट?
8: जस्सी।
9: जस्सी? कौन सी वाली जस्सी?
8: जस्सी हु हैज कम आंटी जी।
9: खट खट, हु दैट?
3: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Lights, camera, film festival. Yes, Mastmola Gaurav आपको बताना चाहेगा कि कतर के सिनेमा लवर्स के लिए एक बहुत ही सुपर एक्साइटिंग न्यूज है. अरे भाई, दोहा फिल्म फेस्टिवल की अनाउंसमेंट हो गई है.
1: #974 the most trending local news of the day.
0: यस, हम आपको बता दें, दोहा फिल्म इंस्टीट्यूट ने अनाउंस कर दिया है 2026 दोहा फिल्म फेस्टिवल की डेट्स. और ये डेट्स आ गई हैं नवंबर 19 से नवंबर 27 तक, जहां पर 22 अमेजिंग शॉर्ट फिल्म्स फीचर होने वाली हैं. और दो इसमें ऐसी हैं जो वर्ल्ड प्रीमियर होंगी, और 19 फिल्म जो हैं वो मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन से आ रही हैं. बिल्कुल मिलाकर कैन के विनर फेडरिको लुइस की फॉर द कॉम्पिटिटर से लेकर वेनिस अवार्ड विनिंग मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस तक, ये सारी फिल्म इस बार वर्ल्ड क्लास स्टोरीज आपका वेट कर रही है. एंड अपने कैलेंडर डेट फाइनल कर लो, नवंबर 19 से नवंबर 27 तक दोहा फिल्म इंस्टीट्यूट का 2026 दोहा फिल्म फेस्टिवल विल टेक प्लेस. मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये फिल्म भले ही छोटी है, लेकिन इनका इंपैक्ट बहुत बड़ा है दोस्त. और इसीलिए पूरी दुनिया के जो सिनेमा लवर्स है ना, वो ऐसी मूवीज का जब प्रीमियर कहीं हो रहा था जरूर पहुंचते हैं. सो कुछ बड़े नाम यहां भी पहुंचेंगे, आई एम श्योर. तो तैयार हो जाइए. एक फिल्म फेस्टिवल हमको भी याद है, हमारे बनारस हमको कोई बुला के ना राम गोपाल वर्मा की आंख दिखा दिया था, तब से हम एकदम खौफ खाते हैं. लेकिन जब ऐसी फिल्में फीचर होती है तो लगता है चलो भाई कुछ तो अच्छा हो रहा है, हमें भी जाना चाहिए. क्योंकि हमें ना एक्टिंग का बड़ा शौक है, क्या पता किसी अच्छे डायरेक्टर की नजर मुझ पर पड़ जाए और कास्टिंग में मुझे कास्ट कर लिया जाए. 89.6 मिर्ची वाली चार.

0: चलो भाई कतर में एक और जगह घूमने की हो गई। यस, हमारे कतर में तामीर रियल स्टेट लेकर आए हैं कैनल वॉक। अब आप पूछेंगे कैनल वॉक क्या है, तो मैं आपको बता दूं इसे कैनल बे भी कह सकते हैं। यस, ये कैनल बे हमारे कतर में कत्तेफिन आइलैंड नॉर्थ की तरफ बना है, जो कि नया वाटर फ्रंट टूरिज्म एंड लेजर डेस्टिनेशन बन रहा है। एंड 580 मीटर लॉन्ग वाटर फ्रंट पर आप इस खूबसूरत इलाके में जाकर घूमेंगे। लेफ्ट साइड में आपको ढेर सारे अलग अलग ब्रांड्स के स्टोर नजर आने वाले। आउटडोर स्पेस होगी, लोग बैठेंगे, रेस्टोरेंट, कैफेज एंड रिटेल आउटलेट्स कुल मिलाकर जो मजा अब तक हम सिर्फ पर्ल में लेते थे, वो मजा अब हम इस वाटर फ्रंट के साउंड में लेंगे, जिसे कैनल वॉक का नाम दिया गया है। एक न्यू वाटर फ्रंट टूरिज्म डेस्टिनेशन हमारे कतर में तैयार है दोस्तों, यानी कि एक और विंटर डेस्टिनेशन एड ऑन हो गई है। अब इस बार ये भी कवर करना है, क्योंकि कतर में कुछ भी नया खुले वहां से हमारी जब तक सेल्फी ना आ जाए, एक दो हमारे विजिट ना हो जाए, हमें लगता है हमारे मन में अंदर कुछ काट रहा है कि गौरव तुम मिस कर रहे हो बेटा। तो वो मिसिंग तो हम नहीं चाहते, हम जल्दी जल्दी जाएंगे यहाँ। 89.6 मिर्ची वन थॉट, आप भी प्लान कर लो।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहाँ कहाँ थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुँचाया।
7: यहाँ की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

अंगारे पे इनको चलने दो, हम लोग तो मिर्ची टर्मिनल में चलेंगे। हाँ जी, सीजन 5 इज हियर एंड मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 में हम जा कहाँ रहे हैं? अभी तो हमने आपके लिए प्रेडिक्शन छोड़ रखा है, लेकिन इतना ही कहूंगा जो भी यहाँ आपको सुनाई दे रहा है उससे अगर कुछ गैस कर सकते हैं तो जरूर भेजिए, ताकि हम आपका नाम उस लकी व्हील में डालें जहां पर आपके पास मौका होगा हमारे साथ इसी ट्रिप पर चलने का। 5000196 पर जो भी आप टर्मिनल से रिलेटेड बातें सुन रहे हैं उससे आप क्या गैस कर रहे हैं, कौन सी लोकेशन है, जल्द हम रिवील करने जा रहे हैं लोकेशन। लेकिन तब तक आप अपने भाग्य को आजमाइए, लक को आजमाइए एंड 5000196 पर बताइए कहां जा रहे हैं इस बार हम, क्या लग रहा है आपको सुन के। हैं जी, मस्त वाला गौरव फिलहाल ले रहा अलविदा, लौटेगा कल शाम एक बार फिर से, वीकेंड की वाइब सेट करेगा, माहौल बनाएगा एंड उसके बाद एक और वीकेंड आ जाएगा, फिर एंजॉय करेंगे। 89.6 मिर्ची 1 से मी सेंटर पर लौटेंगे कल शाम, तब तक लिए हबीबी मां सलामा, इंडियन टीम जीतेगी जरूर, यही दुआ कीजिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: देखिए कौशल, आपको देख के लगता नहीं है आप किसी चीज से डरते होंगे, डर लगता है आपको?
3: पानी के अलावा सांपों से बड़ा डर लगता है, डर से ज्यादा रिपल्स हो जाता हूँ, मुझे एकदम
4: वही झंझरी
3: सी मच जाती है एकदम शरीर में।
2: जैसे झंझरी बोला ऐसे मुझे अचानक से वो सेंसिटिव टूथपेस्ट झंझनाहट। यू आर लिसनिंग टू मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
5: It's back. It's back. LG and Jumbo ki mega promotion. LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs aur audio products par assured gift vouchers. Plus, up to 3 years extended warranty, Mukafa points, Nujum, Air Miles aur Avios. Visit LG brand shops, Jumbo stores ya JS.QA. Hurry. Offer valid till 19th October.
6: खट खट।
7: कौन है?
6: इशांत।
7: इशांत कौन?
6: इशांत गदाधारी भीम इशांत।
7: खट खट हु दैट?
8: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट।

0: मैजिकल माहौल बना हुआ है। मिर्ची कैफे सुन रहे हैं आप मेरे यानी पारुल के साथ। देखो भाई, मैं तो यहाँ पर शाहिद माल्या जी के साथ बैठकर बहुत सारी जैमिंग और गाने गा रही हूँ। आपको सुनाया मैंने बॉम्बे वाइकिंग्स एंड फाल्गुनी पाठक का गाना तेरा मेरा प्यार। व्हाट अ वाइब ना, लवली सॉन्ग दिस इज मिर्ची कैफे। मिर्ची पर मैं हूँ आपके साथ पारुल, और आज मेरे साथ हैं खास मेहमान शाहिद माल्या। शाहिद, आपसे एक सवाल। मुझे ये बताइए कि बहुत सारे रीमेक्स की कड़ी में आपको कैसा लगता है, कि अच्छा लगता है? पहले तो मुझे बताओ, जो पुराने गाने रीमेक होके आ जाते हैं।
1: आई लव द बीट ऑफ रिमिक्स, बट बुरा ये लगता है कि पुराने गाने रिमिक्स होने चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं कि वो क्रेडिट ही उनको ना मिले जो
0: ब्यूटी खो दें, है ना?
1: ब्यूटी तो खो ही जाती है ऑब्वियसली।
0: मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि धुरंधर के रिमिक्सेस फिर भी कुछ जस्टिस किए। आपको क्या लगता है?
1: क्योंकि उन्होंने सेम वॉइस रखी ना उसमें, दैट्स व्हाई
0: बीट ऐड करा, ब्यूटीफाई किया।
1: आई रियली अप्रिशिएट सचदेवा जी, शाश्वत जी, कि उन्होंने, शाश्वत ने रिमिक्स भी रखा, लेकिन मुझे खुशी इस बात की ओरिजिनल सिंगर्स उसमें ऐड थे
0: जी। आई थिंक दिस इज द वे टू मेक रीमिक्स, है ना? शाहिद माल्या अप्रूव्ड। ओके, और ये बताइए दरिया या एक कुड़ी?
1: हाँ, एक कुड़ी।
0: ओके, एक कुड़ी या कुकड़?
1: हाँ, एक कुड़ी।
0: ओके, एक कुड़ी या कुड़माई?
1: कुड़माई।
0: कुड़माई, थोड़ा सा कुड़माई सुनाइए ना, एक लाइन
1: ले रहा।

0: थैंक यू.
1: ब्यूटीफुल. अच्छा, कुड़माई या शौक?
0: शौक.
1: शौक, चलिए शौक या रब्बा?
0: रब्बा.
1: रब्बा.
0: ओके.
1: रब्बा या एक कुड़ी?
0: रब्बा.
1: रब्बा,
0: क्योंकि रब्बा के आगे कोई भी नहीं आएगा. रब के आगे दूसरा कोई नाम आ ही नहीं सकता.
1: कमाल की बात.
0: अब दिल चाहे खामोशी के होठों पे मैं लिख दूं.

गई ओ पहली तकनी में बन गई जान पे नैना वैना उसके मेरे दिल पे छपे अब

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Murga, murga. La vidva la murga. Mirchi, murga.
2: हेलो
3: आकाश
2: जी,
3: आकाश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपने मुर्गा बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था ना?
2: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
3: मुझे बताइए किसका मुर्गा बनाना है?
2: मेरी गर्लफ्रेंड है।
3: ओहो, यही मिली है आपको?
2: जी बहुत पंगे लेती है।
3: अच्छा आकाश, ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है क्योंकि मुर्गा बनाने से पहले हम जो रिक्वेस्ट करते हैं मुर्गे की, उनसे एक फॉर्म फिल करा लेते हैं।
2: ठीक है,
3: मुझे अपना पूरा नाम बता दीजिए।
2: आकाश मल्होत्रा।
3: अच्छा आकाश, मैं थोड़ा सा इसको फॉर्म को पढ़ देता हूँ क्योंकि मुर्गा थोड़ा सा मुश्किल भी होता है बनाना, कभी गुस्सा आ जाता है लोगों को, यू नो। तो इसमें कुछ क्लॉज और रूल्स हैं, वो आप फॉलो करेंगे, इसको अग्री करेंगे तो ही हम मुर्गा बनाएंगे,
2: राइट?
3: चलिए। अच्छा इसमें ये है, मैं इसमें आपका नाम लिख देता हूँ, मैं आपको पढ़ देता हूँ। मैं आकाश मल्होत्रा अपने होशो आवाज में अपनी गर्लफ्रेंड पूजा का रेडियो मिर्ची पे मुर्गा बनवा रहा हूँ। अगर कल को पूजा को इस बात पे गुस्सा आ जाता है तो उसका जिम्मेदार आकाश यानी मैं खुद हूँगा, ठीक है?
2: जी, डेफिनेटली।
3: ओके, अगर गुस्सा इतना ज्यादा आ जाता है कि पूजा केस कर देती है मुर्गा बनाने वालों पे, तो उसका जिम्मेदार भी आकाश मल्होत्रा होगा।
2: अच्छा,
3: अगर केस पूजा जीत जाती है और सजा के तौर पे 10 साल की बिना बेल की सजा होती है, तो उसका जिम्मेदार आकाश मल्होत्रा होगा।
2: क्या कह रहे हैं?
3: अगर सजा के तौर पे सजाए काला पानी भेजा जाए तो आकाश मल्होत्रा जाएगा।
2: ये दूसरा क्या सर, मतलब नहीं, मुर्गा बनाने में ऐसा सभी होता है?
3: नहीं, ये फॉर्मेलिटी है ना सर, ये पूरा करना होता है ये कंपनी की तरफ।

0: से हैं।
1: ये लास्ट सुन लीजिए, लास्ट में लिखा हुआ है, अगर मुर्गा बनवाने वाले ने शुरू की दो शर्तें मान ली हैं तो उसको मुर्गा बनवाना ही पड़ेगा जिसका वो चाहता है। तो मैं पूजा को फोन करता हूँ, आप मजे लीजिएगा, है ना?
2: सर, मेरी बात तो
1: सुनिए। हाँ बताइए।
2: फन की बात अलग है, लेकिन वो उसको सीरियसली गुस्सा आ गया। और
1: अरे नहीं, बात तो सुनिए, गुस्सा आपको आज
2: तो प्लीज रहने दीजिए, इसको मेरी बात मान लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी।
1: चलिए मैं एक शर्त पे रहने दूंगा
2: जी,
1: अगर आप बोलेंगे मेरे साथ कुकड़ुकू। आकाश तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मैं तुम्हें ऑन एयर डाल दिया है और तुम्हारे मुर्गा बन गया।
2: मेरा बन गया वो कुकड़ुकू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड ज्वेलरी, सीरियसली माही?
5: यस बेबो,
4: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ।
5: यस yes.
4: कैच क्या है?
5: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ। डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो।
4: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच।
5: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो। दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स।
6: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
7: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
8: कैसे रुक सकता है?
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
3: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: इत्र है।
1: कभी महसूस किया है आपने कि एक नाम में इतनी पावर होती है, जिस शख्स से आप मोहब्बत करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, अगर उसका नाम फ्लैश होता हुआ दिख जाए फोन के नोटिफिकेशंस में, या तो वो मैसेज कर रहा है पर्सन या कॉल कर रहा है, या फिर आप उसकी कोई स्टोरी देख लो, या फिर आप किन्हीं दो लोगों को उसके बारे में बात करता हुआ सुन लो, दैट नेम अपीयर्स एंड यू एक्चुअली एंड अप स्माइलिंग। नहीं जिक्र
2: मिर्ची कैफे।
1: सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। होता है ना यार, किसी का जिक्र होते ही हमारी बांछें खिल जाती हैं, जिसको कहते हैं। सो यस, दीज लिटिल फीलिंग्स एंड इमोशंस, राइट? वेल, मेरे साथ आज मिर्ची कैफे पर हैं शाहिद माल्या। अच्छा, शाहिद माल्या हमें बताएंगे आज इस शो पर कि कौन से वो ऐसे चार गाने हैं
3: जी
1: जो शाहिद रेकमेंड करेंगे मेरे लिसनर्स को। वो आपके भी हो सकते हैं, वो किसी के भी हो सकते हैं। कोई ऐसे चार गाने जो आप लिसनर्स को रेकमेंड करेंगे कि अगर नहीं सुने हो किसी ने तो जरूर सुने। कोई ऐसे चार गाने
3: सुने होंगे बेशक उन्होंने, बट एक मेरा गाना है बिट्टू बॉस फिल्म से, उस गाने का नाम है मन जागे सारी रात। वो आप जरूर सुनिएगा, वो अंडररेटेड हार्ट ब्रेक वाला गाना। अगर आपका दिल टूटा है तो वो सुनने के बाद चकनाचूर हो जाएगा और ज्यादा टूट जाएगा।
1: अच्छा,
3: दूसरा गाना जो मेरा अंडररेटेड गाना मैं कहूंगा, जैसे एक फिल्म आई थी शेफ, सैफ अली खान उसमें थे, उसमें एक गाना है, रघु दीक्षित ने पहली बार म्यूजिक दिया था उसमें।
1: okay.
3: और गाने का नाम है खोया खोया।
1: अच्छा।
3: खोया खोया रास्ता। और मेरे गाने के अलावा जो मुझे लगता है कि आपको सुनना चाहिए वो है एक शेखर साहब का गाया हुआ, शेखर आप जी, यानी कहा जहनसीब तुझे चाहूं बेतहाशा, आई लव विदा करो फ्रॉम रहमान साहब। अगर आपने सुना तो ठीक है, नहीं तो प्लीज जरूर सुनिएगा।
1: थैंक यू सो मच शाहिद माल्या जी, आज आप हमारे कैफे में पधारे, मिर्ची कैफे में आपने हमारे साथ चाय पी, इतने सारे गाने सुनाए एंड कॉन्सर्ट बना दिया इस शो को आज। लवली हैविंग यू शाहिद। अब सुनेंगे नेक्स्ट गाना शाहिद माल्या का रेकमेंडेड। शाहिद को यहाँ अलविदा कहते हुए, लेकिन मैं अभी वापस आ रही हूँ आपके पास। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: यार म्यूजिक के बारे में सबसे प्यारी चीज मुझे ये लगती है कि किसी भी लैंड से आ जाए वो आर्टिस्ट, किसी भी भाषा में गा दे, तब भी हमें कोई ना कोई कनेक्शन फील होता है आवाजों से, म्यूजिक से, बियॉन्ड बाउंड्रीज, बियॉन्ड लैंग्वेजेस. और सच में दिस सॉन्ग हार्डी संधू का गाया हुआ सोच फील्स लाइक कि कोई मेरे लिए गा रहा है ये.
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. कौन सी ऐसी वो दो चीजें हैं विच कीप यू गोइंग? वो कोई इंसान भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है. प्लीज सोचना इस बारे में और प्लीज राइट टू मी. ओके, parul.world पे मैं आपको मिलूंगी इंस्टाग्राम पे. और मैं आपको अपना स्टूडियो का भी नंबर बता देती हूँ, 7045983983. प्लीज डू राइट टू मी. तो प्लीज सोचो और मुझे बताओ कौन सी वो दो चीजें हैं या इंसान हैं जो आपको खुश रखते हैं. लाइफ की प्रॉब्लम्स, परेशानियां, भागदौड़ तो चलती रहती है, पर वो दो चीजें हैं जिनकी वजह से आप खुशी खुशी निकलते हो काम पे. खाना भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है. प्लीज यू टेल मी. ओके, और अगला गाना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्रुति हासन की आवाज में. बहुत दिनों बाद सुनोगे आपके गाना, देखना. लिसन टू दिस सॉन्ग, आई विल बी राइट बैक. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट.

0: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
1: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
2: बहुत कुछ होगा।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन,
5: इट्स हॉट।
6: यहाँ से कहाँ जाऊँ, कहाँ मैं छुप जाऊँ, ये आधा साथ मैं कैसे लगाऊँ, हूँ खुद से जुदा।

0: जिंदगी से सुना आपने ये गाना भी सुनी थी चौहान की आवाज में ओनली ऑन मिर्ची कैफे. मैं हूँ आपके साथ पारुल.
1: मिर्ची कैफे
0: यार ये टाइम मुझे सच में अच्छा नहीं लगता जब मुझे आपको बाय बाय बोलना पड़ता है. इतने सारे गाने मैं आपके लिए लेकर आती हूँ. विवेक, चिन्मय, प्रशांत और अनुभूति, इन सबको मैं बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ कि आपने मुझे डीएम किया, अपने अपने गाने रिक्वेस्ट किए. प्लीज कीप टॉकिंग टू मी, कनेक्टिंग विद मी. मुझे प्लीज बताओ कि आपको ये शो पे और क्या चाहिए, आज का शो कैसा लगा, कौन सा गाना सुनना चाहते हो, या फिर रैंडमली अगर आपको लगे कि, या फिर कभी आपको यूं ही लगे कि कोई तो दिल में बेचैनी है जो आप किसी से कह नहीं पा रहे हो और आपको कहने का मन कर रहा है कि जस्ट गो टू हेल दिल. सिर्फ शेयर करके बहुत मन हल्का होता है, ट्रस्ट मी ऑन दिस. एंड इफ यू डोंट हैव एनीवन, यू हैव मी. डीएम करो मुझे, कनेक्ट करते हैं, ठीक है? paruls.world ऑन इंस्टाग्राम. और लास्ट में आपके लिए एक हैप्पी नोट पे गाना छोड़ के जा रही हूँ, बिकॉज अगर आप किसी से भी जाके पूछोगे ना कोई आफत, परेशानी, मुसीबत चली रही है, दैट्स व्हाई वी आर अलाइव. पर हैप्पीनेस और सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अपने से चिपका के रखना. सुनते रहो मिर्ची, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

0: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष महापुरुष।
1: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Mm-mm. Mm-mm. Mm-mm.

कि जब भी कोई बला का खूबसूरत लगता है ना, तो उसको कॉम्प्लीमेंट में कहा जाता है, क्या बात है, आज तो बिल्कुल मधुबाला लग रही हो। सो यस, आज होगी मधुबाला जी की बातें। शुरुआत करेंगे एक ऐसे काम से जो मधुबाला जी को बहुत पसंद था। जैसे ही शूटिंग खत्म होती थी ना, वो ये काम जरूर करती थी, और वो करने से ना उन्हें फ्रीडम महसूस होता था, आजादी लगती थी। क्या था वो काम? अब आपको तो मेरी आदत इतने दिनों से पता ही चल गई, सब कुछ एक बार में नहीं बताती हूँ। सो कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जींस। मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो, ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब?
3: किसके यहाँ से?
4: स्वर्गीय अनिल चौहान।
3: मतलब किसके यहाँ बात फोन मिलाया आपने?
4: स्वर्गीय अनिल के यहाँ फोन मिलाया भाई साहब। मैं बोल रहा हूँ
3: अनिल ही बोल रहा हूँ, स्वर्गीय नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ।
4: सर, स्वर्गीय अनिल चौहान उनका पूरा नाम है। सर, मैं से बोल रहा हूँ, पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से। तो ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से कोई हो तो उनसे बात करा दीजिए।
3: दिमाग खराब है? अब मैं खुद बोल रहा हूँ, तो सोच कम से कम।
4: सर, आप ये बेवकूफी की बात ना करें। आप

0: जुबान संभाल के बात करें, मैं पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आप कह रहे हैं आप जिंदा हैं, यहाँ पोस्टमार्टम कर रखा है हमने, आपकी रिपोर्ट आ गई है सर, आके ले जाइए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट।
1: सर ये नहीं, तो अनिल चौहान से ही बात कर रहा है।
0: स्वर्गीय अनिल चौहान यार, आप जो लक्ष्मी नगर में रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ।
1: खराब हो गया आपका कि स्वर्गीय अनिल चौहान, मैं जिंदा हूँ भाई, मैं रहा है घर परिवार वाले में, तेरे कोई पागल तो नहीं हो गया?
0: कौन पागल हो गया आपकी पोस्टमार्टम? मेरी बात सुन लीजिए आप,
1: नहीं
0: मैंने मारा पोस्टमार्टम हमने किया, स्वर्गीय अनिल चौहान से बात करनी है, उनसे बात कराई। बीच में आप कैसे आ गए यार, कमाल कर दिया आपने। दिमाग खराब मेरा नहीं हुआ, आपको यकीन नहीं है तो दोबारा आगे पोस्टमार्टम करा लो, एक ही रिपोर्ट है दोनों की।
1: डॉक्टर बोल रहा
0: हूँ, मैं डॉक्टर विजय बोल रहा हूँ यार, मैंने खुद पोस्टमार्टम किया उनका।
1: ऐसा
0: केस आप क्या करेंगे? केस तो मैं उन पर करूंगा, स्वर्गीय अनिल चौहान पे, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे लिखा हुआ आप बाप बनने वाले थे, वो बाप बनने वाले।
1: परिवार वाले आदमी से ही बात करता है, कौन है तेरी
0: बेवकूफी की बात मत करिए। आप आइए यहाँ पे पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में, दिखाता हूँ आपकी लाश, आपकी बॉडी दिखाता हूँ यहाँ पे आके। पोस्टमार्टम तो करके छोड़ूंगा मैं
1: जी।
0: स्वर्गीय अनिल चौहान जी के यहाँ से कोई बात कर सकते हैं मेरे से? मेरी बात सुनिए, आप फोन मत काटिएगा, बड़ा मुश्किल से मिलता है। अनिल चौहान जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बनाया, छोटा सा मजाक किया है, आपकी उम्र बहुत लंबी है, आप टेंशन ना लें।
1: अरे किसी बहुत मार खाओगे आप, सही बता रहे हैं।
0: सर मैं पिटने को तैयार हूँ, लेकिन आपकी हंसी सुन के मुझे मजा आता है, अब मेरे साथ आप प्यार से कह दीजिए।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: खट खट
4: पूरे
3: बनता
4: बनता हूँ।
3: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को।
4: खट खट हू दैट,
2: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स, श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, वेद इस जमाने की श्रेया। पुरानी जीन्स पे ना आज बात हो रही है मधुबाला जी की। तो मैं बता रही थी कि कैसे उनको एक चीज बेहद पसंद थी, इनफैक्ट वही एक चीज उनको अलाउड भी थी। शूटिंग जब खत्म हो जाती थी तो उनके अब्बा यानी अताउल्ला खान बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। मधुबाला जी को ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे कि उन्हें सीधे सेट से घर और घर से सेट जाना है। ऐसे में वो अपना फ्रीडम, अपनी आजादी पता है किस में ढूंढती थी? ड्राइविंग में। उन्हें ड्राइविंग करना बेहद पसंद था, तो हमेशा ड्राइवर को पीछे बैठाती थी और घर का एक लंबा रास्ता लेते हुए वापस जाती थी। पुरानी जीन्स पर आज उन्हीं की बातें उनके गानों के साथ, तो बस कहीं भी मत जाना। मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून।
2: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM Mirchi 1.
0: It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: ये मधुबाला नाम की किताब कैसे खुली?
1: मेरा मतलब है कि मधुबाला जी की जर्नी कैसे शुरू हुई, अभी बताती हूँ। पुरानी जींस पर हाय, मैं हूँ श्रेया। उनके अब्बा यानी अताउल्ला खान जी काम करते थे पाकिस्तान में। पेशावर में एक कंपनी थी जिसका नाम था इम्पीरियल टोबैको कंपनी। वहाँ से एक दिन उनकी नौकरी छूट गई, वो अपने पूरे परिवार को लेकर के दिल्ली आ गए। उसके बाद काम ढूंढते ढूंढते मुंबई आए। मुंबई में जब वो काम करने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्हें पता चला कि बॉलीवुड में, यानी तब तो ये इंडियन सिनेमा कहलाया जाता था, वहाँ पर एक चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत है। अताउल्ला खान जी को ये तो पता था कि उनकी बेबी मुमताज यानी मधुबाला बेहद खूबसूरत है, तो बस वो उनको लेकर के अगले दिन पहुंच गए स्टूडियोज, और वहां पे बेबी मुमताज ने की अपनी पहली मूवी एज चाइल्ड आर्टिस्ट। इस मूवी का नाम था बसंत, वे बैक 1942 में। उसके बाद मधुबाला जी ने कई सारी फिल्मों में काम किया, फुलवारी, पुजारी, राजपुतानी, बहुत सारी। बस यहीं से उनकी जिंदगी में भी ट्विस्ट एंड टर्न भी शुरू हो गए। अभी इनके बारे में बताऊंगी, गानों के उस पार मिलते हैं ना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
2: और हम जहां चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची 1, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, वो पहली फिल्म कौन सी थी जिससे मधुबाला जी ने अपने करियर की शुरुआत करी एज लीड एक्ट्रेस? बताओ बताओ। पुरानी जीन्स पर, हाय मैं हूँ श्रेया। यू नो व्हाट, सिर्फ 14 साल की थी वो जब लीड एक्ट्रेस बन गई थी। 14 बोले तो मतलब अगर आप स्कूल में हो तो 8th या 9th क्लास में होगे। और उनके ऑपोजिट एक ऐसे एक्टर थे जो इंडस्ट्री में थे तो बहुत टाइम से, लेकिन एक बड़ी फिल्म की तरह उनकी भी ये पहली फिल्म थी। एंड इट वॉज नन अदर देन राज कपूर साहब। मूवी का नाम था नीलकमल, जिसमें दोनों अपने बड़े बड़े सपने लेकर के मैदान में उतरे थे। अभी तो उस जमाने के और भी बहुत सारे किस्से बाकी हैं, तो जल्दी से गाने सुन करके वापस आओ विद मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: एक ट्रक आ रहा।
1: झूठ मत बोल, आ नहीं जा रहा।
0: देखो आँख मारे, लाल लाल सिग्नल।
1: सिग्नल को तोड़ दो, बात बड़ी सी।

0: हल्ला मचाएंगे हल्ला मचाएंगे बैंड बाजा बाजेगा ठम ठम ठम हे मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम
1: मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम।
2: जब भी कोई बहुत खूबसूरत होता है तो कहते हैं ना आहा क्या मधुबाला लग रही हो। तो आज बस मधुबाला जी की बातें बैक टू बैक श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जींस। हाँ तो मैं बता रही थी कि एज अ लीड लेडी उनको उनका पहला ब्रेक मिला राज कपूर के ऑपोजिट। ये फिल्म थी बहुत पुरानी 1947 की नीलकमल। ये बनाने वाले थे केदार शर्मा साहब। अच्छा बहुत कम लोगों को पता है कि राज कपूर के साथ उन्होंने कई सारी फिल्में की हैं। NM केलकर की एक फिल्म आई थी अमर प्रेम। ना ना ना राजेश खन्ना वाली नहीं बल्कि इसमें थे राज कपूर अगेन पेड अप विथ मधुबाला जी। एक फिल्म आई थी मोहन सिन्हा की जिसका नाम था दिल की रानी। इसमें भी राज साहब और मधुबाला जी थे। एक्चुअली में राज कपूर और मधुबाला जी की जो केमिस्ट्री थी इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है बिकॉज काफी पुरानी बात है 1940s और 50s की। आज मैं पता करके आई थी तो आपके साथ शेयर कर ली। आगे कौन कौन से किस्से हैं सब बताऊंगी। वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जींस।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो, ये कमलेश जी?
3: हाँ जी, कौन?
4: कमलेश जी, गोपाल बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी से। ये आपके पास भी पत्र आया होगा, हमारी पत्नी ने, लाजवंती ने, वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है, आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
3: कौन से पैसे चाहिए तुम्हें?
4: नहीं, देखिए, एक तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो, ये हमारी जो पत्नी है लाजवंती, उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का क्लब, उसकी बाहर की दीवार देखो, उसमें पुताई होनी है।
3: देखिए,
4: मैंने हमेशा कब लिया आपसे? हमने कब लिए आपसे?
3: अरे तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए, उसी में से करो आप जो कर रहे हैं।
4: भाई साहब, एक बात बताओ, आपके पास 750 रुपए का बहुत बड़ी कीमत जो आप देने को मना कर रहे हो।
3: 750 रुपए मैं थोड़ी ना हर चीज के पैसे देता रहूंगा तुम्हें। बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या, तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे। कोई त्योहार नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो, चंदा मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
4: आप नहीं दे रहे फिर?
3: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे।
4: ना दे रहे लाजवंती, ना मान रहे।
5: I want to talk to him. Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time. Just 750 bucks, sir. That's all we're asking for, because we feel we're all family and my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you
3: with us? Yes, madam, I'm there. I understand, main samajh raha hu aapko. What is the amount?
5: It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know how fond you are of trips, sir. So I am sure.

0: it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead
1: No,
0: with this?
1: not the issue, not the issue. 750 only?
0: Yes, sir, absolutely.
2: No, 750 na bhai. तेरे 1500 लगेंगे. हमारी बात समझ में ना आ रही. लाजवंती की एकदम घेजे में पड़ गई.
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ. Only on मिर्ची. It's hot.
4: Yep,
5: cut, cut.
6: Who that?
5: जाहिर.
6: जाहिर. जाहिर हूँ.
5: जाहिर सी बात है. मैं ही हूँ. और कोई नहीं.
6: खट खट. Who that?
3: Only on 89.6 Mirchi 1.
4: Mirchi,
3: it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: आई वॉन्ट टू लिव द स्टोरी ऑफ मधुबाला,
1: ये लिखने वाले थे कातिजिया अकबर।
0: पुरानी जीन्स पे हाय, मैं हूँ श्रेया और आज मधुबाला जी की बातें बैक टू बैक चल रही हैं। सो मैं बता रही थी कि ये जो बुक थी ये मधुबाला की बायोग्राफी थी जो अकबर साहब ने लिखी थी। उसमें ना उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात मेंशन की है। ही सेड कि मधुबाला इतनी खूबसूरत थी, इतनी वाइट थी, उनकी स्किन ऐसे आर पार दिखती थी, एकदम ट्रांसलूसेंट थी कि जब भी वो पान खाती थी, एंड बाय द वे पान खाने की काफी शौकीन थी, तो उनके थ्रोट से, उनके गले से उतरता हुआ पान तक दिखता था। मतलब ये बोलते हुए भी ना मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि काश हमने मधुबाला जी को देखा होता। अच्छा, आपकी फैमिली में भी कोई ना कोई जरूर उनका जबरदस्त फैन होगा, जैसे मेरी फैमिली में मेरे पापा। और आप क्या, कौन है बताना मुझे। फेसबुक और इंस्टा पे मिल सकते हो RJ श्रेया विद लव, दैट्स RJ SHREYA विद लव, ये है मेरा हैंडल। अभी और भी बातें बाकी, सुबह वापस आओ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून।
2: कौन है?
3: दवे।
2: दवे कौन?
3: The way you love me, I hae mar jawa.
2: Khatkhat, who that?
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन मधुबाला जी सेट पे हमेशा पंक्चुअल।
1: पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। जितने भी लोगों ने मधुबाला जी के साथ काम किया है और कभी उनके बारे में लिखा है तो उनकी पंक्चुअलिटी के बारे में जरूर लिखा है। उनकी लार्ज फैमिली को पैसे का सपोर्ट देने वाली इकलौती मधुबाला जी थी और कहते हैं कि वो मशीन की तरह काम करती थी, अपना ख्याल कम रखती थी, खाना मिस करती थी और मेट्रो के ओवरक्राउडेड कंपार्टमेंट में मलाट से दादर, दादर से मलाट करती रहती थी, पर कभी भी सेट पे एब्सेंट या लेट नहीं होती थी। पुरानी जीन्स पर आज उन्हीं की बातें बैक टू बैक चलेंगी ना श्रेया के साथ, सो कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: सो अली खान, हमने सुना है कि सैफ एंड कुणाल बोथ आर ग्रेट कुक्स, आप क्या बना सकते हो?
4: थियरी में तो मैं भी दाल चावल बना सकती हूँ, थियरी में। कभी मतलब वो अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिला है, लाइक इट हैजंट गॉट दैट बैड कि मुझे किचन में जाने की जरूरत हुई है अब तक। कुणाल कुक्स वेरी वेल एंड भाई कैन मेक वेरी गुड स्क्रैम्बल्ड एग्स एंड पास्ता।
3: दैट वाज सोआ अली खान ऑन बॉलीवुड बोल डाल। यू आर लिसनिंग टू मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

दोस्त बनाना अलाउड नहीं था, पार्टीज जाना अलाउड नहीं था, फिल्मों के प्रीमियर अटेंड करना अलाउड नहीं था, फिल्म फेस्टिवल्स जाना अलाउड नहीं था, पिकनिक्स, गेट टुगेदर्स, कहीं पर भी मधुबाला जी नहीं जा सकती थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया और आज उन्हीं की बातें चल रही हैं। सो उनके अब्बा यानी अताउल्ला खान जी बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। अगर मधुबाला जी को कुछ अलाउड था तो वो था सेट से घर और घर से सेट। इनफैक्ट वो अपनी ही फिल्मों के प्रीमियर पे नहीं जा सकती थी। कुछ किताबों ने तो ये भी लिखा है कि इन्हीं चीजों से वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर हर्ट थी, और क्योंकि वो अपने अब्बा के खिलाफ नहीं जा पाती थी, वो बहुत ही मायूस और सेट पे चुप चुप रहने लगी थी। एक बार तो उन्होंने खुद कहा कि खूबसूरत होना खुशी देता है, लेकिन असली खुशी मिल जाए ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया, वापस आओ और भी बातें करेंगे उनकी।

सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर 89.6 मिर्ची।

గులుగులు గులుగులు

देव आनंद और मधुबाला जी ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ऐसा किस्सा हुआ जिसने मधुबाला जी की जिंदगी थोड़ी सी बदल दी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। देव साहब और मधुबाला जी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उसी शूट पे कुछ फॉरेन के लोग देव साहब से किसी नए प्रोजेक्ट के लिए मिलने आए। उन लोगों में काफी देर तक बातचीत चलती रही और मधुबाला जी अपनी चेयर पे बैठ करके देख रही थी। जब वो लोग वहाँ से चले गए तो वो देव साहब के पास गई और उनसे पूछा, ये लोग क्या बात कर रहे थे आपसे? अब देव साहब ने या तो जानबूझ करके या फिर वो इंटरेस्टेड नहीं थे मधुबाला जी को कुछ भी बताने में, तो उन्होंने मुस्कुरा करके कहा, तुम्हें समझ नहीं आएगा। ये कह के वो वहां से चले गए, पर ये बात मधुबाला जी के दिल पे तीर की तरह लगी। घर जाते ही उन्होंने एक काम किया। What was that? अभी बताऊंगी, वापस आओ श्रेया के साथ, only on पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: हेलो मुकेश जी।
2: कौन?
1: मुकेश जी मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ राणा मोटर से। आपने जो 1000 दी थी ना उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली थोड़ा।
2: नहीं हो पाया भाई?
1: हाँ वो नहीं हो पाया सर।
2: हाँ जी? नहीं पाया
1: सर वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा सर आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की। सर वो भी हो नहीं पाई है वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी।
2: नहीं, क्या नहीं पाया तुम्हारे यार रोज गए तुम्हें जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया क्या मजाक ही क्या है ये?
1: नहीं मुकेश जी मैं समझ रहा हूँ वो एक
2: क्या समझ रहे हो भाई।
1: नहीं आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुकेश जी आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है ब्रेक काम नहीं कर रहे। सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा।
2: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
1: सर वो
2: ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया मुझे फोन करना है मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया।
1: नहीं सर
2: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दें।
1: नहीं सर कुछ हो नहीं पाया।
2: क्यों नहीं हो पाया?
1: सर वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी
2: है?
1: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी।
2: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
1: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ मतलब हम
2: क्या करा दूँ
1: सर मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
2: कैसी FIR दिमाग खराब हो गया तेरा पागल तो नहीं है तू?
1: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे आप गुस्सा तो मत करिए कम से कम।
2: गुस्सा ना करूँ नई गाड़ी थी हमारी।
1: नहीं सर आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है हमने भी तो ग्रीस लगा।

0: क्या गया तुम्हारा?
1: उसमें ग्रीस
0: क्या तुम्हारा?
1: ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है।
0: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगाया। आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में।
1: अच्छा सर,
0: मुझे चाहिए अपनी वापस।
1: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
0: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की।
1: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें। अच्छा सर, ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा।
2: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा।
0: तो जान निकाल दी हमारी।
2: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे। मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए।
0: कुकड़ू कु
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया और मधुबाला जी और देव साहब की फिल्म की शूटिंग के दौरान का एक किस्सा बता रही थी। इस फिल्म के सेट पे देव साहब से मिलने कुछ फॉरेन के लोग आए, वो कोई नया प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे। उनकी ये मीटिंग काफी लंबी चली। मधुबाला जी तब तक देव साहब का वेट कर रही थी और साथ में देख रही थी कि उस एक केबिन में क्या चल रहा है। जैसे ही वो लोग वहां से गए, उन्होंने देव साहब से पूछा, क्या बात हो रही थी? देव साहब या तो बहुत जल्दी में थे या फिर उन्हें बताने का मन नहीं था, तो उन्होंने कह दिया, तुम्हें समझ नहीं आएगा। अब ये बात मधुबाला जी को तीर की तरह लगी। उन्हें ये लगा कि क्योंकि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए देव साहब ने उनको इंसल्ट किया। फिर क्या, अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करती थी वो हमेशा। जैसे ही ड्राइव करके घर वापस गई, उन्होंने एक फोन घुमाया। वो फोन था एक इंग्लिश ट्यूटर को। 17 साल की उम्र में उन्होंने फर्राटे से इंग्लिश लिखनी सीखी और इंग्लिश बोलनी सीखी। उन्हीं की ढेर सारी बातें श्रेया के साथ आज ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: कट कट।
2: अबे कौन है?
1: उत्तपा।
2: उत्तपा कौन?
1: उत्तपा में दो डोसा और सांबर ऑर्डर किया था, आया क्या?
2: खट खट हू दैट?
0: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

हॉलीवुड के एक बहुत फेमस डायरेक्टर थे फ्रैंक कैप्रा। वो 3 एकेडमी अवार्ड्स फॉर बेस्ट डायरेक्टर भी जीत चुके थे। एक बार वो मुंबई आए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया को अटेंड करने। वहाँ पे जब उन्होंने मधुबाला जी को देखा तो उनकी खूबसूरती को देख करके वो इतने इम्प्रेस हुए कि बस वो चाहते थे किसी तरह मधुबाला हॉलीवुड आ जाए और वहाँ पे लॉन्च हो जाए। इसके लिए उन्होंने मधुबाला से बहुत मिन्नतें की, लेकिन भाई उनके सारे डिसीजंस तो उनके अब्बा यानी अताउल्ला खान लेते थे। उनके अब्बा ने साफ मना कर दिया। अब वो मधुबाला को दूसरे शहर तो जाने देते नहीं थे, दूसरे देश कैसे जाने देते। सो फ्रैंक कैप्रा का ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। पुरानी जीन्स पर मैं हूं।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनों, अरे मदगन भाई छगन भाई, सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा, आई का ओ जरनल सिंह, ओ जरनल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

पुरानी जीन्स में आबू श्रेया के साथ जाने का टाइम, यानी वी गॉट टू हिट द हाईवे। ऑलराइट, आज का मेरा हाईवे हिट उन लोगों के लिए है जो पहली मुलाकात में तो घबराए होते ही हैं, लेकिन जब भी उनसे मिलते हैं तो वो पहली मुलाकात ही लगती है, उतनी ही रोमांटिक लगती है, उतना ही एक्साइटमेंट होता है उनसे मिलने से पहले जैसे कि पहली बार मिल रहे हो। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई है तो ये गाना आज उनके लिए और ऑफ कोर्स आपके लिए। ऑन दैट नोट, दिस इज श्रेया साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू टुमारो। ख्याल रखो अपना, एंड या इफ यू मिस मी यू नो वेयर टू कैच मी, फेसबुक और इंस्टा, आरजे श्रेया विद लव इज माई हैंडल, दैट्स आरजे SHRUYA श्रेया विद लव। गुड नाइट।